मीडियम वेव 241.54 मीटर, अर्थार्थ 1242 किलोहर्ट्स, DRM 1233 किलोहर्ट्स, न्यूज़ ऑन AIR ऐप, वेब्स OTT पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की छठवीं तिथि, तदनुसार 28 जुलाई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:56 और 59 सेकंड हो रहे हैं। आरंभ हो रही है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। बिहार और असम की राज्य सरकारों ने नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज मामले और अन्य कानूनी कार्रवाई वापस लेने का फैसला किया है। बिहार के गृह विभाग ने आश्वासन दिया है कि वे 26 जुलाई को शाम 6 बजे से पहले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी प्राथमिकी, आपराधिक शिकायतें और कारण बताओ नोटिस वापस लेने की कानूनी प्रक्रिया तुरंत शुरू करेगा। आधिकारिक बयान के अनुसार समय सीमा से पहले दर्ज मामलों के संबंध में गिरफ्तार या हिरासत में

0: व्यक्तियों को तुरंत रिहा कर दिया जाएगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे से पुनः शुरू होगी। कल नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। मॉनसून सत्र के लगातार छठे दिन भी नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण कल संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। विपक्ष के हंगामे के बीच कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुच्छेद साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे।
1: पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ आंसर मीन्स तो इम्पोर्टेंट बिल लेके आया है, तो कांग्रेस से हमने अपील किया, फिर भी नहीं मान रहे हैं। हमने लोकसभा में भी बताया और यहाँ भी कहा टाइम एलोटेड है। कांग्रेस वाला बताते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं और यहाँ हम हाथ जोर जोर से कहते हैं कि आप बोलिए।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने खिलौना क्षेत्र को समर्थन देने और वर्ष 2032 तक वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी 5% तक करने के लिए कार्यबल के गठन की घोषणा की है। वे नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT द्वारा आयोजित खिलौना क्षेत्र से संबंधित हितधारकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। पर्यटन मंत्रालय ने एयर इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य प्रतिष्ठित इक्रेडिबल इंडिया ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देना है। ये समझौता कल नई दिल्ली में पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में हुआ। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाएं भारत की लोकतांत्रिक और विकास यात्रा की आधारशिला है। श्री सिंह ने नई दिल्ली में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम और समर्थ पंचायत पोर्टल का शुभारंभ करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये पहल विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप आर्थिक रूप से सशक्त, तकनीकी रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर पंचायतों के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को जांच दल में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर शामिल करने का निर्देश दिया है। SIT 2 सप्ताह में पहली स्थिति रिपोर्ट पेश करेगी। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस खबर का खंडन किया है जिसमें ये दावा किया गया था कि केंद्र सरकार अगले महीने की 25 तारीख की रात से भारत में इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाएगी। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को निराधार बताया है और कहा है कि सरकार द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। इकाई ने नागरिकों को केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करने की सलाह दी है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने चीन यात्रा के दौरान पेइचिंग में चीन के उप विदेश मंत्री हुआ चेंगयिंग से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। विदेश सचिव ने भारत और चीन के बीच साझेदारी की दृष्टि को आगे बढ़ाने और व्यापार तथा आर्थिक संबंधों में पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास के अवसरों पर भी चर्चा की। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के दौरान मतदान के दिन हुई हिंसक झड़पों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बताया कि उसके कार्यकर्ता मुख्तार यूनुस की मौत हो गई है और 2 अन्य घायल हो गए हैं। पहले एक दिन के लिए निर्धारित ये चुनाव अब आज से 10 अगस्त तक 3 चरणों में होंगे। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार किया है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की शर्मिला धनकर ने महिलाओं की पैरा शॉट पुट F57 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। 5वें दिन के अंत तक भारत के पदकों की संख्या 10 हो गई है जिसमें 2 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। खेती की बातें कार्यक्रम में आइए सुनते हैं आम की बागवानी विषय पर दिनेश कुमार सिंह से ये जानकारी।
3: किसान भाइयों, आज हम आम का बाग लगाने के बारे में चर्चा करेंगे। समय चल रहा है इसलिए अगर आप आम के पेड़ लगाना चाहते हैं तो लगाएं। इसके बगीचे के लिए गहरी दोमट मिट्टी जिसमें अतिरिक्त जल के निकास की सुविधा हो सर्वोत्तम होती है। बाग लगाने से पहले खेत में जुताई करके

0: खरपतवारों को सूखने दिया जाता है। यह कार्य थोड़ा पहले ही कर लेना चाहिए, जिससे बरसात होने से पहले खरपतवार सूख जाएं। फिर पेड़ कितने दूरी पर लगाए जाएं, उनका रेखांकन किया जाता है। आजकल सामान्यतः वर्गाकार विधि से ही पेड़ों को लगाते हैं, यानी लाइन से लाइन की दूरी जितनी होती है उतनी ही पेड़ से पेड़ की दूरी भी रखते हैं। रेखांकन करते समय यह बात ध्यान रहे कि मेड़ के किनारे की लाइन निर्धारित दूरी की आधी दूरी पर बनावें। आम्रपाली को छोड़कर सभी कलमी आम के पेड़ को 10 मीटर की दूरी पर लगाते हैं। आम्रपाली के लिए यह दूरी 2.5 से 3 मीटर रखते हैं। अतः आम्रपाली के लिए मेड़ के किनारे की पहली लाइन 1.25 मीटर पर तथा अन्य लाइनें 2.5-2.5 मीटर पर बनाते हैं। बाकी जो प्रजातियां हैं उनके लिए मेड़ के किनारे की लाइन 5 मीटर पर बनेगी और बाकी सभी लाइनें 10-10 मीटर की दूरी पर बनाते हैं। रेखांकन कर लेने के बाद सबसे महत्वपूर्ण कार्य है गड्ढे की खुदाई करना। 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा गड्ढा खोदना चाहिए। गड्ढे खोदने का सर्वोत्तम समय तो मई जून का महीना है। यह कार्य अगर कर लिए हैं तो ठीक है, इसमें भराई का कार्य करें, और यदि अगर खुदाई नहीं किए हैं तो इस समय खुदाई का कार्य करें। चूंकि सारे पोषक तत्व मिट्टी की ऊपरी सतह में ही होते हैं, अतः गड्ढा भरने के लिए ऊपर की आधी मिट्टी जो गड्ढा खोदते समय निकली रहती है उसे लेते हैं, और उतनी ही मात्रा में सड़ी हुई गोबर की खाद लेते हैं। दीमक के प्रकोप से कभी कभी पौधे को काफ़ी नुकसान होता है, अतः लगभग 100 ग्राम लिंडेन चूर्ण और लगभग 500 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट ये सब मिला करके गड्ढे की भराई कर देते हैं। फिर इसमें पौधे को लगाया जाता है। पौधे लगाने का समय बरसात होने के बाद शुरू होता है, यानी जुलाई माह से लेकर सितंबर माह तक आप आम के पौधे को लगा सकते हैं। आम की कलम किसी विश्वसनीय जगह से ही खरीदना चाहिए। प्रजाति देखने में स्वस्थ और लगभग 1 साल की होनी चाहिए। इसकी जो उन्नतशील प्रजातियां हैं उसे भी जान लें। आम की कुछ किस्में अगेती होती हैं जो कि जल्दी पकती हैं, कुछ किस्में मध्यकालीन होती हैं और कुछ किस्में देर से पकती हैं, जिन्हें हम पिछेती किस्में कहते हैं। आम की जो अगेती किस्में हैं उनमें प्रमुख हैं गौरजीत, रसौल और बम्बई हरा। आम की जो मध्यकालीन किस्में हैं वह हैं दशहरी, लंगड़ा, लखनऊ सफेदा व आम्रपाली। जो किस्में देर से पकती हैं वह हैं चौसा, फजली और अचार के लिए उपयुक्त प्रजाति रामकेला। अगर आप आम का बगीचा लगा रहे हैं तो आपको इन सभी प्रकार में से प्रजातियों को चुनना चाहिए, जिससे पूरे सीजन भर आम की फलत मिलती रहे। आम का पौधा लगा देने के बाद फिर उसके देखभाल की आवश्यकता होती है। बरसात में पानी के निकास की व्यवस्था अवश्य करनी चाहिए। खरपतवार निकालते रहें और गुड़ाई वगैरह भी करते रहना चाहिए। जब आम के पौधे 1 वर्ष के हो जाएं तो उसमें अतिरिक्त उर्वरक की आवश्यकता होती है। आवश्यकता अनुसार समय समय पर सिंचाई करते रहना चाहिए। तो इस तरह से इन सब बातों को ध्यान में रखकर आम का बाग लगाना चाहिए।
1: खेती की बातें कार्यक्रम में आप सुन रहे थे आम की बागवानी विषय पर दिनेश कुमार सिंह से ये जानकारी। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। आज मंगलवार है तो आइए आराधना कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मंगल मूर्ति की आराधना से। भगवान श्री राम के परम भक्त पवनसुत श्री हनुमान जी की आराधना करने से भक्तों के सभी कष्टों और दुखों का निवारण हो जाता है, जिससे सभी कार्य सुगमता से हो जाते हैं। तो आइए आराधना करते हैं मंगल मूर्ति मारुति नंदन महावीर की।

भगवान श्री राम की आराधना करने से हमें सच्चा सुख मिलता है और हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, जीवन तर जाते हैं।

ईश्वर के दरबार में अब आइए, प्रार्थना करते हैं हम सभी, अपनी भूल चूक और जीवन के विकारों को स्वीकार करते हुए, अपनी मैली चदरिया पाप से भरे जीवन को साफ करने और प्रभु से क्षमा एवं शरण में लेने की प्रार्थना करते हैं।

आराधना कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे हरि ओम शरण, विपिन सचदेवा और सुरेश वाडकर के गाए भजन। आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है।

0: प्रस्तुत है आज का विचार बिंदु।
1: प्रत्येक जीव एक जड़ शरीर तथा एक चेतन आत्म तत्व से युक्त होता है, परंतु सभी जीव तो क्या सभी मनुष्य आत्मशक्ति संपन्न नहीं होते? न चायम आत्मा बलहीनेन लभ्या, अर्थात यह आत्मतत्व बलहीन को प्राप्य नहीं है। लौकिक साधनों से हीन कौपीन मात्र धारण किए हुए एक क्षीणकाय

सन्यासी के समक्ष एक चक्रवर्ती सम्राट आदरपूर्वक नतमस्तक होता है। कौन सी शक्ति है उस सन्यासी में? भगवान तथागत गौतम बुद्ध के आगे बड़े बड़े राजाओं और महाराजाओं को श्रद्धानत होना पड़ता था। अंगुलिमाल जैसे दुर्दांत दस्यु का मन उन्होंने अपनी किस शक्ति से बड़ी सरलता से बदल दिया। अंगुलिमाल की हिंसा वृत्ति से तत्कालीन राजशक्ति और जनशक्ति भयाक्रांत हो थर थर कांपती थी। उसको एकाकी निशस्त्र बुद्ध ने वशवर्ती बना लिया। घुटने तक धोती पहने, हाथ में लकुटिया लेकर

0: घुटने तक धोती पहने, हाथ में लकुटिया लेकर पैदल चलने वाले, भौतिक साधनों से विहीन महात्मा गांधी में कौन सी शक्ति थी जिसके समक्ष ब्रिटिश साम्राज्य को झुकना पड़ा? किस शक्ति के बल पर श्री कृष्ण ने महाभारत जैसे महायुद्ध में निशस्त्र भाग लेना सहर्ष स्वेच्छापूर्वक स्वीकार किया? इन सभी प्रश्नों का उत्तर है आत्मशक्ति। आत्मशक्ति के समक्ष अन्य कोई शक्ति नहीं टिक सकती। आत्मशक्ति संपन्न मनुष्य अभय होता है। उसके अंतःकरण में राग द्वेष, हर्ष शोक, ममत्व, अहंकार और मोह मात्सर्य आदि विकार तथा नाना प्रकार के कलुषित पापमय भाव नहीं रहते। वो सबसे सौहार्द रखता है। वो किसी से विरोध भी करता है तो विरुद्ध व्यक्ति के कल्याण की ही भावना से। उसका जीवन तपस्या तथा तितिक्षा से परिपूत होता है जिससे उसके व्यक्तित्व से एक ऐसी प्रभा निकलती है जो समक्ष स्थित व्यक्ति को प्रभावित कर लेती है। वो मित्र हो या शत्रु, वो अधिकार संपन्न हो या अकिंचन। आत्मशक्ति संपन्न व्यक्ति को इंद्रिय संयम, सरलता, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शांति, दया, अलोभ, मृदुता, लोक शास्त्र विरुद्ध आचरण से लज्जा, अचंचलता, तेज, क्षमा, धैर्य, शुद्धि, निरभिमानिता इत्यादि दिव्य गुण सहज रूप से प्राप्त होते हैं। वो निर्द्वंद होता है तथा योग क्षेम की चिंता से मुक्त रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ऐसे व्यक्ति को आत्मवान कहा है जिसने अपने मन, बुद्धि और समस्त इंद्रियों को भली भांति वश में कर लिया है, वही आत्मवान है। उसी में ऐसी शक्ति होती है जिसके समक्ष किसी भी अन्य शक्ति सत या असत को झुकना पड़ता है, क्योंकि वो सभी प्राणियों को अपने में तथा अपने को सभी प्राणियों में देखता है। वो समदर्शन होता है। स्वभाव तथा कर्मों के सुधार से तथा दिव्य गुणों के अभ्यास पूर्वक आधान से आत्मशक्ति प्राप्त होती है। इस आत्मशक्ति से मनुष्य अपना भी उद्धार कर सकता है तथा अपने समाज का भी, क्योंकि आत्मा ही अपना बंधु है और आत्मशक्ति ही सर्व कल्याण साधिका शक्ति। अतः सर्वशास्त्र सारभूत यही उपदेश ग्राह्य है, कुरु पौरुषमात्म शक्त्या।
1: ये था आज का विचार बिंदु। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। स्वास्थ्य चर्चा में आइए सुनते हैं जल जनित रोग कारण और समाधान विषय पर डॉक्टर राजेश जैन से ये जानकारी।
2: आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर राजेश जैन। श्रोताओं, हम सभी बचपन से सुनते आए हैं कि जल ही जीवन है, और यह बात सच भी है क्योंकि पानी के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन यह पानी जब किसी कारण से गंदा या दूषित हो जाता है तो वह अनेक बीमारियों का कारण बनता है। अभी जैसा कि बरसात का मौसम चल रहा है तो इस मौसम में हम देखते हैं कि अस्पतालों में उल्टी, दस्त या पेट के संक्रमणों के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसका देखा जाए तो सबसे जो सटीक जो कारण है वो है दूषित पानी या फिर उस पानी से बने भोजन से, जो कि आज हमारा चर्चा का विषय है, जल जनित रोग, उसके कारण और समाधान। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि जल जनित रोग क्या है। तो बहुत आसान भाषा में अगर कहें तो वे सभी बीमारी जो गंदा पानी या उसी पानी से बने भोजन के कारण होती हैं, उन्हें जल जनित रोग कहते हैं। जैसे उल्टी, दस्त, पीलिया, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई, पेचिस, टाइफाइड इत्यादि बीमारी। ये सभी बीमारी दूषित पानी और भोजन

0: होती हैं, जिसे वाटर एंड कंटामिनेटेड डिसीज कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि पानी दूषित कैसे होता है। तो पानी दूषित होने के कई सारे कारण होते हैं। जैसा अभी बरसात का मौसम चल रहा है, तो नालियों का जो पानी रहता है वो कई बार आसपास के कुएं, तालाबों या फिर जो पाइपलाइन कहीं पे डैमेज है उसके रास्ते घर में प्रवेश करता है या फिर पीने में यूज में आता है। साथ साथ जो घर में पानी की टंकियां होती हैं वो कई महीनों तक साफ नहीं होती हैं, उनको ढककर नहीं रखा जाता है। साथ में कई सारे ग्रामीण इलाकों में देखते हैं तो आज भी खुले में शौच करने की प्रथा है। साथ में कूड़ा करकट का सही से निस्तारण ना होना, मक्खियां और धूल का पानी के ऊपर बैठना, ये सभी कारण जल को दूषित और भोजन को दूषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब बीमारी कैसे होती है? जब कोई यह दूषित पानी पीता है तो उसके शरीर में कई सारे जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं, वायरस बोलते हैं, हैव पैरासाइट, परिजीवी, ये सभी उस भोजन या पानी से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के बाद जो तरह तरह के जो लक्षण हैं वो उत्पन्न होते हैं, जैसे उल्टी होना, दस्त हो जाना या फिर बुखार आना, पेट में संक्रमण हो जाना, पेट में दर्द होना, पीलिया होना जिसको हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई बोलते हैं, साथ में टाइफाइड होना। तो ये सभी बीमारी का जो मुख्य कारण है वो है दूषित पानी और दूषित भोजन का उपयोग करना। इन सभी बीमारियों में सबसे जो अधिक खतरा जो रहता है वो रहता है बच्चों को, जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, साथ में बुजुर्ग हैं हमारे समाज के, और जो गर्भवती महिलाएं हैं। इन सभी में रोग से लड़ने की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो सामान्य वयस्कों की अपेक्षा कुछ कम होती है, जिससे इन लोगों को इस तरह से गंदे पानी या गंदे पानी से उत्पन्न जो भोजन, उससे जो भी बीमारी होती है वो ज्यादा होती है। साथ में आयुर्वेद कहता है कि वर्षा ऋतु में जो हमारी डाइजेस्टिव फायर होती है, जिसको अग्नि कहा गया है, वो बाकी ऋतुओं की अपेक्षा काफी कम होती है। इसीलिए इस ऋतु में हमें हमेशा हल्का, ताजा और जल्दी पचने वाला, जिसको सुपाच्य भोजन का उपयोग करना चाहिए। कहा भी गया है कि स्वच्छ पानी, स्वच्छ भोजन और अच्छी दिनचर्या सबसे बड़ी सुरक्षा है। इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जिनसे हम इन बीमारियों से बच सकते हैं, जिनकी चर्चा हम आगे भी करेंगे। साथ में अगर दूषित पानी या दूषित पानी से निर्मित जो भी भोजन, भोज्य पदार्थ हैं, अगर उनके उपयोग से बचा जाए तो हम कहीं हद तक इन बीमारियों से बच सकते हैं। साथ में कुछ छोटी छोटी आदतें, जैसे हमेशा साफ पानी पीजिए। अगर पानी की गुणवत्ता या पानी की शुद्धता में आपको लगता है कि संशय है तो उस पानी को उबालकर ठंडा करके आप पी सकते हैं।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आप सुन रहे थे जल जनित रोग कारण और समाधान विषय पर डॉक्टर राजेश जैन से ये जानकारी। आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

संतान के आसन्न विरह में तड़पते सिर धुनते राजा दशरथ ने पुत्र वधु को अनेक प्रकार से वनगमन से विमुख करने की चेष्टा की। संकोचवश सीता ने प्रतिवाद नहीं किया, किंतु उनका मन श्री राम के चरणों में अनुरक्त था, अतः उन्हें पति को छोड़कर घर में रहना श्रेयस्कर नहीं लगा और न ही वनगमन भयावह लगा। कैकेयी ने तमक कर मुनियों के वस्त्र, माला, मेखला आदि और कमंडलु राम के आगे रख दिए और कोमल वाणी से कहा, हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। प्रेम के वश में दुर्बल हृदय वाले राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ सकते।

के पुण्य, यश और परलोक भले ही बिगड़ जाएं, वे तुम्हें वन जाने को भी नहीं कहेंगे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता कैकेयी की सीख श्री राम को भली लगी, किंतु राजा दशरथ को ये वचन वाण की भांति लगे और वो मूर्छित हो गए। लोग व्याकुल हैं, किसी को सोच नहीं पड़ता कि वे क्या कहें। श्री राम मुनि का वेश धारण कर माता पिता के सम्मुख शीश नवाकर चल पड़े। राजमहल से निकलकर वे कुलगुरु वशिष्ठ के द्वार पर आ खड़े हुए। वहां ब्राह्मणों तथा याचकों की टोली को वर्षासन देकर उन्होंने दास दासियों को गुरु को सौंपा और हाथ जोड़कर कुलगुरु से प्रार्थना की कि वे माता पिता और पालक की भांति उनकी देखरेख करें। अयोध्या वासियों से उनकी प्रार्थना थी कि वे माता पिता को किसी भांति का कष्ट न होने दें।

श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ का प्रसारण आप आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से सुन रहे थे। आज के गायक कलाकार थे भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह।

कार्यक्रम विवरण में आइए हम आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। आज रात्रि 8 बजे संसद समीक्षा और रात्रि 10 बजे सुनिए संसद में प्रश्नकाल की रिकॉर्डिंग का प्रसारण। ये दोनों ही कार्यक्रम आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पंडित ऋत्विक सान्याल का ध्रुपद गायन।

सुनेंगे सुबह 7:31 पर और दिन में 12:45 पर। गुड मॉर्निंग बनारस सुबह 7 बजे, मधुरिमा सुबह 8:45 पर, झंकार सुबह 10 बजे, दिन में 11 बजे सुनिएगा फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम सुनिएगा दिन में 12 बजे, दिन में 12:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में रुचि मिश्रा के गाए भजन सुनेंगे। दिन में 1:15 महिलाएं अंगनैया कार्यक्रम में आंगनबाड़ी द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं विषय पर सुनेंगी रमिता तिवारी और शिखा श्रीवास्तव की बातचीत, साथ ही होगा गीत संगीत। शाम 5 बजे धरती के गीत कार्यक्रम में आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी गीत, कलाकार होंगे धुरवा राम, मकाराम और दुखियाबाई। शाम 5:15 युवाणी कार्यक्रम में युवा साथी सुनेंगे आज की बात क्या आप जानते हैं, यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन, रोजगार सूचना और सुनिएगा गीत संगीत। और शाम 6:30 पर किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम कृषि जगत, जिसमें मछलियों की उचित देखभाल कैसे करें विषय पर सुनिए डॉक्टर वामदेव पांडे और सुधीर कुमार श्रीवास्तव की बातचीत, साथ ही होगा मोहन सिंह यादव और साथी का गाया लोकगीत। मोहन सिंह यादव और साथी के गाए लोकगीत आप सुबह 9:50 पर और दिन में 1:45 पर भी सुनिएगा।

आपको एक बार फिर से बता दें, आज रात्रि 8 बजे संसद समीक्षा और रात्रि 10 बजे सुनिए संसद में प्रश्नकाल की रिकॉर्डिंग का प्रसारण। ये दोनों ही कार्यक्रम आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे। आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण में हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। सुबह के 6:55 हो रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

हे बनारस, गुड वाला मॉर्निंग। क्या हाल चाल? सब बढ़िया ना? आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और ट्यून किया है आपने अपना फेवरेट मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस, ओनली ऑन आपकी वाणी आकाशवाणी, मेरे यानी आपकी होस्ट और दोस्त स्नेहा के साथ। बनारस, आप सबको पता है कि बारिश में बाकी मौसमों की तुलना में आहार और दिनचर्या का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस मौसम में जठ रागनी धीमे पड़ने से पाचन कमजोर हो जाता है। ऐसे में हल्का ताजा और सुपाच्य भोजन और पेय लेने की सलाह दी जाती है। तो आइए जानते हैं कि इस मौसम में कैसी जीवन शैली अपनानी चाहिए। आयुर्वेद में वर्षा ऋतु को ऐसा समय माना गया है जब शरीर की पाचन शक्ति यानी कि जठ रागनि कमजोर हो जाती है। वातावरण में नमी, बादल, दूषित जल और तापमान में अचानक परिवर्तन के कारण वात

दोष बढ़ने की प्रवृत्ति रहती है। इसलिए इस मौसम में सही आहार और संतुलित जीवन शैली का पालन स्वास्थ्य की रक्षा और रोगों की रोकथाम के लिए बहुत जरूरी माना गया है। बारिश के मौसम में हैवी खाने की बजाय हल्का और सुपाच्य भोजन लेने से पाचन बेहतर रहता है। जैसे पुराने अनाज, गेहूं, जौ, पुराने चावल, मूंग दाल, लौकी, शहद और गुड़। हल्के खट्टे, मीठे और नमकीन स्वाद वाली चीजें लाभकारी मानी जाती हैं। मसालों में सेंधा नमक, काली मिर्च, दालचीनी और अदरक का सेवन लाभदायक है। हल्दी और हींग जैसे पाचन सहायक मसालों का सीमित मात्रा में उपयोग भूख और पाचन शक्ति बनाए रखने में मदद करता है और पाचन कमजोर होने के कारण इस मौसम में कच्चा खाना खाने से भी परहेज करना चाहिए। सलाद, कच्ची सब्जियां और स्प्राउट्स से बचना चाहिए। इसके अलावा पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, पत्ता गोभी और मेथी भी कम खाएं तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि बरसात में इनमें कीड़े लगने की आशंका ज्यादा होती है। साथ ही भारी और तले हुए खाद्य पदार्थ जैसे राजमा, छोले, जंक फूड, उड़द की दाल, पनीर और बासी भोजन से भी दूरी बनाए रखें। साथ ही इस मौसम में ठंडी चीजें यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा, कोल्ड कॉफी या किसी भी प्रकार के कैफीन युक्त ड्रिंक से बचें। इसकी जगह पे आप सूप, ग्रीन टी, हर्बल चाय, तुलसी या अदरक की चाय ले सकते हैं। इससे शरीर को एनर्जी मिलती है और पाचन भी बेहतर रहता है। बारिश के मौसम में वातावरण में नमी अधिक होने के कारण खाना जल्दी खराब हो सकता है। कई लोग फ्रिज में रखा बासी या रात का खाना भी अगले दिन दोबारा गर्म करके खा लेते हैं, लेकिन ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं माना जाता। साथ ही सड़क किनारे बिकने वाले कटे फल, गन्ने का जूस या कोई और खुली चीज खाने से बचिए। इससे पेट खराब होने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है और ठंडे पानी की अपेक्षा गुनगुना पानी ज्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि ठंडी चीजें पाचन को मंद करती हैं और गले संबंधी परेशानियां भी बढ़ा सकती हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार इस मौसम में आहार के साथ साथ अनुशासित जीवन शैली अपनाना भी आवश्यक है। बार बार बारिश में भीगने, कीचड़ या गंदे पानी में नंगे पैर चलने, गीले कपड़े पहने रहने और पसीना आने के बाद तुरंत ठंडी हवा के संपर्क में आने से बचना चाहिए। पैरों को हमेशा साफ और सूखा रखें ताकि फंगल इन्फेक्शन से बचाव हो सके। इस मौसम में शरीर की शक्ति अपेक्षाकृत कम रहती है, इसलिए अपनी क्षमता के अनुसार हल्का योग, स्ट्रेचिंग, ब्रीदिंग एक्सरसाइज और हल्की सैर करें। साथ ही हैवी एक्सरसाइज, दिन में ज्यादा सोना, देर रात तक जागना और अनियमित भोजन से बचना चाहिए। तो बस इन कुछ बातों का ध्यान रखते हुए स्वस्थ रहें इस मौसम में। और अब टाइम हो चुका है गुड मॉर्निंग बनारस में एंटरटेनमेंट का, तो सुनिए ये ब्यूटीफुल सा ट्रैक। आई विल बी राइट बैक, स्टे ट्यून्ड।

वेलकम बैक बनारस। अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस, ओनली ऑन आपकी वाणी आकाशवाणी मेरे यानी आपकी होस्ट और दोस्त स्नेहा के साथ। बनारस आज दिन है मंगलवार और तारीख है 28 जुलाई। तो आइए जानते हैं क्या हो रहा है अपने शहर बनारस में खास। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF ने 95 बटालियन पहाड़िया मंडी परिसर में अपने 88वें स्थापना दिवस का उत्साह पूर्वक आयोजन किया। मुख्य अतिथि कमांडेंट श्री RS बालापुरकर ने शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि समारोह में द्वितीय कमान अधिकारी श्री राजेश कुमार, द्वितीय कमान अधिकारी श्री आलोक कुमार, उप कमांडेंट श्री नवनीत कुमार, उप कमांडेंट श्री वीरेंद्र सिंह, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी श्री रवि प्रकाश, सहायक कमांडेंट श्री रंजन कुमार, सहायक कमांडेंट श्री कृष्णा कुमार यादव, निरीक्षक प्रिंस कुमार सिंह, प्रवीण कुमार सिंह और निरीक्षक अनिल कुमार यादव उपस्थित रहे। कमांडेंट श्री RS बालप

पुरकर ने जवानों के शौर्य, त्याग और निष्ठा की सराहना की और बल पर गर्व जताया। कार्यक्रम में शहीदों को श्रद्धांजलि, समवाय स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिताएं और दिन के समापन पर पारंपरिक बड़ा खाना आयोजन शामिल थे। भारतीय लोक कला और लोक संगीत के संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य से कार्यरत संस्था सोन चिरैया अपने स्वर्णिम 15 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 5 दिवसीय कजरी कार्यशाला रिमझिम बरसे बदरिया का आयोजन कर रही है। 25 से 29 जुलाई 2026 तक चलने वाली इस कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। काशी की सांस्कृतिक पहचान और सावन की लोक परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का ये प्रयास संगीत प्रेमियों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कार्यशाला की शुरुआत चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य स्थिति प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर राजदरी रिजॉर्ट में हुई, जहां प्रतिभागियों ने प्रकृति के बीच लोक संगीत की साधना की। इसके बाद प्रशिक्षण का दूसरा चरण मां गंगा की पावन धारा में संचालित क्रूज पर आयोजित किया जा रहा है। गंगा की लहरों, सावन की फुहारों और कजरी की मधुर स्वर लहरियों ने पूरे वातावरण को लोक संगीत के रंग में रंग दिया। इस कार्यशाला का संचालन देश की सुप्रसिद्ध लोक गायिका पद्मश्री मालिनी अवस्थी की देखरेख में किया जा रहा है। उनके मार्गदर्शन में प्रतिभागियों को पूर्वांचल और अवध की समृद्ध लोक गायन परंपरा से परिचित कराया जा रहा है। कजरी के साथ साथ झूला, चैती, दादरा और ठुमरी जैसी पारंपरिक गायन विधाओं की रागात्मक संरचना, लय, भाव, बंदिश और प्रस्तुति शैली का अभ्यास कराया जा रहा है, ताकि युवा कलाकार भारतीय लोक संगीत की मूल आत्मा को समझ सकें। कार्यशाला की एक विशेष उपलब्धि ये भी है कि इसमें भारत के विभिन्न राज्यों के अलावा विदेशों से भी बच्चे, युवा कलाकार और संगीत साधक भाग ले रहे हैं। अलग अलग भाषाओं और संस्कृतियों से जुड़े प्रतिभागी काशी में एक साथ लोक संगीत का प्रशिक्षण लेकर सांस्कृतिक एकता और भारतीय परंपरा का संदेश दे रहे हैं। इस वर्ष का आयोजन इसलिए भी खास है क्योंकि पहली बार पद्मश्री मालिनी अवस्थी अपने शिष्यों के साथ काशी में गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाएंगी। माँ गंगा के तट पर गुरु शिष्य परम्परा का ये आयोजन प्रतिभागियों के लिए आजीवन यादगार अनुभव बनने जा रहा है। 29 जुलाई को गंगोत्री क्रूज पर आयोजित होने वाली विशेष सांगीतिक संध्या के साथ कार्यशाला का समापन होगा। इस अवसर पर प्रतिभागी कजरी, झूला, दादरा और ठुमरी की प्रस्तुतियां देंगे। पद्मश्री मालिनी अवस्थी ने कहा कि लोक संगीत केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, परम्परा और मिट्टी की आत्मा है। उन्होंने कहा कि ऐसी कार्यशालाएं नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम बन रही हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि काशी की ये पहल भारतीय लोक संगीत को राष्ट्रीय ही नहीं वैश्विक स्तर पर भी नई पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और बनारस, अगर आज के खास दिन की बात करें तो आज है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष 28 जुलाई को पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों और जैव विविधता की रक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ये दिवस लोगों, समुदायों, सरकारों और संगठनों को वनों, वन्य जीवों, जल, मिट्टी और अन्य प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों के संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करता है, जो पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखते हैं। और विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस हमारे लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है तो जानिए कि विश्व भर में पारिस्थितिक तंत्रों पर बढ़ते दबाव के कारण विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस का महत्व बढ़ गया है। वर्तमान में 48,000 से अधिक प्रजातियां विलुप्त होने के खतरे में है। लगभग आधी प्रवासी प्रजातियों की आबादी में गिरावट आ रही है। 2025 तक लगभग 43 लाख हेक्टेयर उष्णकटिबंधीय वर्षावन नष्ट हो गए थे। जलवायु परिवर्तन के कारण जंगल की आग, बाढ़, सूखा और चरम मौसम की घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता बढ़ रही है। और अब इसी के साथ बनारस, मेरे भी जाने का वक्त हो चला है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ समय बिताइए, आपको भी अच्छा लगेगा और उन्हें भी अच्छा लगेगा।
तो अब गुड मॉर्निंग बनारस से दीजिए अपनी होस्ट और दोस्त स्नेहा को इजाजत, छोड़े जा रही हूँ आपको इस

0: गुड मॉर्निंग बनारस।
1: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अब से कुछ ही देर में यानी के 7:20 से प्रादेशिक समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, जिसे हमारे लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा।
2: चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
3: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
2: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
3: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
2: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
3: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
2: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
4: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में पेश हुआ लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026। पेपर लीक के मामलों में सख्त कार्रवाई का है प्रावधान। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार को श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा में गबन मामले की जांच के लिए गठित SIT में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का दिया निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कल वाराणसी से करेंगे देशव्यापी संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास सामाजिक समरसता अभियान का शुभारंभ। और प्रदेश में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी, मौसम विभाग ने आज भी कहीं कहीं भारी बारिश की दी चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में कल लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया।

0: पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया।
1: मैं लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 में संशोधन करने के लिए लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखता हूँ।
0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे की वजह से दिन भर के लिए स्थगित किए जाने के कारण इस विधेयक पर चर्चा नहीं हो सकी।
2: मॉनसून सत्र के लगातार छठे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR को वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा की कार्यवाही 4 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 5 बार स्थगित हुई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने देना चाहते। हंगामा जारी रहने के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। चल रहे मॉनसून सत्र के दौरान अब तक संसद में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सका है। अनुपम मित्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना है। एक रिपोर्ट।
3: यह विधेयक परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए लाया गया है। इस विधेयक में सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। इसके अलावा मामलों का जल्द निपटारा सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित किए जाएंगे, जहां मामलों की रोजाना सुनवाई होगी। वहीं पुलिस में मामला दर्ज होने के 2 महीने के भीतर जाँच पूरी करनी होगी। इसके अलावा आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मामले का निपटारा करने का प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस बीच सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची तथा वी मोहना की पीठ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई करने का निर्णय लिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार को अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा में गबन के मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल SIT में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया है। SIT 2 सप्ताह के अंदर पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इससे पहले प्रदेश सरकार ने कल सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने अयोध्या में श्रीराम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय SIT का गठन किया है। इस बीच इस मामले में अयोध्या में कल एंटी करप्शन कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद न्यायालय ने जेल में बंद सभी आरोपियों की न्यायिक रिमांड 10 अगस्त तक बढ़ा दी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कल वाराणसी से देशव्यापी संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास सामाजिक समरसता अभियान का शुभारंभ करेंगे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित यह अभियान 20 फरवरी 2027 तक चलाया जाएगा। गोरक्ष पीठाधीश्वर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में गुरु पूर्णिमा पर्व पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। हमारे गोरखपुर प्रतिनिधि ने बताया कि इस अवसर पर श्री योगी गोरक्षपीठ की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए शिष्य और गुरु दोनों भूमिकाओं में दिखाई देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर योगी की पाती साझा करते हुए कल मनाए जाने वाले गुरु पूर्णिमा पर्व को लेकर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व गुरुजनों के प्रति श्रद्धा, कृतज्ञता और सम्मान प्रकट करने का अवसर है।
4: अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय मनीषा एवं सनातन संस्कृति में गुरु को साक्षात परम ब्रह्म माना गया है। श्री योगी ने कहा कि गुरु शिक्षा ही नहीं देते, जीवन को दिशा भी देते हैं। गुरु स्वयं ज्ञान का आलोक है, जो शिष्य को अज्ञान रूपी तम से निकालकर सत्य

0: संस्कार और प्रकाश के पथ पर अग्रसर करते हैं। मुख्यमंत्री ने अपील की है कि अपने गुरुजनों का सदैव स्मरण रखें, उनके दिए आदर्शों को जीवन में उतारें। श्री योगी ने कहा कि इससे लोगों का विकास सुनिश्चित होगा तथा विकसित प्रदेश का मार्ग भी तभी प्रशस्त होगा। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
1: प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर घर तिरंगा अभियान के माध्यम से देश के नागरिकों को देशभक्ति की भावना से प्रेरित करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह गर्व के साथ अपने घरों पर तिरंगा फहराएं।
2: हम प्रधानमंत्री जी ने लगातार तिरंगा का अभियान चलवाकर पूरे देशवासियों को राष्ट्रभक्ति के प्रति खासतौर से हर नागरिक का को कर्तव्य बोध कराया है और ये निश्चित रूप से अपने झंडे के प्रति पूर्ण सम्मान होना चाहिए और सभी देशवासियों का ये कर्तव्य है कि वो अपने फ्लैग के प्रति पूरा समर्पण भाव से सम्मान करें और आदर पूर्वक इसको अपने घर में स्थापित करें।
1: प्रधानमंत्री ने बीते रविवार को मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान को बढ़ावा देने की अपील की। अगले माह 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के लिए नागरिकों से न्यू इंडिया के निर्माण से जुड़े अपने विचार, सुझाव और विजन साझा करने का आग्रह किया गया है। इनमें से चुने गए सुझावों को प्रधानमंत्री के संबोधन में शामिल किया जाएगा। लोग अपने विचार और सुझाव MyGOV प्लेटफॉर्म पर दे सकते हैं। बलरामपुर जिले की सदर सीट से पूर्व विधायक और कल्याण सिंह सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हनुमंत सिंह का कल लखनऊ में निधन हो गया। वह 86 वर्ष के थे और लंबे समय से बीमार चल रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व मंत्री हनुमंत सिंह के निधन पर शोक संवेदना प्रकट की है। मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि कैबिनेट मंत्री के रूप में हनुमंत सिंह ने अपनी सेवा भावना एवं संवेदनशीलता से भारतीय जनता पार्टी परिवार की मजबूती में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हुए प्रदेश एवं समाज की असीम सेवा की। प्रदेश की राजधानी लखनऊ, श्रावस्ती, अमरोहा और आसपास के क्षेत्रों में कल हल्की से लेकर मध्यम बारिश हुई। मौसम विभाग ने राज्य में आज भी कहीं कहीं गरज चमक के साथ भारी बारिश और बिजली गिरने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस बीच बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण बदायूं में गंगा, लखीमपुर खीरी में शारदा और बाराबंकी तथा बलिया में घाघरा नदी खतरे के निशान के पास बह रही है। वहीं नेपाल से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण बस्ती में घाघरा नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में पेश हुआ लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026, पेपर लीक के मामलों में सख्त कार्रवाई का है प्रावधान। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार को श्री राम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा में गबन मामले की जांच के लिए गठित SIT में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का दिया निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कल वाराणसी से करेंगे देशव्यापी संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास सामाजिक समरसता अभियान का शुभारंभ। और प्रदेश में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी, मौसम विभाग ने आज भी कहीं कहीं भारी बारिश की दी चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
4: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाएं हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
5: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।

आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत है पंडित ऋत्विक सान्याल का ध्रुपद गायन, राग है नटभैरव। आपके साथ पखा

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे पंडित ऋत्विक सान्याल का ध्रुपद गायन। राग था नट भैरव। आपके साथ पखावज पर संगत कर रहे थे अंकित पारिख। ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से सुन रहे थे। सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के बढ़ते निजी अंतरिक्ष तंत्र की सराहना की। विक्रम 1 की सफलता के बाद स्काई रूट के संस्थापकों से की मुलाकात। बिहार और असम सरकारें नीट प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामले वापस लेंगी। विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार प्रदर्शनकारी भी रिहा किए जाएंगे। एनडीए संसदीय दल आज नई दिल्ली में अपनी साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक करेगा। पर्यटन मंत्रालय ने अतुल्य भारत ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए एयर इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत और चीन ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व को दोहराया। और भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला

0: धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं की शॉटपुट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस के पवन चंदना और नागा भरत डाका से बातचीत की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि विक्रम वन की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर भी चर्चा हुई। विक्रम वन भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट है। प्रधानमंत्री ने उनकी यात्रा और भविष्य की योजनाओं के बारे में सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि उनकी ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और सकारात्मकता देश के निजी अंतरिक्ष तंत्र की जीवंत भावना को दर्शाती है। श्री मोदी ने स्काईरूट एरोस्पेस की पूरी टीम को शुभकामनाएं भी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में भी विक्रम वन की सफलता की सराहना की थी।
1: विक्रम वन इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब की स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है।
0: बिहार और असम की राज्य सरकारों ने नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज मामले और अन्य कानूनी कार्रवाई वापस लेने का फैसला किया है। ब्योरा हमारी संवाददाता से।
2: गृह विभाग की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार 26 जुलाई की शाम 6 बजे तक राज्य के किसी भी हिस्से में विरोध प्रदर्शन में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध कोई दंडात्मक, प्रतिशोधात्मक या प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस अवधि तक दर्ज सभी प्राथमिकी, परिवाद और कारण बताओ नोटिस वापस लेने की विधिक प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ की जाएगी। इसके साथ ही इन मामलों में गिरफ्तार या निरोधित सभी व्यक्तियों को जल्द रिहा किया जाएगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन मामलों में नामित व्यक्तियों के खिलाफ भविष्य में भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सविता पारिक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: उधर असम के गृह विभाग ने बताया है कि विरोध प्रदर्शनों के संबंध में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदर्शनों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ राज्य के किसी भी पुलिस प्राधिकरण द्वारा कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि सरकार का विरोध प्रदर्शनों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कोई और प्रतिकूल कार्रवाई करने का प्रस्ताव नहीं है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक आज सुबह संसद भवन में आयोजित की जाएगी। मंगल मिलन के नाम से प्रचलित ये बैठकें पारंपरिक रूप से संसद सत्र के दौरान मंगलवार को आयोजित होती हैं। इन बैठकों का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता का प्रदर्शन करना है। पिछली बैठक इसी महीने की 21 तारीख को हुई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से समन्वित प्रयास करने का आह्वान किया था। तृणमूल कांग्रेस से अलग हुए गुट नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया के सांसदों को भी गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाएं भारत की लोकतांत्रिक और विकास यात्रा की आधारशिला हैं। श्री सिंह ने नई दिल्ली में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम और समर्थ पंचायत पोर्टल का शुभारंभ करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये पहल विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप आर्थिक रूप से सशक्त, तकनीकी रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर पंचायतों के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में

0: लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पर्यटन मंत्रालय ने एयर इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य प्रतिष्ठित अतुल्य भारत ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देना है। एक रिपोर्ट।
2: ये समझौता कल नई दिल्ली में पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में हुआ। इस सहयोग का लक्ष्य एयर इंडिया के व्यापक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के साथ साथ मंत्रालय की पर्यटन स्थल प्रचार पहलों का लाभ उठाकर भारत की वैश्विक पर्यटन क्षमता को बढ़ाना है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये साझेदारी एयर इंडिया के व्यापक वैश्विक नेटवर्क और भारत के विविध पर्यटन विकल्पों का लाभ उठाकर प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में देश की उपस्थिति को मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि इस सहयोग के अंतर्गत संयुक्त गंतव्य अभियान और स्टॉप ओवर पर्यटन को बढ़ावा देने सहित विजिट इंडिया पास जैसी पहलों पर विचार किया जाएगा। समझौते के अंतर्गत मंत्रालय और एयर इंडिया डिजिटल और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर संयुक्त प्रचार अभियान, सह ब्रांडेड डेस्टिनेशन मार्केटिंग और पर्यटन संबंधी कहानियों का संचालन करेंगे। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने खिलौना क्षेत्र को समर्थन देने और वर्ष 2032 तक वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी 5% तक करने के लिए कार्यबल के गठन की घोषणा की है। वे नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा आयोजित खिलौना क्षेत्र से संबंधित हितधारकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। श्री गोयल ने विनिर्माण, नवाचार और निर्यात को मजबूत करने के उद्देश्य से तैयार खिलौना क्षेत्र प्लेबुक का भी शुभारंभ किया। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि केंद्र सरकार अगले महीने की 25 तारीख की रात से भारत में इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाएगी। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने दावे को निराधार बताते हुए कहा है कि सरकार द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने चीन यात्रा के दौरान पेचिंग में चीन की उप विदेश मंत्री हुआ चुनयिंग से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। विदेश सचिव ने भारत और चीन के बीच साझेदारी को आगे बढ़ाने और व्यापार तथा आर्थिक संबंधों में पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास के अवसरों पर भी चर्चा की। चीन में भारतीय दूतावास के अनुसार दोनों अधिकारियों ने भारत चीन सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व को भी स्वीकार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थानीय चुनावों के दौरान मतदान के दिन हुई हिंसक झड़पों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। पीपल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान ने बताया है कि उसके कार्यकर्ता मुख्तार यूनिस की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। ये चुनाव जो मूल रूप से एक दिन के लिए निर्धारित थे, अब आज से 10 अगस्त तक 3 चरणों में आयोजित किए जा रहे हैं। पीपीपी और पीएमएलएन ने कई निर्वाचन क्षेत्रों में एक दूसरे पर चुनावी धांधली का आरोप लगाया है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी ने चुनावों का बहिष्कार किया है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, ओडिशा, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दक्षिण आंतरिक तथा तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर पूर्व भारत के कुछ हिस्सों, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरलम, माहे, कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज दिन में मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने आज राज्य के अलग अलग हिस्सों में तेज से बहुत तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के अनेक हिस्सों में कल रात से बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, देहरादून, टेहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, उधमसिंह नगर, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिलों के कुछ स्थानों पर भारी बारिश और गर्जन के साथ बिजली चमकने की संभावना जताई है। विभाग की चेतावनी के मद्देनजर राजधानी देहरादून, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चमोली और बागेश्वर में आज सभी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली लगभग 50 सड़कें बंद हैं जिन्हें खोलने का कार्य जारी है। हालांकि चारधाम यात्रा मार्ग फिलहाल खुले हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में मॉनसून सक्रिय रहेगा। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉटपुट F57 स्पर्धा में 9.81

0: मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता है। शर्मिला राष्ट्रमंडल खेलों के पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं। इस अवसर पर शर्मिला ने कहा कि वे देश के लिए पदक लाकर बहुत प्रसन्न हैं।
1: हम बहुत खुश हैं हमारे देश के लिए मेडल लाके, हम आगे भी ऐसे ही मेडल लाते रहेंगे और नेक्स्ट कॉमनवेल्थ की अच्छी तैयारी करेंगे। इस मेडल से मेरे आगे का रास्ता और आसान हो गया और अच्छी मेहनत करके और अच्छा रिकॉर्ड बनाएंगे।
0: सर्वेश कुशारे ने पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में रजत पदक जीता है। भारत के पदकों की संख्या अब 10 हो गई है। राष्ट्रपति और खेल मंत्री ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद प्रियंका। पेपर लीक पर सख्ती से जुड़ा विधेयक लोकसभा में पेश होने की खबर आज नवभारत टाइम्स और जनसत्ता सहित सभी अखबारों की प्रमुख खबर है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, पार्टियां राजनीतिक नफा नुकसान के गणित में जुटी, हंगामे के बाद विपक्ष चर्चा को राजी। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, 10 साल जेल 10 करोड़ जुर्माने का प्रस्ताव, आज बहस संभव। दैनिक जागरण की खबर है, जंतर मंतर पर प्रदर्शन को हिंसक बना रहे अपराधी, 989 की हुई पहचान। पत्र ने प्रदर्शन का प्रोटोकॉल शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, ये अच्छा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जहां पुलिस की सख्ती पर सवाल उठाए हैं, वहीं पुलिस कर्मियों पर हमले का संज्ञान भी लिया है। पत्र ने कहा है कि उचित ये होगा कि न्यायालय ये सुनिश्चित करे कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के नाम पर अराजक तत्व बचने न पाए। अमर उजाला ने वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का बयान प्रकाशित किया है, देश में जल्द ही 10 और 20 रुपए के पॉलीमर यानी प्लास्टिक नोटों का परीक्षण शुरू हो सकता है, आरबीआई के प्रस्ताव को सरकार ने दी मंजूरी। हिंदुस्तान ने लिखा है, 100 करोड़ से अधिक आय वाले करदाताओं की संख्या 5 वर्ष में 4 गुना बढ़ी। सरकार ने कहा, समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने से आय में बढ़ोतरी के संकेत सामने आए हैं। सूर्यास्त के बाद कल दिखेगा बकमून का आकर्षण, शबाब पर होगा चांद। हिंदुस्तान ने बताया है, दूधिया रोशनी बिखेरता हुआ पूर्ण चंद्र बकमून की शक्ल में नजर आएगा, प्रत्यक्षित चंद्र घटनाओं में से एक नग्न आंखों से भी देख सकेंगे।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के बढ़ते निजी अंतरिक्ष तंत्र की सराहना की। विक्रम 1 की सफलता के बाद स्काई रूट के संस्थापकों से की मुलाकात। बिहार और असम सरकारें नीट प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामले वापस लेंगी। विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार प्रदर्शनकारी भी रिहा किए जाएंगे। एनडीए संसदीय दल आज नई दिल्ली में अपनी साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक करेगा। पर्यटन मंत्रालय ने अतुल्य भारत ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए एयर इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। और भारत और चीन ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व को दोहराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। The headlines. Prime Minister Narendra Modi hails India's growing private space ecosystem, meets Skyroot Aerospace founders after Vikram 1 success. Bihar and Assam governments to withdraw cases against NEET protesters and release those arrested under various charges. NDA parliamentary party to hold its weekly Mangal Milan meeting in New Delhi today. Tourism Ministry signs MOU with Air India to promote India as preferred global tourism destination under Incredible India brand. India and China reaffirm importance of maintaining peace and tranquility along border. And India's para-athlete Sharmila Dhankar wins gold medal in women's shot put event at the Commonwealth Games. Prime Minister Narendra Modi interacted with Pavan Chandna and Naga Bharat Dhaka of Skyroot Aerospace. In a social media post, Mr. Modi highlighted that the success of Vikram 1 featured prominently in the discussion, along with several other interesting topics. The Prime Minister expressed happiness after hearing about the journey and insights into the future plans. He said the energy, ambition and positivity reflect the vibrant spirit of India's private space ecosystem. Mr. Modi also extended his best wishes to the entire Skyroot Aerospace team. In his Mann Ki Baat program also, Prime Minister praised the success of Vikram 1.
4: पिछले रविवार विक्रम वन इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। हम सभी भारतीय स्पेस सेक्टर के इस ऐतिहासिक

0: medal in the women's short put F57 event after a successful post-match protest and review stripped Nigeria's Eukeria Iyazi of her valid mark. With this, India's total medal count stands at 10, including 2 gold, 5 silver and 3 bronze at the Glasgow 2026 Commonwealth Games. Meanwhile, Indian boxer Lovlina Borgohain is already assured of a medal at Glasgow 2026 after receiving a quarter-final bye in the women's 75kg event. Chirag Jha from Sports Desk.
1: President Draupadi Murmu has congratulated Sharmila Dhankar on winning the gold medal in the women's short put F57 event at the Glasgow Commonwealth Games 2026. In a social media post, the president said that by becoming India's first ever Commonwealth Games gold medalist in para-athletics, Sharmila has achieved a landmark feat. The president also congratulated Sarvesh Anil Kushare for clinching the silver medal in the men's high jump event at the Commonwealth Games. Further, President Murmu congratulated Valluri Ajay Babu on securing the silver medal in the men's 79kg weightlifting event. Prime Minister Narendra Modi has also congratulated Bindya Rani Devi Sorokhaibam for winning bronze in the women's 58kg event. And now for a look at today's newspapers, it's over to Neena Arakkal.
2: Thank you, Abhishek. After protest, Parliament to debate tougher paper leak bill, leads Hindu Sun Times. Pradhan resignation fails to break Parliament logjam as opposition blocks business, headlines The Statesman. The Pioneer in its editorial piece, A Digital Fix for a Crisis of Trust, says restoring trust in examination system demands a secure and tamper-proof architecture, and who better than Nandan Nidekani to help build it. India's weightlifters continue to do the heavy lifting, bring home 3 more Commonwealth Games medals, reports Hindustan Times. Kiyoko Higashino, who made Japanese crime fiction a global obsession, dies at 68, reports the Indian Express. And finally, the Odyssey nears $1 billion at global box office, reports Financial Express. Well, the paper says Christopher Nolan's The Odyssey is well on course to become another global box office blockbuster. And with that, it's back to you, Abhishek.
1: Thank you, Nina. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi hails India's growing private space ecosystem needs Skyroot Aerospace founders after Vikram 1 success. Bihar and Assam governments to withdraw cases against NEET protesters and release those jailed under various charges. NDA Parliamentary Party to hold its weekly Mangal Milans meeting in New Delhi today. Tourism Ministry signs MOU with Air India to promote India as preferred global tourism destination under Incredible India brand. India and China reaffirm importance of maintaining peace and tranquility along border. And India's para-athlete Sharmila Dhankar wins gold medal in the women's short put event at the Commonwealth Games. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
3: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कौनैन हैदर। पहले इस वक्त की खास-खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने खलाई शोबे में भारत के फरोग पाते हुए प्राइवेट इको निज़ाम की सताइश की है। वज़ीर-ए-आज़म ने विक्रम 1 की कामयाबी के तनाजुर में स्काईरूट एयरोस्पेस के बानी अहलकारों से मुलाकात की। बिहार और आसाम की सरकारों ने नीट मामले पर एहतजाज करने वाले अफराद के खिलाफ केस वापस लेने और मुख्तलिफ इल्जामात में गिरफ्तार किए गए अफराद को रिहा करने का ऐलान किया है। एनडीए पार्लियामानी पार्टी आज नई दिल्ली में अपनी हफ्तेवार मंगल मिलन मीटिंग का एहतमाम करेगी। सियाहत की वजारत ने इनक्रेडिबल इंडिया ब्रांड के तहत आलमी सतह पर भारत को तरजीही सियाहती मुल्क के तौर पर फरोग देने की खातिर एयर इंडिया के साथ मुफाहमत नामे पर दस्तखत किए हैं। भारत और चीन ने सरहद पर अमनो इस्तेहकाम बरकरार रखने की अहमियत का इरादा किया है। और दौलती मुश्तरका खेलों में भारत की पैरा एथलीट शर्मिला धनखड़ ने खवातीन के शॉर्टपुट मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने स्काईरूट एयरोस्पेस के बानी पवन चंदाना और नागा भारत दाका के साथ गुफ्तगू की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने इस बात को उजागर किया कि उनकी बातचीत में विक्रम 1 की कामयाबी नीज कई दिगर दिलचस्प मौजूद पर खास तौर से तबादले ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने इस कंपनी के दोनों बानी अफराद के सफर और मुस्तकबिल के उनके मंसूबों के बारे में واقفیت حاصل کرنے کے بعد مسرت کا

0: इजहार किया। जनाब मोदी ने कहा कि उनकी तवानाई, जोश और मुस्बत अंदाजे फिक्र से भारत के खलाई शोबे के प्राइवेट इको निज़ाम के मुतहर्रिक जज्बे की अक्कासी होती है। जनाब मोदी ने स्काईरूट एयरोस्पेस की पूरी टीम के तई नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। वजीर आजम ने मन की बात के अपने प्रोग्राम में भी विक्रम वन की कामयाबी की सताइश की थी।
1: विक्रम वन, इसके सफल लॉन्च से हर

0: इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब की स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है।
1: बिहार सरकार ने उन अफराद के खिलाफ केस और दीगर कानूनी कार्रवाई वापस लेने का फैसला किया है जिन्होंने नीट यूजी इम्तिहान में मुबैना बेजाबतियों के मामले पर एहतजाज में हिस्सा लिया था। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: बिहार के महकमे दाखिला की तरफ से जारी किए गए एक पब्लिक नोटिस के मुताबिक 26 जुलाई को शाम 6 बजे से कबल रियासत में कहीं भी एहतजाज में हिस्सा लेने वाले किसी भी शख्स के खिलाफ कोई ताजीरी, इंतकामी या नामुआफिक कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस मुद्दत तक दर्ज कराई गई सभी FIR फौजदारी शिकायतों और वजह बताओ नोटिस वापस लेने के लिए कानूनी अमल फौरी तौर पर शुरू किया जाएगा। सरकारी बयान के मुताबिक वक्त की मजकूरा हद से कबल दाखिल किए गए केसों के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए या हिरासत में लिए गए अफराद को फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाएगा। सरकार ने यह यकीन दहानी भी कराई है कि इस मुद्दत से पहले के वाकयात के सिलसिले में मुस्तकबिल में कोई बराह रास्त या बिलवास्ता कार्रवाई नहीं की जाएगी। पटना से सविता पारीक की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
1: आसाम के उमूर दाखिला और सियासी उमूर के महकमे ने भी कहा है कि नीट यूजी इम्तिहान का पर्चा मुबैना तौर पर लीक होने के मामले पर एहतजाज के सिलसिले में रियासत में केस दर्ज किए गए थे और 13 अफराद को गिरफ्तार किया गया था। अलबत्ता रियासती सरकार ने यह फैसला किया है कि इन मुजाहरों में शामिल होने वाले अफराद के खिलाफ रियासत के अंदर पुलिस की तरफ से किसी भी तरह की कोई नामुआफिक कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA की पार्लियामानी पार्टी की हिकमत अमली से मुतालिक हफ्तेवार मीटिंग आज सुबह पार्लियामेंट हाउस में होने वाली है जिसे अब मंगल मिलन कहा जाता है। इस तरह की मीटिंग पार्लियामेंट इजलास के दौरान रिवायती तौर पर हर मंगल को हुआ करती है जिसका मकसद

0: से?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें
2: 0542227658
3: 0542227658।

0: Madhurima, the sound of melody. Madhurima.
1: मधुरमा कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी को। ज्योति स्वरूप का नमस्कार। श्रोताओं, आज 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। एक स्वस्थ समाज की नींव एक स्वस्थ पर्यावरण से होती है। इस जागरूकता दिवस का उद्देश्य हमारे प्राकृतिक संसाधनों को भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। आप सभी को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।

प्रकृति ईश्वर प्रदत्त अनमोल वरदान है। इसमें उपलब्ध शक्तियाँ और संसाधन हर जीव जंतु और मानव हित के लिए है। हमारी सृष्टि पंच तत्वों पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से मिलकर निर्मित है। सभी प्राकृतिक व्यवस्था एक दूसरे पर निर्भर होकर चलती है।

0: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहने, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
0: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
3: मधुरमा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। प्रकृति के

श्रृंगार, वृक्ष, जल, जंगल, पहाड़, नदियाँ, धरती का श्रृंगार है। खुशियों से भरा ये हमारा जीवन प्रकृति का अंश है। स्वस्थ और सुंदर जीवन के लिए करें प्रकृति से प्यार। घने जंगल, तरह तरह के हरे पेड़ और रंग बिरंगे फल फूल, पर्वतों से बहती नदियाँ, झीलें और सुंदर झरने, उगता हुआ सूरज, चमकते चांद, सितारे और बारिश के बाद का खुला आसमान। प्रकृति के विविध स्वरूप जीवन को गति देता है, मन को शांति देता है। हमें पर्यावरण से जुड़ना है।

परिवर्तन संसार का नियम है। प्रकृति के नियम को अपनाएं, खुशहाल जीवन के लिए प्रकृति का संरक्षण हम सभी का दायित्व है। पहाड़ों को टूटने से बचाएं, प्रकृति से प्यार और दोस्ती करें, पेड़ पौधे लगाएं, पर्यावरण को स्वच्छ रखें। प्रकृति में खुशी का अनमोल खजाना है। प्रकृति के महत्व को समझें।

0: मधुरिमा।
1: आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। सुबह के 9:15 हो रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे जिले की हलचल हमारे लखनऊ केंद्र से।

0: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए संभल और मिर्जापुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं संभल जिले की हलचल, आलेख और स्वर है अरुण कुमार का।
2: मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पिछले दिनों वाराणसी में आयोजित मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के शुभारंभ पर हुए समारोह का कलेक्ट्रेट सभागार भैजुई में सजीव प्रसारण देखा गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश सरकार के पशुधन एवं दुग्ध

0: विकास मंत्री धर्मपाल सिंह एवं जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल द्वारा जनपद के माध्यमिक शिक्षा विभाग के 5 तथा बेसिक शिक्षा विभाग के 10 शिक्षक शिक्षिकाओं, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों एवं रसोइयों को मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के अंतर्गत कैशलेस चिकित्सा सुविधा अनुमन्य किए जाने संबंधी प्रतीकात्मक प्रमाण पत्र वितरित किए गए। साथ ही योजना के अंतर्गत शिक्षकों, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को 5 लाख रुपए तक की कैशलेस सुविधा के संबंध में विस्तृत जानकारी भी प्रदान की गई। मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति में शिक्षकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। शिक्षक राष्ट्र के भावी नागरिकों का निर्माण करते हैं, इसलिए राज्य सरकार उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं सम्मान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना से लाखों शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, विशेष शिक्षक, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के शिक्षक, विद्यालयों में कार्यरत रसोइये तथा उनके आश्रित गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में देश एवं प्रदेश के लिए विकास का स्वर्णिम काल है। प्रदेश सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने शिक्षकों को आह्वान किया कि वे समय से विद्यालय पहुंचें, विद्यार्थियों को गुणवत्ता पूर्ण, तकनीकी संपन्न, संस्कार युक्त एवं राष्ट्र भावना से उत्प्रोत शिक्षा प्रदान करें। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी गोरखनाथ भट्ट, भाजपा जिलाध्यक्ष हरेंद्र सिंह रिंकू सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। संभल में संभव अभियान 6 के अंतर्गत जुलाई से सितंबर 2026 तक संचालित होने वाले 3 माह के विशेष अभियान के तहत जनपद संभल में जून 2026 के वजन एवं लंबाई मापन के आधार पर चिन्हित 172 अति गंभीर कुपोषित बच्चों को सुपोषित बनाने हेतु जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल द्वारा सभी चिन्हित बच्चों को विभागीय एवं जनपद स्तरीय अधिकारियों को गोद सौंपा गया। जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल ने बैठक में सभी संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करते हुए अभियान के प्रभारी संचालन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक अधिकारी प्रतिमाह कम से कम 2 बार अपने आवंटित SAM बच्चे के घर भ्रमण करेंगे तथा परिवार को कुपोषण, वृद्धि रुकावट, संतुलित एवं पौष्टिक आहार, खानपान की आदतों में सुधार, बच्चों की विशेष देखभाल तथा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध खाद्य सामग्री से पौष्टिक व्यंजन तैयार करने के संबंध में जागरूक करेंगे। बच्चों का नियमित वृद्धि मापन कराया जाए, शासन द्वारा संचालित पोषण संबंधी योजनाओं एवं सुविधाओं का 100% लाभ दिलाया जाए तथा आवश्यकता अनुसार बच्चों को पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती कराने की कार्रवाई प्राथमिकता से सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देशित किया कि आवश्यकता पड़ने पर संबंधित परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर मनरेगा जॉब कार्ड एवं राशन कार्ड उपलब्ध कराए जाएं ताकि परिवारों की आजीविका एवं खाद्य सुरक्षा सुदृढ़ हो सके। अभियान के अंतर्गत जिन सेम बच्चों के परिवार मछली का सेवन करते हैं उन्हें 0.2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले तालाबों से उपलब्ध मछली का लाभ दिलाया जाएगा जिससे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण प्रोटीन उपलब्ध हो सके। वहीं जिन परिवारों में मछली का सेवन नहीं किया जाता उन्हें पोषण पोटली उपलब्ध कराई जाएगी। जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जुलाई से सितंबर 2026 तक संचालित संभव अभियान 6 के दौरान प्रत्येक स्थिति में सभी 172 अति गंभीर कुपोषित बच्चों को सुपोषित बनाने के लक्ष्य को प्राप्त किया जाए। साथ ही उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी को अभियान की नियमित समीक्षा एवं प्रभारी पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश भी दिए। आगामी श्रावण मास की कांवड़ यात्रा को लेकर ग्राम पंचायत से लेकर जिला स्तर तक के बैठकों का आयोजन किया गया। भैजोई कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय बैठक का आयोजन जिला अधिकारी अंकित खंडेलवाल एवं पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई की अध्यक्षता में किया गया जिसमें सभी धर्म के धर्म गुरुओं एवं मंदिर के पुजारियों तथा सम्मानित व्यक्तियों को बुलाकर वार्ता की गई। कांवड़ यात्रा के दौरान जनपद के प्रमुख मंदिरों को लेकर चर्चा की गई। मंदिरों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम, पेयजल की व्यवस्था, हैंडपंप में पीने के पानी की स्थिति, मंदिरों एवं मंदिरों को आने वाले मार्गों तथा प्रमुख मार्गों पर साफ सफाई की स्थिति को लेकर चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने संबंधित को निर्देशित करते हुए कहा कि हैंडपंप के पास जल भराव न हो, शोकपेट की व्यवस्था की जाए तथा मंदिरों के पास प्रकाश की समुचित व्यवस्था रहे। जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल ने कांवड़ यात्रा की तैयारी के बारे में बताते हुए कहा कि
1: पेयजल को लेकर के, सड़क मरम्मत को लेकर के, मोबाइल टॉयलेट जहाँ जहाँ आवश्यकता है वो लगाने को लेकर के, कांवड़ शिविरों को लेकर के इसी प्रकार की मीटिंगें थाना, सर्कल, तहसील स्तर पे भी संचालित की जा रही है। अधिकांश मीटिंगें हो चुकी है। जो भी समुचित व्यवस्थाएं पिछले साल प्रबंध कराए गए थे उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए इन सभी प्रबंधों को कराया जा रहा है।
2: संभल जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं मिर्जापुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है SM सभा का।
3: उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति लखनऊ के निर्देश में जनपद मिर्जापुर में युवाओं को एड्स के प्रति जागरूक करने के लिए आगामी 30 जुलाई को 5 किलोमीटर की एक रेड एंड मैराथन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा जो कि PFE गेट बरौंधा से शुरू होकर RTO ऑफिस होते हुए जिला क्रीड़ा अधिकारी कार्यालय परिसर के फुटबॉल स्टेडियम में 2 बार चक्कर लगाने के पश्चात समाप्त होगी। विजेताओं को नगद धनराशि के साथ साथ स्टेट तथा नेशनल लेवल रेड एंड मैराथन में प्रतिभाग करने का अवसर प्राप्त होगा।

0: सभी 17 वर्ष से 25 वर्ष के युवाओं से दिए गए ऑनलाइन लिंक पर रजिस्ट्रेशन करके 30 जुलाई 2026 को प्रातः 7 बजे से प्रतियोगिता में भाग लिया जा सकता है। मिर्ज़ापुर में किसानों की आय बढ़ाने के लिए पारंपरिक खेती के साथ साथ बागवानी को भी लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार की विभिन्न योजनाओं और अनुदान का लाभ उठाकर मिर्ज़ापुर के किसान अब स्ट्रॉबेरी की खेती की ओर तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। कम समय में अधिक मुनाफा देने वाली इस फसल ने किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जिला उद्यान अधिकारी मेवा राम ने बताया कि जनपद मिर्ज़ापुर में वर्तमान समय में 190 किसान 100 एकड़ से अधिक भूमि पर स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। वर्ष 2026-27 में स्ट्रॉबेरी की खेती का रकबा बढ़ाकर 150 एकड़ करने का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि किसानों को इस फसल के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रति हेक्टेयर 90,000 रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। इससे किसानों पर शुरुआती लागत का बोझ कम हो रहा है और अधिक से अधिक किसान बागवानी फसलों की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। उन्होंने बताया कि स्ट्रॉबेरी की खेती करने के वाले किसान एक फसल के प्रति एकड़ 12 से 14 लाख की आय अर्जित कर रहे हैं। स्ट्रॉबेरी की खेती से न केवल किसानों की आय में बढ़ोतरी हुई है बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी सृजित हुए हैं। फसल की तुलाई, पैकिंग और विपणन कार्यों में स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। प्रसिद्ध शक्तिपीठ विंध्याचल स्थित माँ विंध्यवासिनी मंदिर कॉरिडोर बनने के बाद यहाँ पर्यटकों और दर्शनार्थियों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। धाम में बढ़ती सुविधाओं के साथ त्रिकोण पथ पर स्थित प्रमुख मंदिरों के विकास की रूपरेखा बन रही है। गत दिवस केंद्र में भाजपा की मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर मिर्ज़ापुर के प्रभारी मंत्री नंद गोपाल नंदी जिले में पहुंचे। उन्होंने मोदी सरकार के कार्यों को गिनाया और कहा कि आज जहां मिडिल ईस्ट के देश युद्ध के चपेट में है, तो वहीं भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है। देश के अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को सरकार योजनाओं का लाभ मिल रहा है, जिसका नतीजा है कि आज 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए हैं। और बता रहे हैं प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी।
1: देश के सबसे अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया, जिसका नतीजा है किसानों की आमदनी बढ़ाना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, युवाओं को रोजगार देने वाला बनाना, निवेश को नई ऊंचाई पर ले जाना सरकार की प्रमुख प्राथमिकता रही है।
0: मिर्ज़ापुर में जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार के निर्देशन और अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व के विनोद कुमार सिंह के मार्गदर्शन में जनपद की बाढ़ से प्रति संवेदनशील तहसील सदर एवं चुनार में क्रमशः SDRF एवं PAF की तैनाती कराई गई है। विगत वर्षों में बाढ़ के आंकड़े के अनुसार जनपद में कुल 404 ग्राम, सदर के 220 ग्राम और चुनार के 184 ग्राम बाढ़ के प्रति संवेदनशील हैं। जनपद की तहसील चुनार में तैनात PAF के द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में गत दिनों तहसील प्रशासन एवं उप जिलाधिकारी चुनार की उपस्थिति में बालूघाट चुनार पर राहत एवं बचाव के दृष्टिगत मॉक ड्रिल किया गया, जिसमें उन्होंने उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग परीक्षण किया और रेस्क्यू के तकनीकी पर अभ्यास किया। इस मॉक ड्रिल में जनपद के आपदा मित्रों ने भी प्रतिभाग किया और पूर्ण रूप से मॉक एक्सरसाइज को सफल बनाने में हर संभव सहयोग किया। जनपद न्यायालय मिर्ज़ापुर में आगामी 12 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जनपद न्यायाधीश ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशन पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मिर्ज़ापुर के तत्वाधान में दीवानी न्यायालय परिसर मिर्ज़ापुर, बाह्य न्यायालय चुनार, ग्राम न्यायालय मढ़ियान एवं राजस्व विभाग में संबंधित 12 सितंबर को पूर्वाहन 10 बजे राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।

आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार पूजा सोनी पुत्री अशोक सेठ निवासी J8/11 डिंगिया जैतपुरा वाराणसी, ये दिनांक 19 जून 2026 को दिन में 3 बजे अपने घर से बाहर कहीं गई थी, अब तक वापस नहीं आई। इनकी उम्र लगभग 25 वर्ष है।

लंबाई 4 फीट 9 इंच है। इनका रंग गोरा है। लापता होने के समय टी शर्ट और जीन्स पहने हुए थे। इनके बारे में जानकारी मिलने पर थाना जैतपुरा वाराणसी को सूचित करें या नज़दीक के किसी भी थाने को सूचित करें।

कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार विक्की सोनकर पुत्र राजू सोनकर निवासी 23/1 ढेलवरिया चौकाघाट जिला वाराणसी, जिनकी उम्र 22 वर्ष है, ये 13 जून 2026 को दिन में 12 बजे घर से निकले थे, अब तक वापस नहीं आए। इनका रंग सांवला है, गठीला जिस्म, गोल चेहरा। इनकी लंबाई लगभग 5 फीट 4 इंच है। लापता होने के समय सफ़ेद रंग की टी शर्ट और हल्के रंग की पैंट पहने हुए हैं। इनके बारे में जानकारी मिलने पर थाना जैतपुरा जिला वाराणसी को सूचित करें या नज़दीक के किसी भी थाने को सूचित करें।

कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार सपना कुमारी पुत्री श्री राजेश पटेल उर्फ मुन्ना निवासी ग्राम टिकरी खुर्द पोस्ट बड़ागांव थाना बड़ागांव जिला वाराणसी की निवासी हैं। ये 16 जून 2026 को घर से चिवरापुर के लिए निकली और वहां अभी तक पहुंच नहीं पाई और लापता हैं। इनकी लंबाई 5 फीट है। इनका रंग गोरा, उम्र लगभग 35 वर्ष है। लापता होने के समय पीला सूट काला चप्पल पहने हुई थी। इनके बारे में जानकारी मिलने पर कृपया सूचित करें थाना बड़ागांव जिला वाराणसी को या नज़दीक के किसी भी थाने को सूचित करें। आप सुन रहे थे खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना।

0: हम सभी का एक ही नारा, साफ सुथरा हो देश हमारा, सफाई अपनाएं, बीमारी भगाएं, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। हम सब ने ये ठाना है, भारत को स्वच्छ बनाना है। स्वच्छता का दीप जलाएंगे, चारों ओर उजियारा फैलाएंगे। सभी रोगों की एक दवाई, घर में रखो साफ सफाई।
1: आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। सुबह के 9:30 हो रहे हैं। थोड़ी देर में होगा उर्दू कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से।

शायकीन बज़्म की खिदमत में मेज़बान बज़्म आयशा राहत का रामपुर रेडियो मरकज़ से आदाब। समिन, ये हकीकत है कि उर्दू सिर्फ एक ज़ुबान ही नहीं बल्कि हमारी तहजीब व सकाफत और जज्बात का मुकम्मल ख़जाना है। ये इतनी हसीन और पुरकशिश है कि इसकी तरफ हर कोई खिंचा चला आता है और इसकी तासीर इतनी शीरी है कि सुनने वालों के दिलों पर सीधी असर करती है। जी हाँ सामीन, जब हम बात करते हैं उर्दू अदब की तो देख

0: हैं कि हर मैदान में, चाहे वो तालीम व तदरीस से वाबस्ता हो या फिर फिल्मी दुनिया से ही क्यों ना हो, हर मैदान में इसने अपने कारनामे अंजाम दिए और वो मकबूलियत, वो शोहरत हासिल की जो शायद ही किसी को नसीब हो। हालांकि हिंदी और उर्दू दोनों ही यकसा जुबानें हैं, लेकिन फिल्मी दुनिया में जो आज उसकी मकबूलियत है बॉलीवुड की, तो उसमें हम ये देखते हैं उर्दू के लिखे हुए नगमे या उर्दू की लिखी हुई कहानियाँ काफ़ी मकबूल हैं, जिसकी वजह इसकी रोज़मर्रा की गुफ्तगू है जो लोगों को अपनी तरफ खींचती है, वो अल्फाज जो लोगों को अपना शहदाई बनाए हुए हैं, समीन जिन्हें तैयार करने में देखा जाए तो एक बहुत बड़ी मेहनत है उन कलमकारों की, जिनकी फहरिस्त अनगिनत है, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो वाकई अपनी मिसाल आप हैं, जैसे हसरत हैं, फ़ानी हैं, शकील हैं और कैफ़ी आज़मी, जावेद अख्तर, गुलजार, ये ऐसे नाम हैं जिन्हें हर आम और ख़ास बहुत अच्छी तरह से जानता है और इसकी मकबूलियत में बहुत बड़ी जद्दोजहद रही। समीन, आज बॉलीवुड की जो कामयाबी है उसमें उर्दू ज़ुबान का जो हाथ है वो बहुत बड़ा रहा और इसको सभी तस्लीम करते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हमने इस खास मौजू को ही शामिल किया है अपनी इस तकरीर में, जिसका उन्वान है उर्दू और बॉलीवुड, फ़ायदे और नुकसान। समाप्त करते हैं ये तकरीर, मुकर्रर हैं डॉक्टर मोहम्मद इलियास साहब।
1: हिंदी उर्दू फिल्मी सनत को बॉलीवुड कहा जाता है। इब्तिदा से ही बॉलीवुड और उर्दू का रिश्ता जिस्म और रूह जैसा रहा है। पहली बोलती फिल्म आलम आरा के बाद से ही हिंदुस्तानी फिल्मों में उर्दू का दबदबा कायम रहा। फिल्मों की कहानियाँ और मुकालमे ज़्यादातर उर्दू के मुसन्निफीन के ही मरहून मिन्नत होते थे। उर्दू की गज़लें और नज़में फिल्मों की जान हुआ करती थीं। हिंदुस्तानी फिल्मों का सबसे बड़ा एजाज़ दादा साहब फाल्के अवार्ड पहली बार उर्दू के मशहूर शायर मजरूह सुल्तानपुरी को मिला था। इसके अलावा बेशतर अदाकार और अदाकाराओं की जबान भी उर्दू ही हुआ करती थी और इसमें किसी मजहब व मिल्लत का कोई दखल नहीं होता था। मशहूर फिल्म साज महबूब खान अपनी फिल्म का आगाज़ उर्दू के किसी न किसी शेर से ही किया करते थे, जैसे मुद्दई

मशहूर शायर मजरूह सुल्तानपुरी को मिला था। इसके अलावा बेशतर अदाकार और अदाकाराओं की जबान भी उर्दू ही हुआ करती थी और इसमें किसी मजहब व मिल्लत का कोई दखल नहीं होता था। मशहूर फिल्म साज महबूब खान अपनी फिल्म का आगाज़ उर्दू के किसी न किसी शेर से ही किया करते थे, जैसे मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। शहीद मछली शहरी का शेर, फानूस बन के जिसकी हिफाजत खुदा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जिगर मुरादाबादी का शेर, क्या हुस्न ने समझा है, क्या इश्क ने जाना है, हम खाक नशीनों की ठोकर में जमाना है। अल्लामा इकबाल का शेर, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। 1960 तक की फिल्मों में अदबियत बहुत ज़्यादा थी, फिल्मों की कहानियाँ और नगमे लिखने के लिए उन्हीं कलमकारों से काम लिया जाता था जो बुनियादी तौर पर उर्दू के मुसन्निफ़ थे। आजकल के आम फिल्म बी को तो उनके मुकालमों को समझने में भी दिक्कत पेश आ सकती है, जैसे कि लाल किला फिल्म में बहादुर शाह जफर की मशहूर गज़ल है, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलमे ना पायदार में, कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, दो गज ज़मीन भी न मिली कुए यार में। उर्दू की शेरीनी और जाज़बियत ने यहाँ के फिल्म शायकीन को इतना मशहूर कर दिया था कि सैकड़ों बरस बाद भी मीर की गज़ल बाजार फिल्म का शाहकार बन जाती है और लता मंगेशकर की आवाज़ ने उसमें ऐसी कशिश पैदा कर दी है कि जो लोग अशार का मफहूम भी नहीं समझते वो भी इस गज़ल के अशार को गुनगुनाते हैं। दिखाई दिए यूं कि बेखुद किया हमें आपसे भी जुदा कर चले, बहुत आरजू थी गली की तेरी सो यहाँ से लहू में नहा कर चले। लाल किला मिर्ज़ा गालिब जहाँ आरा गज़ल हिंदुस्तानी फिल्मी सनत की पुरानी यादगार फिल्में हैं। इसके बाद के दौर में मेरे महबूब, मेरे हुजूर, पालकी, उमराव जान, रज़िया सुल्तान, निकाह और तवाइफ उनके बाद आने वाली फिल्में हैं जो उर्दू तहजीब की नुमाइंदगी करती हैं। मेरे महबूब में अपने महबूब की खूबियां बयान करते हुए फिल्म की हीरोइन जलील मानकपुरी का शेर पढ़ती है, निगाह बर्क नहीं चेहरा आफताब नहीं, वो आदमी है मगर देखने की ताब नहीं। फिल्मों का जिक्र हो और मुगले आजम की बात ना की जाए ये तो नामुमकिन है, चूँकि उर्दू में तकरीबन 30% अल्फाज तो फारसी के ही हैं, लिहाजा कहीं कहीं फारसी अशार भी पढ़े गए हैं, जैसे मुगले आजम में जब सलीम और अनारकली की मोहब्बत का राज फाश होता है तो वो खौफजदा होकर मसनवी मौलाना रूम का एक शेर पढ़ती है कि दिल मीर अवध ज दस्तम साहिब दिला खुदारा, दर्दा के राज इश्कम ख्वाहश आशकारा। मोहब्बत की खातिर बात जब जंग तक पहुंच जाती है तो शहजादा सलीम जिगर मुरादाबादी का शेर पढ़ते हैं कि मोहब्बत सुलह भी पैकार भी है, ये शाख गुल भी है तलवार भी है। फिल्म दीदार का एक नगमा है, हुए हम जिनके लिए बर्बाद वो हमको चाहे करें ना याद, जीवन भर उनकी याद में हम गाए जाएंगे। इसकी इब्तिदा मुश्तर खैराबादी के एक शेर से होती है कि असीर पंजे अहद शबाब करके मुझे, कहाँ गया मेरा बचपन ख़राब करके मुझे। फिल्म गाइड में देवानंद अल्लामा इकबाल का शेर पढ़ते हैं कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। बहुत से अशार हसब मौका फिल्मों में पढ़े जाते थे और फिल्म शायकीन उनका लुत्फ लिया करते थे। सबका जिक्र एक मुख्तसर मकाले में करना नामुमकिन है। दूसरी तरफ फिल्मसाज कहते हैं कि अब देखने वालों का ज़ौक़ भी बदल गया है और वो जो देखना चाहते हैं वही दिखाया जा रहा है। ज़ाहिर है कि उनको तो कारोबार करना है, लेकिन ये भी एक हकीकत है
کہ آج بھی اگر کسی فلم میں اردو کی غزلیں آ جاتی ہیں تو لوگ ان کو خوب پسند

0: आबिदा परवीन की आवाज़ में अभी आप समात फरमा रहे थे ये खूबसूरत सी गज़ल, और अब इसी के साथ अपनी मेज़बान आयशा राहत को इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि आपकी खिदमत में फिर हाजिर हों। आज का उर्दू प्रोग्राम अब यहीं इख्तिताम पज़ीर होता है।
1: आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए
4: 0542227658।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें
5: 0542227658।
1: लोक संगीत के कार्यक्रम में आज के हमारे कलाकार हैं मोहन सिंह यादव और साथी। सबसे पहले लीजिए सुनिए ये देवी गीत।

0: अब आइए सुनते हैं दादरा, मोहन सिंह यादव और साथियों की आवाज में।
1: अजोर हो गई

आप सुन रहे थे लोक संगीत, कलाकार थे मोहन सिंह यादव और साथी। आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है।

आप सुन रहे थे लोक संगीत, कलाकार थे मोहन सिंह यादव और साथी। आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है, प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम झंकार। इस कार्यक्रम में सबसे पहले आइए सुनते हैं जाल फिल्म का ये गीत। लता मंगेशकर की आवाज़ में इस गीत को लिखा है साहिर ने, संगीत एच डी बर्मन का।

यह आवाज़ थी लता मंगेशकर की। अब आइए सुनते हैं बूंद जो बन गई मोती, फिल्म का ये गीत। आइए सुनते हैं मुकेश की आवाज़ में। इस गीत को लिखा है भरत व्यास ने, संगीत दिया है सतीश भाटिया ने।

बूंद जो बन गई मोती, फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज़ में। अब लीजिए सुनिए महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज़ में ये गीत है फिल्म उपकार से। गुलशन बावरा ने इस गीत को लिखा है, संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी।

महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज़ में ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म उपकार से। अब आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर।

महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज़ में ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म उपकार से। अब आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज़ में ये गीत है फिल्म राम तेरी गंगा मैली फिल्म से। गीतकार और संगीतकार हैं रविंद्र जैन।

सिर्फ तुम ये फिल्म का नाम है जिसका ये गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उदित नारायण की आवाज़ में। समीर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम झंकार। श्रोताओं, प्रकृति संसाधन नहीं जीवन का आधार है। भारतीय संस्कृति में प्रकृति सदैव पूजनीय रही। हमारी संस्कृति में हरी भरी वसुंधरा को माता, नदियों को जीवनदायिनी, वृक्षों की पूजा और समस्त सृष्टि को एक परिवार के रूप में माना जाता है। आइए हम सभी मिलकर जल, जंगल, धरती का संरक्षण करें, पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाएं। अब आइए सुनते हैं के और वसुंधरा दास की आवाज़ में ये गीत है फिल्म मैं हूं ना फिल्म से। जावेद अख्तर ने इस गीत को लिखा है, संगीत अनु मलिक।

अब आइए सुनते हैं खामोशी फिल्म का ये गीत। आवाज़ है कविता कृष्णमूर्ति और श्रद्धा पंडित की। मजरू के लिखे इस गीत को संगीत दिया है जतिन ललित ने।

अब आइए सुनते हैं समीर का लिखा ये गीत फिल्म चेहरा से। आवाज़ है श्रेया घोषाल और कुणाल की, संगीत निखिल विनय का।

चेहरा फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। इस गीत के साथ ही आज का झंकार कार्यक्रम समाप्त तो होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हमारे प्रसारण आपके लिए मीडियम वेव के मीटर DTH DRM वेव्स OTT न्यूज ऑन AIR ऐप पर एक साथ उपलब्ध हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फरमाइश्री गीत एक्सप्रेस।

कार्यक्रम फरमाइशी गीता एक्सप्रेस के तमाम सुनने वालों को अरुण पांडे का नमस्कार। श्रोताओं, आपको आज के दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज का प्रोग्राम व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित होता है। 7905519981 ये कार्यक्रम का व्हाट्सएप नंबर है। फिल्मों के नाम हम आपको बता रहे हैं और उसके बाद ही अपनी फरमाइशें भेजें, और सबसे पहले फिल्म का नाम लिखें, उसके बाद अपना नाम और जगह का नाम। एक संदेश में एक ही स्थान के दो चार श्रोताओं के नाम लिखें ताकि गीत भी आप पूरे सुन पाएं और सभी श्रोताओं का प्रतिनिधित्व कार्यक्रम में हो सके, यानी उनकी फरमाइशें हम पूरी कर सकें। वक्त रहते यानी 11:30 बजे तक अपने संदेश भेज दें, क्योंकि शुरुआत में ही सैकड़ों की तादाद में संदेश आ जाते हैं, तो बिल्कुल आखिरी वक्त के जो संदेश होते हैं वो पूरी तरह से शामिल हो पाने में दिक्कत पेश आती है। और कई हमारे श्रोता हैं जो बार बार मैसेज भेजते हैं और निरंतर भेजते रहते हैं, ये ना करें। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं तो हमारे साथ बने रहें। आज इस कार्यक्रम में शामिल फिल्में हैं 5 राइफल्स, रोटी कपड़ा और मकान, सफर, जैसे को तैसा, धरती कहे पुकार के और सावन भादो। 5 राइफल्स, रोटी कपड़ा और मकान, सफर, जैसे को तैसा, धरती कहे पुकार के और सावन भादो। शुरुआत में सिर्फ फिल्म का नाम लिखें ताकि उस फिल्म के गाने के साथ आपकी फरमाइश शुरू हो सके। 7905519981 ये कार्यक्रम का व्हाट्सएप नंबर है। आज प्रकृति संरक्षण दिवस है, तो इस मौके पर अपनी जिम्मेदारी हम सब समझें और प्रकृति के हर अवयव का संरक्षण करें, संवर्धन करें, वो चाहे नदियां हों, पेड़ पौधे हों। पर्यावरण की रक्षा हमारी पीढ़ियों की सुरक्षा है। आज के प्रोग्राम का आगाज कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारी फरमाइशें आपकी शुरुआत में ही आ चुकी हैं। फिल्म है 5 राइफल्स, किशोर कुमार की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल, कल्याण जी आनंद जी का है संगीत।

फाइव राइफल्स फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज और हमारे हाथ हैं यानी स्क्रीन पर आपके बहुत सारे नाम इस गीत की फरमाइशों के। मोहसिन अंसारी, सरताज अंसारी, शाहिद अंसारी, सद्दाम अंसारी, मुश्ताक अंसारी हैं कोटवा वाराणसी के श्रोता। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, असलम अंसारी, अकरम अंसारी और अल्ताफ अंसारी। जज्जर हरियाणा के श्रोता हैं बिट्टू भाटिया और रीटा भाटिया। राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश और राशि राजेश की फरमाइश छत्रपति संभाजीनगर से आई है। नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी हैं मारहरा दरवाजा एटा के श्रोता। जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक और स्वाति जायसवाल। मैं हर रोज अपनी आकाशवाणी सुनता हूं अपनी दुकान पर, तो बहुत शुक्रिया इसके लिए। और आप हैं लेकिन किशन जी हैं ये। क्योंकि नाम आपने अलग से नहीं लिखे हैं। और ये फरमाइश है हेमंत गौतम, प्रकाश गौतम, छोटी छाया और रानी की, माँ काली स्थान नौली गाजीपुर से। नेहरू चौक पैठण से हैं डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव और सोनल प्रसाद जाधव। गिर्रा पलारी छत्तीसगढ़ से ये संदेश वीरेंद्र कुमार साहू, सोनू आशीष और कपिल साहू का। मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी और अरजान अब्बासी हैं चौखुंटी बुलंदशहर के हमारे श्रोता। बाबा साहब कंगड़कर, साखर बाई कंगड़कर और परमेश्वर रोहिणी की फरमाइश पैठण महाराष्ट्र से। राजेश सेन, सुरेखा सेन, शुभम सेन हैं खंडवा के हमारे श्रोता। बेरडी से इस गीत को सुनना चाहा राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने और वैष्णवी ढोमने ने। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से हैं पीएस नहावकर, निर्मला नहावकर और विशाल नहावकर। कलमंडी खुर्द झालावाड़ राजस्थान से ये फरमाइश आई है अनूप सिंह नाथावत, धीरज सिंह सोलंकी और सागर पंवार की। आशा नारंग, सोनाली और सुरेश नारंग हैं सहारनपुर के श्रोता। ग्राम पजोनिया जालौन से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक और अलौकिक चंसौलिया। गमरिया जमशेदपुर से ये फरमाइश रोहन नारे मुराहू और देवंती जायसवाल की। कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक और आकांक्षा मलिक हैं मजनू का टीला दिल्ली से। मोताला महाराष्ट्र से हमें सुन रहे हैं विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, आरती गौरी और ओम कुमार सुरलकर। राजेंद्र यादव भारती, उषा देवी भारती, दीपांजलि, अनुराग दीप, भगेलू यादव और राम समुझ

यादव की फरमाइश वलीदपुर मढ़हा मऊ से। दतरेंगी भाटा पारस से हैं हीरामणि वर्मा और पारसमणि वर्मा। मुसरत जहानाज, तलत जहानाज, फरहत जहानाज, नूर महल मैसौल सीतामढ़ी से आपका संदेश आया। गुरसुख सिंह, गुरजीत सिंह, नगर पंचायत बिलसांडा, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश के श्रोता। लखनपुर छत्तीसगढ़ से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निमिष, शिवम, सतीश। और आप हैं दिनेश चौहान, उमेश चौहान, अदिति चौहान, मनीषा चौहान, जलगांव महाराष्ट्र से। कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज, वर्मा मलिक के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। फिल्म है रोटी कपड़ा और मकान।

रोटी कपड़ा और मकान फिल्म का गीत बेहद मकबूल, लता मंगेशकर की आवाज और गीत की मकबूलियत आपकी फरमाइशें बता रही हैं। किशनगंज बिहार से हैं रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार और भानुप्रिया। मालियान सरधना मेरठ के हमारे श्रोता हैं अनिल जैन, जैन संयम जैन, मुस्कान जैन, जीवियम जैन और आदि जैन। ये जो आप जैन साहब लिखते हैं ये नाम लिखा करें तो बेहतर होगा। चोहल्दा बागपत से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और कमल साहनी।

जो मास्टर सुनील यादव, शिव कुमार यादव, तनिष्का यादव और नौबत यादव हमें सुन रहे हैं अमोड़ा केशकाल छत्तीसगढ़ से। गांव फरासी हिसार से हैं राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और सौरभ डूडी। शांतनु प्रजापति, गायत्री प्रजापति, रिया प्रजापति और शिवराम प्रजापति की फरमाइश सिकरारा बाजार जौनपुर से आई है। मोहाली चंडीगढ़ से हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा और प्रतीक मल्होत्रा। राजेश खन्ना, अनिता राज खन्ना, सुनीता राज खन्ना और भानु राज, येलांडू कोठा गुदाम तेलंगाना से। रईस खान, साबिया खान, अनस खान, शकील खान, दानियाल खान फुलेनगर अंबिवली महाराष्ट्र के श्रोता हैं। बलकरण वर्मा, अंजनि ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा, उमेश धनेश्वरी वर्मा हैं बठेना पाटन दुर्ग छत्तीसगढ़ से। जावेद अख्तर राही, शमसुल कमर राही, बेगम रुखसार और रकीबा शाहीन की फरमाइश मुबारकपुर आजमगढ़ से आई है। उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसुतासु, अर्णव आनंद और सत्यम आनंद हैं पाकुड़ झारखंड से। ईदगाह रामनगर से सोनू अंसारी और लंबे बाबू की फरमाइश। तेलंगाना भोंगीर से हमें सुन रहे हैं मोहम्मद बुरहानुद्दीन, फैजान लल्ला, फरहान लल्ला और समायरा आजमिन गुड़िया। रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा, टैगोर गार्डन, नई दिल्ली के श्रोता। जवाहर नगर दुर्ग से ये नाम आरसी कामड़े, करुणा मीना और अश्विनी का आया है। तुलसी मस्किन, वीणा मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन और मेघा मस्किन है गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से। खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से। लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाबदास मानिकपुरी, राजादास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी। फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र के श्रोता है नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद और शाहिद। सुभाष योगी, राजू मिगलानी, डब्बू बब्बू हैं हासी कृष्णा कॉलोनी से। एडवोकेट वारिस अली खान, इस्लामुन निशा, शकील अहमद, सलीम अहमद और दानिश संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से हमें सुन रहे हैं। जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक है रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन से। हर्षिता रामेश्वर, परमेश्वर, मीनाक्षी कान्हा, मनोहर भाई बागरी, प्रभुलाल बागरी, मनभावन, नैना सत्यनारायण और कपिल, शोभा फुंदीबाई बागरी, ये सभी नाम हैं सुदामा नगर रटलाई झालावाड़ राजस्थान से। रावर करनाल से हैं ज्ञानभूषण शर्मा और सोमनाथ कालिया। सोमदत्त कैरो और ज्योति ने फरमाइश भेजी है, लेकिन आपको बता दें कि फिल्में वही आपको लिखनी है जो हम लोग बताते हैं शुरुआत में। मलोट पंजाब से हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा और शाइना शर्मा। मुंदीचक भागलपुर बिहार के श्रोता दिलीप कुमार सोनी। ये फरमाइश पांडु चंदन, उषा चंदन, रानी चंदन और प्रतीक्षा चंदन की कुम्हार गली कोलगांव से। सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह और कुशल शाह हैं पद्मा टॉकीज नेपा नगर के श्रोता। अजय सिन्हा, कैलाश सिन्हा, भोले सिन्हा, सचिन और उनके माता पिता, उनकी माता जी राज मुनिया, गांव नारी पचदेवरा काजीपुर से। राजू कुमार, बिट्टू कुमार, मुन्नी कुमारी, कल्पना कुमारी, अर्चना कुमारी, चांदनी और नंदिनी कुमारी की फरमाइश मुजफ्फरपुर बिहार से आई है। भोपालगढ़ राजस्थान से हैं धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। आलिया खान, नाजिया खान, सादिया खान, वसीम खान कस्बा कला शाहजहांपुर से हैं। इरीना देवी, सुमंत कुमार प्रजापति, हथौज बलिया उत्तर प्रदेश से। सतीश अनेजा, विमला अनेजा हैं चंडीगढ़ के श्रोता। ये फरमाइश सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु पार्वती और हिमांशु गोदारा की फाजिलका पंजाब से। राहुल पाल, हरी मोहन पाल, अंजना पाल हैं दतिया के श्रोता। कोटवा कपिलधारा, सराय मोहना, वाराणसी से रतिना त्रिपाठी, राखी आर्या, एन्द्री सारंग, ओमनाथ, शिवांग, अतिथि और उनकी माता जी निर्मला त्रिपाठी। वाराणसी आप आए हैं, स्वागत है आपका। एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम ऐजाद कुरैशी और अरिबा हबीबा हैं पटियाली रोड गंज डुडवारा से। नर्मदा पार्क मंगलवेड़ा से अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल। मोहम्मद ख्वाजा रिजवानुद्दीन, ख्वाजा फसीउद्दीन, आयशा तबस्सुम और जुबेरिया वारंगल के श्रोता हैं। वीरेंद्र भ्याण, सुरेंद्र भ्याण, शमशेर और मनोज भ्याण हैं जेवरा हिसार से। ये फरमाइश कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से आई है ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय की।

महाराष्ट्र संघई से हैं रूपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश संघई और प्रीतेश संघई, गुणवंत शिवास, करुणा शिवास, आयुष और विवेक बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, अड़ार नांदघाट छत्तीसगढ़ से हमें सुन रहे हैं माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी, भूपेश और दीपेश। सेक्टर 5 कुड़ी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान और कल्पित चौहान। महाराणा प्रताप करुणी उदयपुर से रमेश नाचानी, भारती नाचानी और विनीत नाचानी। शादुल शाह राजस्थान से रामकुमार रिवाड़ और चंद्रकला रिवाड़। चंद्रेश गौहर, वंदना गौहर, मयंक गौहर और तन्वी गौहर हैं सागर मध्य प्रदेश के हमारे श्रोता। वक्त 11:19 का है। फिल्में बाकी हैं जैसे को तैसा, धरती कहे पुकार के और सावन भादो। ये गीत फिल्म सफर से है, बहुत सारे श्रोताओं की फरमाइश पर। मन्नाडे की आवाज, इंदिवर के बोल, कल्याण जी आनंद जी का है संगीत।

सफर फिल्म का गीत मन्ना डे की आवाज। फरमाइशें आप सबकी। संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल साहनी, आप सभी हैं पिंगावाला चौक गोरैया जलंधर से। अस्तुपुरा मऊ से हमें सुन रहे हैं मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, आजन कुमार सिंह, वंदना सिंह, विनती, विनायक सिंह, मोहिनी, मोहि सिंह और कोको रानी हैं वाराणसी से। मोहम्मद रुकनुद्दीन मंठाल, शबीर बनहट्टी, आसिफ इकबाल, आप सभी हैं कर्नाटक गुलबर्गा से। किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से जुबैर अली खान, सबीहा जुबैर, अंजुमन खान और उनके परिवार के बाकी सदस्य। जमालपुर गोगरी खगड़िया से सिकंदर कुमार तांती, गुडलक कुमार, अविनाश कुमार, रितेश कुमार, संजय कुमार और मुकेश कुमार झा। रवि कुमार, राहुल, रणजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका और मन्नत की फरमाइश अंबाला कस्बा बराड़ा से आई है। सुषमा बोरगांवकर, प्रकाश बोरगांवकर और प्रांजलि हैं सोहम के साथ सूर्यवाड़ी औरंगाबाद से। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य और परमानंद आर्य। महबूब साहिबा महबूब, समीर अंसारी, वारिस अंसारी और अलसीबा अंसारी हैं जसपुर दुल्हापुर से। दारा पंडित, संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा चौटाला हरियाणा के श्रोता हैं। ममना हमीरपुर बुंदेलखंड से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा, मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश मुरादाबाद दुल्हापुर से। ये फरमाइश बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरू निशा, शबिस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक और लुबना की। मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन, कृष्णा और पीहू हैं हकीकतपुरा मऊ से। कटरा मुबारकपुर से जावेद अख्तर अंसारी, शाहिद हसन आजमी, सलीम जावेद, शमीम अख्तर अंसारी। कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा। खरसावां झारखंड से सुकरा नायक, मंजू नायक, जलेश्वर नायक और गौरव नायक। सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़, विशाल और निशा की फरमाइश गांधीनगर गुजरात से आई है। कस्बा गुन्नौर से फारूक अली खान, फैजी, फराज, फरहीन, फरहान, फारिया और ताहिरा। बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत और मयंक भाटिया हैं हरियाणा झज्जर के श्रोता। लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी रघुनाथपुरा श्रीगंगानगर राजस्थान से। राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक और आर्यन वर्मा हैं मऊनाथ भंजन के श्रोता। समस्तीपुर बिहार से हमें सुन रही हैं मीरा सिंह, ज्योति सिंह और अनामिका सिंह, शुक्रिया आप सबका। छत्तीसगढ़ चूड़ीलाल मुंगेली से मोहम्मद इशाक, खतीजा बेगम, अशफाक, आफरीन कौसर, अल्ताफ और नीलोफर फातिमा। रमेश चंद्र चौहान, जयनारायण चौहान, तरुण और प्रतीक चौहान हैं मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से। मोहम्मद यासिन अंजान, साइबा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, दादा बाबू रोड, गिरिडीह झारखंड के श्रोता हैं। रज्जाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से। धीरेन्द्र दुबे, विनीशा दुबे, दिव्यांशु दुबे, सूर्यांशु दुबे बीजापुर आजमगढ़ से। मोर टक्का खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम पटेल, ज्योति पटेल और शुभम देवी किशन और कनिका पटेल, स्वागत है आप सभी का। विनोद मूडत, नेहा जैन, दीपक मयंक मूडत और चेतन नाहटा हमारे श्रोता हैं बोर खेड़ा पित्रा मलुज जैन से। पवन कुमार साहू, कांति देवी, पंकज, सुष्मिता और दीपिका साहू कुरासी रायपुर छत्तीसगढ़ के श्रोता हैं। इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद कैफ, मोहम्मद सैफ नई बाजार चंदौली से। भारत भूषण, अंजु श्रीवास्तव, दिव्यंद भूषण, संस्कृति और पौरुष व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से। संबलपुर कांकेर से ये फरमाइश आई फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव की। दिलशाद हुसैन, फातिमा सोगरा, वकार हैदर, कनीस सकीना, हसीना दिलशाद और वसीम फातिमा हैं मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ के श्रोता। सुधाकर राजे जाधव देशमुख, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव और संचित वयाल की फरमाइश मुक्काम कालेगांव जाफराबाद मराठवाड़ा से। त्रिलोकी पंडित, अनिल पांडे, गुरसुंडी मिर्जापुर के श्रोता हैं। वक्त 11:28 और 29 सेकंड का है।

आज का ये प्रोग्राम यानी फरमाइश गीत एक्सप्रेस आप सुन रहे हैं अपने दोस्त अरुण पांडे के साथ। श्रोता, आपको बता दें कि कल आप 10:10 से 11 बजे के बीच कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश में हमसे बातें कर सकते हैं। ये गीत जैसे को तैसा फिल्म से है। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।

और आपके मन में अगर इंतजार है कि आपका फोन जुड़ जाए कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश में, तो कल सुबह 10:10 से हमें फोन कीजिए 2221052 और 2221050 पर। 52 ही हमारा नंबर है, कभी कभी उसमें शुरुआत में दिक्कत आती है, तो आप 50 पर भी ट्राई कर सकते हैं। 05 42 ये वाराणसी का एसटीडी कोड है, ये शुरू में जोड़ लें। साथ ही हमारे केंद्र से जुड़े प्रोग्राम के बारे में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर भेजें और उसमेल आईडी पर फरमाइशें ना भेजें। वहां बहुत सारे श्रोता pkld@varanasi.gmail.com पर फरमाइशें भेजते हैं जो वहां पर इंटरटेन नहीं की जाती, वहां सिर्फ प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहता है, तो वहां फरमाइश ना भेजें। फरमाइशी मेल आईडी अलग है, airvnsfgexp@gmail.com। तो कार्यक्रमों से जुड़ी आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा और कल आपके फोन कॉल्स का भी।

इस गीत के लिए फरमाइशें यानी फिल्म जैसे को तैसा के लिए फरमाइशें अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत और सुलोचना भगत की पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से। मुरलीधर गुप्ता दुद्धी सोनभद्र से हैं, साथ में अंश कुमार अग्रहरि। मास्टर अशोक वर्मा।

और आसिफ जमाल मुबारकपुर पुरानी बस्ती से, सावतपुर छत्तीसगढ़ से ऋषि सेन, रितेश सेन और कंचन माही सेन, नाना लाम से, मीना लाम से, तेजस लाम से और जय लाम से हैं मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा बिरडी से। नीलू मेघ, नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार, बिट्टू कुमार और परिवार के सदस्य राजधानी रायपुर से हमें सुन रहे हैं, शुक्रिया आपका। राजमाता नगर बुल्ढाना से नरेंद्र नरवड़े, ज्योति नरवड़े और आकांक्षा नरवड़े, रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित और गर्वी की फरमाइश जोधपुर से आई है। दुबिया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल और प्रिया, ये फरमाइश एकता कॉलोनी रोहतक से हम तक पहुंची है। सीताराम कांगड़ा, बबीता बोध, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोध की, सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई गोंडाने हैं राहुल नगर अमरावती से। हरियाणा से सिरसा राधेश्याम शर्मा हैं, वहां से इंदिरा शर्मा, सार्थक और सचिन भारद्वाज, सहारनपुर से राधा नामदेव, अपर्णा नामदेव, अभिषेक नामदेव और अब दो बार आपने अभिषेक नामदेव लिख दिया है, विनोद वंडलकर, विविधा वीणा वंडलकर हैं रायपुर छत्तीसगढ़ से, विनोदपुरी वीपी रंजू, अशोकपुरी और सुशीलपुरी हैं लुधियाना पंजाब मोहल्ला फतेहगढ़ से, इसरत खान, शायरा बेगम, रहूफ खान, बदायूं गनगोला दातागंज के श्रोता, गमरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार जायसवाल और आर्य कुमार जायसवाल, उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती बघेल, लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से, मोहम्मद फरमान, इरफान सलमान, मुरादाबाद दुल्हापुर के श्रोता है, मुकेश शर्मा और गौरव शर्मा हमें सुन रहे हैं भिलाई छत्तीसगढ़ से, अमितेश कुमार तिवारी हैं करनई बलिया से, दिनेश काले, वंदना काले, वसुधा वज्रसेन जलगांव जंक्शन से हैं, हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर और हार्दिक करमरकर की फरमाइश आई है बेरडी मध्य प्रदेश से, सिंघाड़ तलाई खंडवा से हैं राधेश्याम यादव, प्रभा यादव और शालिनी यादव, डाबकी रोडा कोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर और कुमार गौरव मंदूरकर, तिरुपति नगर नांदूरा से संतोष वसाने, उषा वसाने, ऋषिकेश और अनिकेत, आयनुल हक अंसारी, मल्लू अंसारी, इकबाल अंसारी, सलीम आजाद, बदरुद्दीन अंसारी, बड़े बजडिया धरहरा ये जगह होनी चाहिए, नलगोंडा तेलंगाना से मोहम्मद अमजद, सलमा फिरदौस और मुनीरुन निशा, गुजरात गांधीगाम से ये संदेश प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जौहरी का, कृष्णपाल सिंह चौहान, तारा देवी चौहान, नवदीत चौहान हैं चौखड़ा धाम सनावत खरगोन से, बटिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग, तेलंगाना निजामाबाद के श्रोता हैं शेख अल्ला बख्श, राबिया शेख और रहीम मुन्ना, दिग्दर्शन और कविता गोंड है मेरठ कैंट के श्रोता, राहुल खुराना, रिश्ता खुराना, केशु रिधान खुराना और तुलसी मस्कीन पंचकुला चंडीगढ़ से हैं, जौनपुर से ऋषि मौर्य, जौनपुर से हैं अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना है लदावली मुरादाबाद से, ये फरमाइश भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण राहुल साहू और चंपा साहू की, सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम और सद्दाम है सहारनपुर से, बबरी बाजार चंदौली से विजय सरोज सुंदर और सुमन जायसवाल, आर अश्विन, शानू, शोभनाथ अवस्थी और उनके मित्र हैं शिवराजपुर चुनार से, हमारे श्रोता हैं डेर पाटन गुजरात से धीरज वी रब्बारी, और कविता गौरव, अनिल मानसी मदान हैं करमपुरा नई दिल्ली से। आपने लिखा कि आपके यहाँ न्यूज ऑन एआईआर पे आवाज नहीं आ रही है, हम लोग देखते हैं, वैसे यहाँ से आमतौर पर चीजें दुरुस्त रहती हैं। बरवट बकाल बुढ़ाना से हैं नारायण हागे, कमल हागे, दिव्या हागे और जय हागे, मगनपुर झारखंड से अब्बास आलम, अमजद अली और लाडली, गंगाधर सावनकर, विजय लक्ष्मी सावनकर और राजेश राकेश हैं कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से, प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा हैं छत्तीसगढ़ पलारी के श्रोता। और अब प्रोग्राम की अगली पेशकश फिल्म है धरती कहे पुकार के लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ें।

धरती कहे पुकार के इस फिल्म से अपने दौर का बेहद मशहूर यादगार गीत। लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें, फरमाइशें आप सबकी आई हैं। पटेल नगर मुगलसराय से हमारे श्रोता हैं सुनील कुमार सिंह। कर्णों का लालगंज रोहतास से फरमाइश राजकिशोर सिंह चौहान, बड़क सिंह चौहान और आर के सिंह चौहान की। कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा हैं दादरी गेट भिवानी से। हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया की फरमाइश स्टेशन रोड जमशेदपुर से आई है। गोपालापुर जौनपुर से हैं अवधेश तिवारी, प्रियंका तिवारी, शिवांगी तिवारी और जयप्रकाश तिवारी। आशा सबकाल, सोनिया सबकाल, विशाल सबकाल की फरमाइश शास्त्री नगर बीड शहर से। दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह और रिंकी शेखावत हैं सीकर से। बाबू यादव, मनशा यादव, दुर्गेश यादव, सीमा यादव की फरमाइश देवकी बिहार कॉलोनी सारनाथ वाराणसी से हैं, साथ में अन्नू यादव और अरुणेश यादव। पूनम यादव, कुसुम यादव और उनके माता पिता हैं मोकलपुर मणियाहू जौनपुर से। सोनवड़ा कोटिला आजमगढ़ से इरशाद आजमी, अरबाज अहमद, अबूजार अहमद, अमीना इरशाद और अदीबा इरशाद। अशोक वर्मा जी का संदेश फिर से 48 बार आया हुआ है और उनका नाम शामिल हो चुका है। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से हैं राजपाल गजभिये, राधिका गजभिये, अनिष्का और तन्मय गजभिये। जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र और अरविंद हैं लोहेडी महोबा बुंदेलखंड से। शंकर लाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल, दुर्गेश्वरी जायसवाल नांदेड़ येताला महाराष्ट्र से हैं। निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, आलिया और रयान बाबू, धनौरी तेलीवाल।

वाला उत्तराखंड से स्टेशन रोड जमानिया से हमें सुन रहे हैं सीपी जायसवाल, डिंपल जायसवाल, आशुतोष और अभिनव जायसवाल। नारवा इंद्रो का जोधपुर राजस्थान से, नरपत सोनी वैशाली सोनी गणेश चौक से हैं नरेंद्र भाटी और वीणा भाटी। हनुमानपुर मुगलसराय से सोनू, मंजू, डब्लू और माया जायसवाल। मुकेश साहू, नंदिनी, मनीष, मयंक और जानकी साहू हैं रोहासी छत्तीसगढ़ से। सोनू, रविराज, गुलशन, लक्की, बलदेवनगर, जालंधर सिटी से। क्लीन भारत ग्रीन भारत के साथ एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम एजाद कुरैशी और अरिबा हबीबा हैं पटियाली रोजगंड डुंडवारा से। तकिया मड़ियाहों से हमें संदेश भेजा है जमील अहमद शाह, अल्तमश शाह, मोहम्मद दानिश शाह, मोहम्मद हसरत शाह, रोमेश शाह, साजिद शाह और अबान शाह ने। जवाहरनगर उदयपुर से हैं बाबू भाई और भारती देवी। पंकज कुमार, सपना भारती, जेसिका सिंह बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आपकी फरमाइश आई। पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की, रविंद्र रौनक सेन हैं चांदनी चौक पंढरिया छत्तीसगढ़ से। और नीलू मेघ नीलम जी ने लिखा, हमारा फोन नहीं लगता तो नहीं लगता है और ये धोखा रहता है कि रिंग जरूर उठेगी, लेकिन आप प्रयास करें, शुरुआत में ही थोड़ा फोन करें और रुक रुक करके हर 2-3 मिनट में अगर श्रोता प्रयास करेंगे तो उनका फोन भी जरूर लग जाएगा। तो कल आपके फोन कॉल्स का, आप सभी श्रोताओं के फोन का हमें इंतजार रहेगा। दानिश जमाल, शाहिद जमाल, अनवर जमाल और आसिफ जमाल है मुबारकपुर पुरानी बस्ती से। मुजफ्फरपुर बिहार से हैं आर्यन राज, रोहित राज और पीयूष कुमार। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष मल्होत्रा और कोयल मल्होत्रा। संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़ और भरत मक्कड़ हैं पिंगावाला चौक गोरया जालंधर से। ये फरमाइश है नौशाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीदुन सिद्दीकी और जिशान अहमद सिद्दीकी की, तीन चरोदा छत्तीसगढ़ से। बाबू यादव, मनशा यादव, दुर्गेश यादव, सीमा यादव हैं देवकी बिहार कॉलोनी सारनाथ से। सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल और आप दोनों दीवाना और मासूम भी हैं, साथ में दीपक जायसवाल और स्वाति जायसवाल, सभी का स्वागत है। सोनारी जमशेदपुर से कृष्णा जायसवाल, पूनम जायसवाल, विनोद और पिंकी जायसवाल। दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा है पिपर रोड सरगांव से। सोनवड़ा कोटिला आजमगढ़ से इरशाद आजमी, अरबाद अहमद, सोनवारा, हिंदी में एक बार लिखेंगे तो, क्योंकि इसका उच्चारण सोनवड़ा, सोनवारा कुछ भी किया जा सकता है, तो हिंदी एक बार लिख दें ताकि समझ में आ जाए। रश्मि झरना है राजकोट गुजरात से। और अब प्रोग्राम आखिरी पेशकश, फिल्म है सावन भादो, मोहम्मद रफी की आवाज, वर्मा मलिक के बोल, सोनिक ओमी का है संगीत।

से चटके हंस तेरा रंग है नशीला अंग अंग है नशीला रंग है नशीला अंग अंग है नशीला।

समझी। अरमानों के खुले दरीचे आ जा जरा सिमट के, हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा लगे 85 झटके। हट तेरा।

0: से चटके हो तेरा रंग है नशीला अंग अंग है नशीला रंग है नशीला अंग अंग
1: रफी साहब की आवाज में गीत सावन भादो फिल्म से था और इस गाने के लिए फरमाइशें भेजी हमारे श्रोता अनिल गुप्ता गौंड रमा गुप्ता गौंड पहाड़िया अशोक विहार कॉलोनी फेज दो वाराणसी से। तो बहुत स्वागत और शुक्रिया पांडर कौड़ा से अनिल बुरांडे उषा बुरांडे अनुश्री और धनश्री बुरांडे सिद्धार्थ नगर दरियापुर बाबली से हमें सुन रहे हैं गजानन येले नवदीप येले विश्वदीप येले और अशोक येले सोनवर्षा खानपुर चुनार मिर्जापुर से फरमाइश अनीश राजभर मनीष राजभर आशीष और आकर्ष राजभर की आई है अर्जुन गवनेकर धीरज गवनेकर और लक्ष्मीकांत राठी की फरमाइश बेरड़ी से अशोक श्याम कुंवर प्रमिला श्याम कुंवर हैं भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से सेक्टर 67 मोहाली से टीडी मल्होत्रा ऋतिक मल्होत्रा और प्रतीक मल्होत्रा जॉन डिकेस्ट्रो रोजी डिकेस्ट्रो पॉल डिकेस्ट्रो विलिस डिकेस्ट्रो की फरमाइश जनकपुरी सहारनपुर से आई है ओम गायकवाड़ अम्रपाली गायकवाड़ आविष्कार गायकवाड़ अनामिका और प्रणीता गायकवाड़ ने बिल्कुल चैट जीपीटी से पोस्टर जैसा बनाकर अपनी फरमाइश भेजी है तामसा रोड हदगांव महाराष्ट्र से जगदीश धापड़ नायका रंजुबाई धाकड़ युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़ हैं अलोट रतलाम से शाहजी बोड़के नंदा बोड़के और हनुमान बोड़के हिंगोली महाराष्ट्र के श्रोता शमसुल कमर राही शाहीन फातमा दान खान गंज डुंडवारा से हैं दतरेंगी से भागवत वर्मा शांति देवी लीलावती और विनीता भूषण खेरा विशु खेड़ा विशाल और लाड़ी खेड़ा है फाजिल का पंजाब से कर्नाटक गुलबर्गा से हमें सुन रहे हैं रुकनुद्दीन मंठाल शबीर बनहट्टी आसिफ इकबाल और उनके मित्रगण छत्तीसगढ़ से रिजवान खान आयशा सबीहा अनस और

सावन भादो फिल्म के इस गीत के लिए और भी कुछ फरमाइशें हैं। डॉक्टर राजेश यादव, भोलानाथ यादव और कमलेश प्रजापति हैं स्टेशन रोड देवकली कराकत जौनपुर से। मस्जिद मोहल्ला से मुस्कान बेबी नाज और मोहम्मद अमजद। ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा, बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ से हमें सुन रहे हैं। गोपालापुर जौनपुर रमईपुर से राम आश्रय तिवारी, ललन तिवारी, कल्लू तिवारी और माया गुप्ता। स्पेलिंग थोड़ा किसी से लिखवा लें। कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता है पिपरिया से। संतोष नामदेव, अभय, अनिल, अजीत, ज्योति और अनीता है सुरई ललितपुर से। गमरिया जमशेदपुर से रोहन और आर्य जायसवाल। स्टेशन रोड जमानिया से ही फरमाइश एसपी जायसवाल, डिंपल आशुतोष और अभिनव जायसवाल की। रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और ठाकुर साहब। शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे हैं हिंगोली महाराष्ट्र से। आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ गंज डुंडवारा के श्रोता है। राम सकल चौधरी मौनी बाबाधाम चोचकपुर बाजार गाजीपुर से है। साथ में है भास्कर दुबे और सूरज चौधरी भी। एक ही साथ नाम लिख दिया करें। उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार और आयुष जंघेल हैं आर्यनगर कोका से। दिग्दर्शन और कविता गोंड मेरठ कैंट से आपकी फरमाइश आई। पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू, सुजाता और शशांक साहू, आजन कुमार सिंह, वंदना सिंह, विनती, विनायक सिंह, मोहिनी, मोहित सिंह और कोको रानी का संदेश। माई रेडियो माई लाइफ के साथ एक बार फिर से वाराणसी से। दिल्लानगर गांव पश्चिम मोहल्ला गाजीपुर से हमें सुन रहे हैं जनार्दन पांडे, श्याम नारायण सिंह, दीना सिंह और कयूम शाह। ममता रानी, छवि, अनोखी, अर्पिता, लाडो, दीक्षा, देव, देवांशु और डब्लू। पूर्णिया बिहार से फारविसगंज से प्रकाश कुमार पप्पू, नैतिक पीहू, कुमार बीमल। तो श्रोताओं, आपकी सभी की सभी फरमाइशें प्रोग्राम में शामिल हो चुकी हैं और आपको बहुत शुक्रिया हमारे साथ प्रोग्राम में बने रहने के लिए। और आपके फ़ोन कॉल्स का हेलो फोन इन फरमाइश कार्यक्रम के लिए कल इंतज़ार रहेगा। तो हमें फ़ोन करें 222-1052 और 222-1050 ये नंबर हैं। 52 पर ही पहले प्रयास करें। और कार्यक्रमों से जुड़ी अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर हमें भेजें pkldaiarvaranasi@gmail.com पर। वो कार्यक्रम यानी पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम रविवार शाम 7:31 पर प्रसारित होता है। आकाशवाणी वाराणसी का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज भी है, वहां भी जुड़ें और हमारे कार्यक्रमों का लुत्फ लें और शामिल हों। आजन जी ने लिखा है, व्यस्त थे देर हो गई, लेकिन आपका नाम एक बार 11:21 पर आया था, वो भी शामिल हुआ है। तो श्रोताओं, आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा और आपके फोन कॉल्स का भी। अब आज का ये प्रोग्राम यानी फरमाइशी गीत एक्सप्रेस समाप्त करने के अपने दोस्त अरुण पांडे को इजाजत दीजिए। नमस्कार, शुभकामनाएं आज के दिन के एक बार फिर से आपको।

अभी आप सुन रहे थे व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत हमेशा की तरह एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी ने। लिखते हैं,
2: ऊंची उड़ान भरने के लिए हिम्मत के साथ साथ दृढ़ इच्छा शक्ति और विश्वास का होना जरूरी है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सुंदर विचार को भेजने के लिए। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है चरौदा बार नवापारा अभयारण्य बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर जी का।
2: रोहांसी छत्तीसगढ़ से मुकेश साहू और नंदिनी साहू।
1: और राजाजी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद ने लिखा है, लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
2: ग्रामपुत की कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सोमांशु पांडे।
1: और बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय के साथ साथ बेबी किट्टू ने लिखा है, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी सादर नमस्कार। गुजरे सप्ताह हमने चींटियों पर गीत सुना, बहुत पसंद आया गीत। गांव की धरती में आपने प्रकृति, पर्यावरण, खेत खलिहानों, फसलों और गाय भैंस के बारे में बहुत ही सुंदर ढंग से बताया। आपने आगे लिखा है,
2: सुंदर प्यारा गीत टिम टिम तारा जादुई पिटारा हमारे यहाँ बच्चों को बहुत पसंद आता है। हमारा विनम्र निवेदन है कि इस गीत को बार बार बजाया करें।
1: इस सप्ताह हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं कुछ लघु कथाएं, जिनसे निश्चित रूप से हमें प्रेरणा मिलेगी
2: जी।
1: इस क्रम में श्रोताओं, आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं महात्मा गांधी के जीवन का एक प्रेरक प्रसंग, जो उनकी मित व्ययिता और संसाधनों के सदुपयोग और अपव्यय न करने के स्वभाव को दर्शाता है।
2: ये उन दिनों की बात है जब गांधी जी के नेतृत्व में भारत का स्वतंत्रता संग्राम जोरों पर था। गांधी जी के बहुत सारे प्रशंसक थे तो आलोचक भी बहुत थे
1: जी। उन्हें पसंद करने वाले थे तो नापसंद करने वाले भी थे।
2: बिल्कुल।
1: एक बार की बात है, किसी ने उन्हें कई पन्नों का एक लंबा पत्र लिखा जिसमें उनकी जमकर निंदा की गई।
2: गांधी जी ने उसे पढ़ने के बाद कागज में लगी धातु की पिन सावधानी से निकालकर अलग रख ली ताकि उसे दोबारा उपयोग किया जा सके और पत्र को रद्दी की टोकरी में डाल दिया।
1: जब उनके निजी सचिव महादेव देसाई जी ने पूछा कि इतनी छोटी सी पिन को संभाल कर रखने की क्या आवश्यकता है, तो गांधी जी ने समझाया कि देश के संसाधन अमूल्य हैं
2: जी।
1: यदि हर व्यक्ति छोटी छोटी वस्तुओं का भी सोच समझकर उपयोग करे और उन्हें व्यर्थ न गवाए तो बहुत बड़ी बचत हो सकती है।
2: श्रोताओं, इस प्रसंग से यही प्रेरणा मिलती है कि छोटी छोटी चीजों का भी हमें सम्मान करना चाहिए और अपव्यय या फिजूल खर्ची से हमें बचना चाहिए।
1: एक और बात समझ में आती है श्रोताओं कि संसाधनों का पुनः उपयोग या रीयूज करना चाहिए। सादगी और मितव्ययिता जीवन का महत्वपूर्ण गुण है
2: जी। श्रोताओं, एक और बात, गांधी जी दिखावे और भोजन की बर्बादी के भी सख्त खिलाफ थे। उन्होंने लोगों को प्रोत्साहित किया कि भोजन भी उतना ही लें जितना खाया जा सके।
1: आज के युग में श्रोताओं, सभी साधनों और प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हो रहा है
2: जी।
1: गांधी जी का ये प्रेरक प्रसंग सचमुच एक उत्तम उदाहरण है।
2: श्रोताओं, आज आपने इस प्रसंग में हिंदी का एक शब्द सुना, शब्द था मितव्ययिता। अब इसका अर्थ जान लेते हैं
1: जी। श्रोताओं, मितव्ययिता इस शब्द का अर्थ है जितनी आवश्यकता हो उतना ही खर्च करना, और अनावश्यक खर्च से बचना ही मितव्ययिता कहलाती है।
2: जैसे कुछ उदाहरण हो सकते हैं, जैसे बिजली और पानी का अनावश्यक उपयोग न करना, केवल जरूरत की वस्तुएं ही खरीदना, भोजन की बर्बादी न

0: करना और समय का सदुपयोग करना।
1: जी, तो श्रोताओ अभी आपने सुना गांधी जी के जीवन का ये प्रेरक प्रसंग। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, गांधी जी के निजी सचिव का नाम क्या था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: गांधी जी के निजी सचिव का क्या नाम था?
1: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और आप हमें संदेश व प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
0: और आपको बता दें कि यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों की ध्वनि पुस्तकें सुनना चाहते हैं तो NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर जाएं, वहां हमारी पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण आप सुन सकते हैं।
1: और यदि NCERT की पाठ्य पुस्तकों का PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाइए, टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। निर्देशों का पालन करें और पुस्तक को डाउनलोड करें।
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को फॉलो करना न भूलें।
1: और अब बारी है श्रोताओं हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम जलाते चलो।
0: NCERT की 6ठी कक्षा की पाठ्य पुस्तक से उद्धृत इस कार्यक्रम को गीत संगीत के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा रचित ये कविता बच्चों को प्रेरित करती है कि वे प्रेम और स्नेह का दीप जलाते रहें और निराशा के अंधकार में आशा की ज्योति जलाते हुए समाज को बेहतर बनाने में अपना योगदान देते रहें।

0: आज श्रोताओं अब सुनते हैं कार्यक्रम लता क्यों नहीं बोलती।
1: शिक्षकों के लिए विशेष रूप से निर्मित इस कार्यक्रम में बच्चों के मनोविज्ञान को समझने का प्रयास किया गया है और ये बताने की कोशिश की गई है कि वे संभावित कारण क्या क्या हो सकते हैं जिनके कारण बच्चों की सीखने की प्रक्रिया बाधित होती है।

0: हाँ तो बच्चों, बताओ सूर्य किस दिशा से उगता है?
1: पूरब से।
0: शाबाश। और किस दिशा में डूबता है?
1: पश्चिम में।
0: अरे लता, तुम क्यों नहीं बोल रही?
2: दीदी दीदी, ये तो कुछ बोलते ही नहीं है।
0: क्यों लता, तुम्हारी क्या समझ में नहीं आ रहा मैं जो पढ़ा रही हूँ?
3: दीदी, इसे तो कुछ समझ में ही नहीं आता।
4: दीदी, ये तो एकदम बुद्धू है।
2: दीदी दीदी, ये तो हमेशा चुप बैठी रहती है।
0: चुप चुप हो जाओ तुम सब, मैं लता से पूछ रही हूँ, लता ही जवाब देगी। हाँ लता, बताओ बेटा, तुम्हें जो मैं पढ़ाती हूँ समझ में नहीं आता क्या?
3: दीदी वो।
0: हाँ बोलो।
3: दीदी।
0: बोलो लता, क्या बात है?
5: नई नई आई अध्यापिका उमा देवी को समझ में नहीं आ पा रहा था कि लता क्यों साधारण से साधारण सवाल का जवाब नहीं देती। कक्षा के बच्चे कहते थे कि लता बुद्धू है, पर अगर वो इतनी बुद्धू होती तो तीसरी कक्षा में कैसे आ पाती? उन्होंने लता के व्यवहार की पहेली हल करने के लिए कमर कस ही ली। उन्होंने गौर किया कि लता आधी छुट्टी में भी अकेली ही रहती है, बाकी बच्चों से घुलती मिलती नहीं है, बच्चे भी उसे अपने साथ खिलाते नहीं हैं, बल्कि कई चंचल बच्चे उसे काफी तंग भी करते हैं। दो ही हफ्तों में उमा देवी की समझ में अच्छी तरह आ गया कि लता कक्षा की सबसे अच्छी छात्रा है। वो बोलती भले ही ना हो, पर लिखित परीक्षाओं में

0: उसके अंक बाकी छात्रों से काफी अच्छे होते हैं। तो क्या ये प्रतिभाशालिनी छात्रा सिर्फ बहुत कम बोलने के कारण हमेशा के लिए सबकी उपेक्षा का शिकार बन जाएगी? उमा जी के गले से ये बात उतर नहीं पा रही थी। उन्होंने लता के माता पिता से मिलने का निश्चय किया।
1: नमस्ते बहन जी।
2: नमस्ते दीदी।
3: नमस्ते बहन जी।
4: नमस्ते दीदी।
5: नमस्ते दीदी।
1: नमस्ते बहन जी।
6: नमस्ते शिखा।
7: अरे दीदी जी आप
8: आइए आइए।
7: नमस्ते बहन जी।
8: नमस्ते, यहाँ बैठिए
7: जी।
8: यहाँ आज कैसे गरीबों के घर आपने।
7: अरे बहन जी कैसी बात कहती हैं आप, मैं तो कई दिन से सोच रही थी, आज निकाल पाई समय।
8: ठीक कहती हैं आप, काम में से समय निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है और आपको तो पढ़ाना भी होता है, दोहरी जिम्मेदारी।
7: हाँ ये तो है।
8: अरे लो लता के बापू भी आ गए।
7: राम राम दादा।
9: हाँ,
7: कैसे हैं आप?
9: राम राम। अरे आप यहाँ? लता, ओ लता, बहन जी के लिए शरबत तो ला। इतनी बड़ी ढींगड़ी हो गई पर अकल रहती भर नहीं। और तुम लता की माँ, तुम्हें भी बातें बनाने से फुर्सत नहीं मिलती।
7: नहीं नहीं दादा, अभी तो आकर बैठी हूँ मैं।
9: अरे बहन जी ये माँ बेटी है ही ऐसी, कतई पागल।
7: ऐसा मत कहिए दादा, लता तो बहुत अच्छी बच्ची है।
9: अच्छी? और ये छोरी, मुंह से तो बोल नहीं फूटता इसके।
7: अरे लता आओ बेटा, आओ आओ, आओ बैठो, यहाँ बैठो मेरे पास।
1: जी दीदी।
9: लता जाओ यहाँ से, बड़े लोगों में बैठने का तेरा कोई काम नहीं। बहन जी आप इसकी माँ से बतियाओ, मैं जरा बाहर का काम देखूं। हा?
7: जी।
0: लता के घर जाकर उमा देवी की समझ में आया कि लता इतनी चुप चुप क्यों रहती है। उसके पिता का अपमानजनक व्यवहार किसी को भी गुमसुम बनाने के लिए काफी है। लता की दबी सहमी माँ भी उसे किसी किस्म का आत्मविश्वास नहीं दे पा रही। फिर भी लता को रहना तो इन्हीं माता पिता के साथ है। उमा जी ने तय किया कि इन्हीं माता पिता की मदद से वो लता की समस्या सुलझाएंगी। शुरुआत उन्होंने खुद की।
7: अच्छा बच्चों ये बताओ कि पूरी कक्षा में सबसे ज्यादा तेज और दूर तक कौन दौड़ता है?
2: दीदी लता। दीदी लता।
7: लता?
10: जी दीदी।
7: क्या ये लता?
10: जी दीदी।
7: अरे नहीं।
10: हाँ दीदी, लता को कोई नहीं पकड़ पाता।
7: अच्छा?
10: एक बार इसका बछड़ा खेतों में भाग गया था। हम सब उसे पकड़ने दौड़े पर बछड़ा दौड़ता गया दौड़ता गया। सारे थक गए पर लता बछड़े को पकड़ कर ही लाई।
7: अच्छा?
10: जी दीदी।
7: लता ये सच है क्या? अरे वाह लता, तुम तो बड़ी होशियार हो।

0: महीने भर बाद स्कूल की खेल प्रतियोगिताओं में दौड़ के 4 इनाम लता को मिले। उमा जी ने स्कूल के सभी बच्चों के माता पिता को व्यक्तिगत रूप से निमंत्रित किया था। भरी सभा में अपनी बेटी को 4-4 इनाम मिलने पर लता के पिता ने अपने को गौरवशाली महसूस किया।
1: अरे वाह रे पगली छोरी, दौड़ में तो खूब नंबर मारा तूने। हाँ
2: बापू, मुझे पगली छोरी क्यों कहते हो? मैं पगली नहीं हूँ।
1: देखा, इनाम पाकर कैसी जबान लड़ा रही है। अच्छा चल, तू पगली छोरी नहीं है, ठीक?
3: हाँ। नमस्ते दादा।
1: नमस्ते नमस्ते।
3: क्या बातें हो रही है बेटी से?
1: अरे आपने तो बहन जी कमाल कर दिया। मैंने तो कभी देखा ही नहीं था कि जरा जरा से बच्चे ऐसे बढ़िया खेल कूद दिखाए।
3: हाँ दादा, और खास कर लता।
1: लता ने तो बहन जी बहुत ही कमाल किया।
3: और दादा, आप इसकी तरफ जरा सा ध्यान देना तो ये और भी कमाल कर सकती है।
1: वाह बहन जी, आप ही क्या कहती हैं? इसमें हमने क्या ध्यान देना है? आपने ध्यान देना है, वो आप दे ही रही हैं।
3: देखिए दादा, मेरे पास लड़की रहती है।

0: करीब 4 घंटे
1: हुँ?
0: और आपके पास रहती है 20 घंटे, है कि नहीं?
1: हाँ, बिल्कुल।
0: और फिर आप उसे जितना प्यार करते हैं उतना कोई और, चाहे मैं ही क्यों ना हो, कर सकता है भला?
1: नहीं जी,
0: तो
1: नहीं।
0: दादा, अगर मेरी जरा सी मेहनत से लड़की इतना अच्छा नतीजा दिखा सकती है तो आपके सहारा देने से कितना कमाल हो जाएगा, सोचिए जरा।
1: पर बहन जी, मैं क्या करूं? देखो, इसकी किताबें, वर्दी।
0: वो सब तो ठीक है दादा, उसमें आप कोई कमी नहीं करते, पर आप इसे हर वक्त डांटना बंद कर दें।
1: वो तो बहन जी।
0: देखिए दादा, आप हैं एक माली के समान और ये है एक फूल के समान। आप ही उसे कोंचते रहेंगे तो क्या नतीजा होगा?
1: वो
0: अब देखिए ना, इतनी होशियार लड़की और मामूली बात करने में भी कितना घबराती है।
1: पर उसका इसकी पढ़ाई से क्या लेना देना है?
0: दादा, कम बोलने की वजह से काफी लोग इसे बुद्धू समझते हैं।
1: हैं?
0: लता रहती भी काफी सहमी सी है, बच्चों के साथ घुलमिल भी नहीं पाती।
1: हो,
0: धीरे धीरे उसका मन पढ़ाई से भी उचटने लगेगा और हो सकता है कल को घर गृहस्थी में भी।
1: बहन जी, मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था।
0: पर अब तो आपको मालूम हो गया ना दादा,
1: जी
0: बस आप इसे बात बात पर डांटना बंद कर दें।
1: हाँ हाँ बहन जी, मैं कोई इसका दुश्मन थोड़े ही हूँ, बाप हूँ बाप।
0: वाह दादा, लाख टके की बात कही आपने।
2: उमा देवी ने लता के आत्मविश्वास को वापस लाने की प्रक्रिया शुरू तो खुद ही की, पर उसे बनाए रखने के लिए उन्होंने लता के पिता का सक्रिय सहयोग मांगा। उमा जी की लगन भरी पहल ने ही लता के पिता को प्रेरित किया। आप भी माता पिता का सक्रिय सहयोग मांगिए। माता पिताओं से मिलने के बहुत से अवसर आपको मिलते हैं, स्कूल के उत्सव, सामाजिक कार्यक्रम या फिर घर पर मुलाकात। माता पिता का पूरा और सक्रिय सहयोग आपका और आपके विद्यार्थी का अधिकार है। इसे पाने के लिए कोई प्रयास बाकी न रखें।
3: चोर बना देती
4: हूँ। क्या करूँ, तू डरते इतना धीरे है। अच्छा सुन लता, शाम को मेरे घर आएगी?
5: हाँ हाँ,
4: पता है मेरी मामा ने मेरे लिए छोटी सी गुड़िया भेजी है।
5: अच्छा,
4: उसके सचमुच के बाल हैं।
5: ओहो,
4: और एक कंघी भी है।
5: अरे सच? फिर तो मैं स्कूल का काम खत्म करके आऊंगी।
4: ठीक है।
3: अच्छा लता, वो मैं भी आ जाऊंगा स्कूल का काम लेकर तेरे घर। वो मुझसे ना भाई गणित के सवाल ही नहीं होते, मैं क्या करूँ।
5: ठीक है आ जाना।
3: अच्छा,
5: मैं भी आ जाऊँ लता।
4: हाँ हाँ,
3: मैं भी आ जाऊँ लता।
5: हाँ हाँ, तुम भी आ जाना।
2: आखिर उमा जी की मेहनत और लता के माता पिता का सहयोग रंग लाया। लता अब बदल चुकी है, आत्मविश्वास से भरपूर, सहज, साथियों की संगत और अपने बचपन का आनंद लेती है। ये चमत्कार आपके यहां भी संभव है।

0: क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपनाकर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: तो श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग की तकनीकी टीम के साथ यानी
2: जगबंधु,
1: कुसुमलता
2: और फैजान के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित ये कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे सुगम संगीत।
5: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
6: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
5: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
6: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
5: डायल कीजिए
7: 0542227658।
6: नंबर एक बार फिर नोट करें
8: 0542227658।
4: कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं रुचि मिश्रा की गाई भक्ति रचनाएं। पहले सुनिए ब्रह्मानंद की रचना।

मीराबाई की रचना भी आप सुन रहे थे रुचि मिश्रा के स्वर में। सुगम संगीत कार्यक्रम समाप्त तो होता है। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। 12:45 हुए हैं। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में प्रस्तुत है पंडित ऋत्विक सान्याल का ध्रुपद गायन। राग है जयंत मल्हार। पखावज पर संगति की है आदित्य दीप ने।

था जयंत मल्हार, पखावज पर संगति की आदित्य दीप ने। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 1 बजने को है अब समाचार, हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: कार्यवाही को लेकर विपक्ष का हंगामा जारी रहा। कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। बिहार और असम सरकार ने नीट प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने का निर्णय किया। विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार प्रदर्शनकारी भी रिहा किए जाएंगे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की संसदीय दल की साप्ताहिक बैठक आज संसद भवन में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और अन्य नेता बैठक में शामिल हुए। तृणमूल से अलग हुए गुट और नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया के सांसदों ने भी हिस्सा लिया। पंजाब में अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एयर इंडिया के इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल का शुभारंभ हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के बढ़ते निजी अंतरिक्ष तंत्र की सराहना की। विक्रम 1 की सफलता के बाद स्काईरूट के संस्थापकों से मुलाकात की। पर्यटन मंत्रालय ने अतुल्य भारत ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए एयर इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। हिमाचल प्रदेश में चंबा पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क दुर्घटना में 3 महीने के एक शिशु सहित 5 लोगों की मौत हो गई। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि केंद्र सरकार अगले महीने की 25 तारीख की रात से भारत में इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाएगी। आज विश्व हेपेटाइटिस दिवस है। ये दिन हेपेटाइटिस पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को बढ़ावा देने, व्यक्तियों और आम जनता को कार्रवाई और भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करने का अवसर है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के अवसर पर सभी नागरिकों से हरित, स्वस्थ और अधिक टिकाऊ भविष्य के निर्माण के लिए मिलकर काम करने का आग्रह किया है। ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका शरण प्रणाली एसाइलम में बदलाव किया है जिसके तहत आव्रजन अधिकारी कुछ आवेदनों को साक्षात्कार लिए बिना ही आव्रजन न्यायाधीशों के पास भेज सकें। मौसम विभाग ने आज ओडिशा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में महिला शॉटपुट F57 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने और सत्र का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए शर्मिला को बधाई दी। हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का शुभारंभ आज सुबह तमिलनाडु के कोयंबटूर में हुआ। ये थे FM रेनबो पर इस घंटे के
1: बाढ़ की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार प्रभावित लोगों की सहायता के लिए असम सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। उन्होंने सभी की सुरक्षा की भी कामना की। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC द्वारा आयोजित मार्च के दौरान 20 लोगों के मारे जाने और कई अन्य के घायल होने की खबर है। खबरों के अनुसार कई घायलों की हालत गंभीर है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। JAAC ने संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और लोकतांत्रिक सरकारों से हस्तक्षेप करने की अपील की है और आरोप लगाया है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई और अत्यधिक बल का प्रयोग किया। भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉटपुट F57 स्पर्धा में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

0: गृहमंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वर्ण पदक जीतने पर शर्मिला धनखड़ को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के ठीक 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए, खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं और हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहली सूचनाएं खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में। कार्यालय पुलिस उपायुक्त अपराध कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त सूचना के मुताबिक तरन्नुम, पिता का नाम गुलाम हुसैन, ये पंचराव धन्नोपुर वाराणसी की निवासी हैं और 18 अप्रैल 2026 से अपने घर से लापता हैं। तरन्नुम की आयु है 14 वर्ष, कद 4 फीट 4 इंच, रंग गोरा, चेहरा गोल है। आखिरी बार जब इन्हें देखा गया तो इनका पहनावा था सूट सलवार। इनके बारे में कोई जानकारी आपको मिले तो कार्यालय पुलिस उपायुक्त अपराध कमिश्नरेट वाराणसी को सूचना दें। बिंदिया, पिता का नाम मोहन निषाद, ये आमघाट रसड़ा बलिया के निवासी हैं और 29 मई 2026 से अपने घर से लापता हैं। बिंदिया की आयु 14 वर्ष, कद 5 फीट, रंग गोरा, चेहरा लंबा है। आखिरी बार जब इन्हें देखा गया तो इनका पहनावा था हल्के गुलाबी रंग की शर्ट और सफ़ेद लेगिंग। इनके बारे में कोई जानकारी आपको मिले तो पुलिस अधीक्षक बलिया को सूचित करें। रानी, पिता का नाम रज्जब, ये दरेखू जगतपुर रोहनिया वाराणसी की निवासी हैं और 2 मई 2026 से अपने घर से लापता हैं। रानी की आयु है 16 वर्ष, कद 4 फीट 2 इंच, रंग गोरा, चेहरा लंबा है। आखिरी बार जब इन्हें देखा गया तो इनका पहनावा था सूट सलवार। इनके बारे में कोई जानकारी आपको मिले तो कार्यालय पुलिस उपायुक्त अपराध कमिश्नरेट वाराणसी को सूचना दें। ये थी खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं और अब जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों की। आज रात 8 बजे संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा आप सुनेंगे। रात में 10 बजे संसद में प्रश्नकाल के रिकॉर्डिंग का प्रसारण होगा। ये दोनों ही प्रसारण हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। अंजुमन कार्यक्रम आप सुनेंगे 9:30 पर। शाम 6:30 पर किस जगत कार्यक्रम में आज डॉक्टर वामदेव पांडे से सुधीर कुमार श्रीवास्तव की बातचीत का विषय होगा, मछलियों की उचित देखभाल कैसे करें। इसी कार्यक्रम में लोकगीत के कलाकार होंगे मोहन सिंह यादव और साथी। इनके गाए कुछ लोकगीत आप 1:45 पर लोक संगीत कार्यक्रम में भी सुन सकते हैं। युवाणी कार्यक्रम में शाम 5:15 पर आज युवा साथी सुनेंगे आज की बात, क्या आप जानते हैं के अंतर्गत डेड सी पर जानकारी। यूथ डायरी में आज के शब्द, इतिहास में आज का दिन, रोजगार सूचना और फिल्म संगीत। धरती के गीत कार्यक्रम में शाम 5 बजे छत्तीसगढ़ी गीत सुनवाए जाएंगे, कलाकार होंगे धुरुआ राम मकराम और दुखिया बाई। सुहाने तराने कार्यक्रम आप सुनेंगे 2:30 पर, प्रस्तुति स्नेहा सिंह की होगी। 1:15 पर अंगनैया कार्यक्रम में रमिता तिवारी से शिखा श्रीवास्तव की बातचीत का विषय होगा आंगनबाड़ी द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं, साथ ही चर्चा और गीत संगीत। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा।

0: विचारों की अभिव्यक्ति और अधिकार प्राप्ति का आधार सत्याग्रह।
1: आइए अपने जीवन में सत्य, अहिंसा और प्रेम को अपनाएं।
2: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बताए मार्ग का अनुसरण करें।
3: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में 1:10 पर इलाकाई खबरें लखनऊ केंद्र

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानों से इलाकाई खबरें सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने रियासती हुकूमत को हिदायत दी है कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे के गबन की तहकीकात के लिए बनाई गई खसूसी तफ्तीशी टीम के पांचवें रुकन के तौर पर एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल किया जाए। एसआईटी दो हफ्ते के अंदर अपनी पहली स्टेटस रिपोर्ट पेश करेगी। इससे कबल रियासती हुकूमत ने कल सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने अयोध्या में श्री राम मंदिर ट्रस्ट को मिलने वाले अतियात के मुबैना गबन की तहकीकात के लिए लखनऊ रेंज के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस किरण एस की सरबराही में चार रुकनी एसआई तश्कील दी है। दरियसना कल अयोध्या में इंसदादे बदउनवानी अदालत में केस की समाअत के बाद अदालत ने जेल में मौजूद तमाम मुलजमीन की जुडिशियल रिमांड में 10 अगस्त तक तौसी कर दी है। वजीर आले योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी कौमी सदर नितिन नवीन कल वाराणसी में मुल्कगीर संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास समाजी हम आहंगी मुहिम का आगाज करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जेर एहतमाम ये मुहिम 20 फरवरी 2027 तक चलेगी। वाराणसी में इस प्रोग्राम के बारे में मालूमात देते हुए बीजेपी शेड्यूल कास्ट मोर्चा के कौमी सदर श्री लाल सिंह आर्या ने कहा कि ये मुहिम 5 मरहलों में चलाई जाएगी।
1: संत शिरोमणि रविदास जी की 650वीं जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है पूरे देश में संत रविदास जी के विचारों को उनके आदर्शों को ले जाने का हम कार्यक्रम करेंगे। इन कार्यक्रमों में सबसे पहला कार्यक्रम है 29 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और पूज्य निरंजन दास जी के कर कमलों से 131 कलशों को पूरे देश में भेजा जाएगा। इन कलशों का कई जगह पर जिला मुख्यालय पर पूजन और सम्मान होगा।
0: गोरखपीठाधीश्वर और वजीर आला योगी आदित्यनाथ कल गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में गुरु पूर्णिमा के मौके पर मुनक्कित प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। हमारे गोरखपुर के नामानिगार की इतला है कि उस मौके पर श्री योगी गोरखपीठ की रवायत को आगे बढ़ाते हुए शागिर्द और गुरु दोनों किरदार में नजर आएंगे। रियासती पार्लिमानी उमूर के वजीर सुरेश कुमार खन्ना ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी हर घर तिरंगा मुहिम के जरिए मुल्क के शहरियों को हुब्बुल वतनी के जज्बे से मुतासिर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर शहरी का फर्ज है कि वो अपने घरों पर तिरंगा परचम फख्र से फहराए।
2: हम प्रधानमंत्री जी ने लगातार तिरंगा का अभियान चलवाकर पूरे देशवासियों को राष्ट्रभक्ति के प्रति खासतौर से हर नागरिक को कर्तव्य बोध कराया है और ये निश्चित रूप से अपने झंडे के प्रति पूर्ण सम्मान होना चाहिए और सभी देशवासियों का ये कर्तव्य है कि वो अपने फ्लैग के प्रति पूरा समर्पण भाव से सम्मान करें और आदर पूर्वक इसको अपने घर में स्थापित करें।
0: गुज़िश्ता इतवार को मन की बात प्रोग्राम में वजीर आजम ने हम वतनों से हर घर तिरंगा मुहिम को फरोग देने की अपील की। शहरियों से अपील की गई है कि वो आइंदा माह 15 अगस्त को यौम आजादी के तकरीबात में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिताब के लिए नए हिंदुस्तान की तामीर के लिए अपने ख्यालात तजावीज़ और तसव्वुरात का इश्तराक करें। मुंतखब तजावीज़ वज़ीर आज़म को खिताब में शामिल की जाएगी। लोग माई जी ओ वी प्लेटफॉर्म पर अपने ख्यालात और तजावीज़ भेज सकते हैं। सावन और कांवड़ यात्रा के लिए रियासत भर में खसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में शाहजहांपुर में जिला मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र प्रताप सिंह की सदारत में एक मीटिंग हुई। मीटिंग में मुख्तलिफ महकमों को जरूरी रहनुमा खतूत दिए गए ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि यात्रा को महफूज तरीके से और मुनजम तरीके से अंजाम दिया जाए। इसी दौरान मेरठ में जिला मजिस्ट्रेट डॉ वी के सिंह ने कहा कि महकमे सेहत को ज्यादा से ज्यादा सेहत खदमात फराहम करने की सिमत काम करने के लिए खसूसी हिदायत दी गई है। इस बार एक मोबाइल एम्बुलेंस बनाई गई ताकि कांवड़ियों को किसी किस्म की परेशानी का सामना हो तो उन्हें फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की जा सके। हेपेटाइटिस का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। ये दिन हेपेटाइटिस पर कौमी और बैन अल-अक़वामी कोशिशों को मुतहर्रिक करने का मौका है। लोगों और आम लोगों की जानिब से कार्रवाई और शिरकत की हौसला अफजाई करता है। इस साल का थीम हेपेटाइटिस आप से इसे खत्म करें, जो 2030 तक हेपेटाइटिस के खात्मे के अहदाफ के हुसूल के लिए माली समाजी और सेहत से मुतालिक रुकावटों को दूर करने पर मरकूज है। फितरत के तहफ्फुज के आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। 1997 में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने 28 जुलाई को फितरत के तहफ्फुज का आलमी दिन करार दिया। इसका मकसद करें

0: अंगनैया कार्यक्रम सुने वाली सब बहिन लोगन के मीना का नमस्ते और साथे में लाजो बहिन तोहरों के नमस्ते।
1: नमस्ते मीना दीदी, और साथे में देखा अपन कार्यक्रम सुने वाले भी सब बहनी लोगन के हमार नमस्ते।
0: और हो लाजो, का हाल चाल हो?
1: अरे हाल चाल देखा दीदी, हमारे एकदम ठीक हो। बाकी मौसम का हाल तो देखता हो कि
0: हाँ भाई, देखा कबो धूप होता तो कबो बरखा लगत हुआ। आ देखा आज हम कही ना कि एक है बड़ा नीक का दिन है भाई, पता है कि नहीं?
1: एकदम दीदी बिल्कुल पता है। देखा आज है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस।
0: माने कि अपने प्रकृति का संरक्षण के विषय में सब केहू के जागरूक करे बदे आज 28 जुलाई के दिवस मनावल जाला। कि भाई जौन अपन प्राकृतिक संसाधन हुआन, एकरे प्रति सब केहू सचेत हो के जिम्मेदार हो के अपन जिम्मेदारी निभावे।
1: एकदम दीदी सही कहा। तो देखा दीदी, जो प्राकृतिक संसाधन का स्रोत का बात कही हो, देखा ई तो सीमित हो, तो एकर प्रयोग भी बड़ा सोच समझ के सही ढंग से करे के चाहिए। कौनो भी चीज़ का दुरुपयोग ना करे के चाहिए। काहे से कि
0: एकदम
1: देखा
0: सही
1: हो
0: बात
1: दीदी,
0: हो तो।
1: जब आप अपने प्रकृति का देखभाल करबू तो अपने ही खातिर ओके भविष्य खातिर बचा के रखबू, और जो अपन आए वाले नई पीढ़ी के लोग हैं उनके खातिर भी तो कुछ बचा के रखे के ही होई।
0: एकदम एकदम सही बात कहतु हो। देखा देखा लो ना कि भाई तनिके दूरी जाए के हो तो लोग सोचियन कि का पैदल चले के चला अपन फटफटैया उठाला। तो
1: हाँ
0: देखा
1: दीदी
0: ऐसा ना करे भाई, कि भाई पैदल अगर जाए के अपन कहला तो अपन स्वास्थ्य भी बढ़िया रही, अब पेट्रोल का भी बचत होई। अपन
1: एकदम
0: देखा
1: दीदी
0: प्राकृतिक जितना पानी है भाई, अधिक से अधिक पानी ना गिराओ, जितना जरूरत है उतने गिरावा।
1: एकदम दीदी देखा
0: पेड़
1: आपन
0: पौधा
1: जो
0: हुआ तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधा लगावा। इस समय तो देखा तो कि बरसात का दिन है, इस समय पेड़ पौधा लगाता तो कितना बढ़िया से पकड़ लिया ना। और देखा लगावे ना, ओकर संरक्षण भी करल जरूरी
1: एकदम
0: है।
1: दीदी देखा, जो अपन प्रकृति हो, हवा पानी पेड़ पौधा और मिट्टी और वन्य जीव जंतु सब चीज़ से मिलजुल के बनल हो। तो देखा जो वन्य जीव जंतु हैं, छोट छोट जंतु हैं, वो सब का भी ध्यान रखें कि अपने वजह से उनके कोनो नुकसान ना हो।
0: भाई देखा यही से ना, कि ज्यादा से ज्यादा अगर पेड़ पालो काटी मने तो भाई जीव जंतु कहाँ रहियन। यही
1: एकदम
0: से जरूरी है कि पेड़ पौधा लगावल जाला तो वो ऑक्सीजन भी देवे ना, जीवन भी स्वस्थ रहला। कहल जाला कि भाई एक पेड़ 100 पूत समान,
1: एकदम
0: तो
1: दीदी
0: पेड़ पौधा का बहुत महत्व है। और अपने प्राकृतिक संसाधन के कैसे बचावे के है, ई हमने के सोचे के है,
1: एकदम
0: ए पर
1: दीदी
0: अमल करे के है।
1: एकदम दीदी और देखा प्रकृति संरक्षण करल बहुत जरूरी हो। काहे से कि जो प्रकृति माने अपन वातावरण जौन हो, जब उस शुद्ध साफ सुथरा स्वच्छ रही तब मनई भी स्वस्थ रहियन। काहे से कि प्रकृति का सीधा असर हमन के स्वास्थ्य पे पड़ला।
0: एकदम सही बात कहत हूँ। और देखा साथे साथे ना एक ठे और दिन है, की
1: आज
0: पता
1: देख
0: है कि ना तोके?
1: हाँ दीदी जरूर पता। और देखा बहनी लोगन के भी बताए चाहब कि देखा आज एक और खास दिन हो, आज हो विश्व हेपेटाइटिस दिवस। देखा
0: ये
1: एकर
0: देखा कि भाई स्वास्थ्य के विषय में लोगन के जागरूक करे बदे ये दिवस मनावल जाला है कि ना?
1: एकदम दीदी कि लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें और लोग जागरूक अपने आसपास के लोग के भी जागरूक करें। एकरे साथे साथे देखा दीदी
0: कहे से
1: स्वास्थ्य
0: कि देखा जब स्वास्थ्य रहे तब कुल चीज निक लगेला हो ना जो।
1: एकदम दीदी आ देखा दीदी।

0: हम कहें कि आज का विशेष दिन रहल, एकरे बारे में तो बहनी लोगन के बता दिहल गया, लेकिन देखा कल भी कुछ खास दिन है, एकरे बारे में भी बहनी लोगन के
1: का तो
0: बता
1: भाई
0: देता।
1: बहुत खास दिन बा, काहे से कि काल आपन अषाढ़ का पूर्णिमा है, जेके कि गुरु पूर्णिमा के रूप में मनावल जाला।
0: एकदम दीदी, देखा ई गुरु पूर्णिमा कहल जाला कि महर्षि वेदव्यास जी के जन्मदिन और गुरुवन के सम्मान, गुरु के प्रति सम्मान व्यक्त करे बदे मनावल
1: कि जे
0: जाला।
1: भाई अपने जीवन में अंधकार के मिटा के प्रकाश की ओर हमके ले जाना, वो गुरु के प्रति सम्मान व्यक्त करे बदे गुरु पूर्णिमा मनावल जाला।
0: एकदम
1: काहे से कि भाई गुरु का अपने जीवन में बहुत महत्व है,
0: एकदम दीदी, और
1: का
0: देखा
1: आगे बढ़े बदे जरूरी है कि भाई कोई सिखावे बतावे सही मार्ग पर ले जाए।
0: एकदम दीदी, देखा गुरु का मतलब ये नहीं होला कि कौनो आश्रम में कोई ऋषि मुनि बैठल हैं, बल्कि हर एक वो व्यक्ति आपके जो अंधकार की ओर से ज्ञान के उजाला की ओर ले जाता है, हर वो व्यक्ति गुरु के समान पूजनीय हैं। और
1: एकदम
0: देखा
1: सही बात
0: अपन
1: कहत हो। आ
0: पहला
1: देखा
0: गुरु तो माता पिता ही होलन, वो
1: मतारी
0: हर चीज
1: होलिन कि जवन उनके
0: सिखावलन।
1: सिखावे बतावे, लड़कन बच्चन के जवन भी सिखावे नहीं भाई, वो उनकर घर पहला पाठशाला होला, मतारी उनकर पहला गुरु होनी। और उन्हीं के देखा जितना भी गुरु होन अपने जीवन में ना, उनके सम्मान बदे, काहे से कि अपने जवन है कि धर्म में गुरु का बहुत महत्व देवल गल जीवन में। कहल जाला ना कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मय श्री गुरुवे नमः। तो देखा गुरु का कितना महत्व है कि उनकर दर्जा जो ना कि ईश्वर से देवल गया है।
0: एकदम दीदी, आ देखा दीदी निके का बात बतकाई तो हम लोगन आगे भी करन जाई, लेकिन देखा कुछ जरूरी संदेश हो पहले बहनी लोगन के उस सुनवा देवल जाए।
1: सुनवा दा।
2: डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं, इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
3: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो
2: 0542227658।
3: 0542227658।
0: लो अभी फोन लगाता हूँ।
3: 0542227658।
4: तो लाजो देखा था बहन लोगन सने सुन लेनी, लेकिन देखा हम एक बहुत नीक का बत कही लेके आली बहन लोगन के सुनवा बदे कि आंगनबाड़ी द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं यही विषय पर रमिता तिवारी द्विवेदी से बतियावत हैं शिखा श्रीवास्तव बहिनी। तो बहन लोगन ई बत कही सुने
5: सुने बहनी लोगन।
6: श्रोता बहनी, आज हमारे साथ कार्यक्रम में आये हैं रमिता तिवारी द्विवेदी जी, ई प्रखंड

0: समुदाय प्रक्रिया प्रबंधक हैं बिरनो गाजीपुर में, और आप लोगन के जानकारी दी है कि आंगनबाड़ी के द्वारा कौन कौन तरह का सुविधा आप लोगन के दिहल जाता और कौन नई जानकारी आंगनबाड़ी के माध्यम से आप लोगन के जो मिली सेवा उकरे बारे में। तो बहनी, आपका अपने कार्यक्रम में हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे थे।
1: जी स्वागत है। भारत में सरकार के द्वारा बहुत सारे कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिसमें आंगनबाड़ी केंद्रों की भूमिका एक प्रहरी के समान है। उत्तर प्रदेश एक हमारा विशाल जनसंख्या वाला राज्य है, जहाँ पर ग्रामीण शहरी निर्धन आबादी का एक बड़ा हिस्सा निवास भी करता है। आंगनबाड़ी केंद्र सामाजिक न्याय और अवसर के मुख्य धारा को जन जन तक पहुंचाने का सबसे प्रभावी माध्यम है, क्योंकि इसके द्वारा बहुत सारे सुविधाएं जो है जो सुदूर गांव तक नहीं दे पाते हैं, वो इनके द्वारा प्रदत्त कराई जाती है।
0: अच्छा, तो ये घड़ी कौन कौन सुविधा दिहल जात है आंगनबाड़ी के द्वारा?
1: इस समय आंगनबाड़ी के द्वारा जो है मुख्य 6 सेवाएं दी जा रही है।
0: अच्छा।
1: पहला है अनुपूरक पोषाहार।
0: अच्छा।
1: जिसमें गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं, 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों को मिलाकर के कुल 7 प्रकार के पोषाहार विभाग के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, जो कि उम्र के अनुसार कार्यकर्ता केंद्र पर वितरित करती हैं।
0: उम्र के अनुसार माने?
1: इसमें उम्र के अनुसार इसलिए है कि 6 माह से ही हम ऊपर का आहार देते हैं शिशु को, क्योंकि उसके पहले बच्चा जब नवजात पैदा होता है तो जन्म से लेकर 6 माह तक बच्चे को सिर्फ सिर्फ माँ का दूध ही पिलाया जाता है, स्तनपान ही माँ कराती है। तो 6 माह के बाद जब अनुपूरक आहार दिया जाता है तो इस केंद्र के द्वारा हम बच्चों को पोषाहार के रूप में देते हैं।
0: अच्छा, ये पोषाहार जो बहनी लोगन हैं उनके बदे भी होला?
1: जी हाँ, ये गर्भवती धात्री जो महिला होती हैं उनके लिए भी पोषाहार होता है। ये कई प्रकार का होता है, 7 प्रकार का है। इसमें 6 वर्ष तक के बच्चों तक है, 6 माह से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों तक कई प्रकार का पोषाहार, जिसके बारे में आगे विस्तार पूर्वक आपको बताऊंगी इस कार्यक्रम के माध्यम से। गर्भवती महिला एवं धात्री महिला के लिए अलग पोषाहार आता है। आटा, बेसन, सोया की बर्फी जो मीठा होता है, इसे संपूर्ण मातृत्व आहार कहा जाता है।
0: अच्छा, वो बर्फी बनल बनावल रही?
1: जी, बना बनावा बर्फी होता है, वो पैकेट में आता है।
0: अच्छा।
1: दूसरा है दलिया, मूंग दाल की खिचड़ी, ये नमकीन होता है, ये भी संपूर्ण मातृ आहार के नाम से आता है, ये भी गर्भवती और धात्री माता को दिया जाता है। उसके बाद दूसरा है 6 माह से 1 वर्ष तक के बच्चों को आटा बेसन का हलवा, ये मीठा होता है, जो शिशु अमृत के नाम से आता है।
0: अच्छा, ती हलवा का मतलब हलवा का पदार्थ रहेला कि?
1: जी हाँ, ये पैकेट में रहता है, जिसको कि घर पे उनको दिया जाता है धात्री माता को, और वो घर पे अपने बच्चे को बना करके और खिलाती है।
0: अच्छा।
1: उसके बाद 1 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए आता है आटा बेसन का मीठा हलवा, वो भी शिशु आहार के नाम से आता है। इसके पश्चात 3 से 6 वर्ष के बच्चों का भी आटा बेसन की बर्फी मीठा आता है, जो बाल पुष्टिकर के नाम से आता है। इसके साथ दलिया, मूंग, सोया खिचड़ी के लिए भी आता है, वो नमकीन होता है, इसे भी बाल पुष्टिकर के नाम से ही ये आता है।
0: अच्छा, तो जैसे मान लो उनकी मात्रा कैसे बतावल जाए?
1: ये मात्रा जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो है जो माता को देती हैं तो उनको बता देती हैं कि 6 माह से 1 वर्ष के बच्चे की को कितनी मात्रा में देना है, 1 से 3 वर्ष के बच्चे को कितनी मात्रा में देना है, 3 से 6 वर्ष के बच्चे को कितनी मात्रा में देना है।
0: अच्छा, एक प्रश्न और मन में आवत है, पूछ ली कि जैसे जो बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाएगा है, तो ओकरे बदे का विशेष रूप से कुछ पुष्टाहार रहेगा?
1: जी हाँ, जो बच्चे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं उनके लिए भी विशेष पुष्टाहार आता है। इसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। ये पोषण ट्रैकर के द्वारा निगरानी होती है।
0: अच्छा।
1: एक ऐप है।
0: अच्छा।
1: आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को एक टेबलेट दिया गया है, जिसपे की पोषण ट्रैकर ऐप को ये डाउनलोड कर लेती है और इस ऐप के माध्यम से वो ट्रैकिंग करती है।
0: अच्छा।
1: जैसे प्रत्येक माह के पहले मंगलवार को पोषण दिवस मनाती हैं आंगनबाड़ी केंद्र, अपने आंगनबाड़ी केंद्र पे सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता।
0: अच्छा।
1: इस दिन ये 6 माह से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चों का वजन करती है, जितना उनके इस ऐप में बच्चे पंजीकृत रहते हैं, और वो वजन मशीन और स्केल के द्वारा उनकी निगरानी करती है और

0: इसमें जो बच्चे कुपोषित मिलते हैं उनको स्वास्थ्य केंद्र पे जांच करने के लिए भेजती हैं, जहां पे उन्हें डॉक्टर देखते हैं, जांच करते हैं, और जांच करने के बाद उनको वो दवा देते हैं। जैसे विटामिन ए दिया जाता है, उनको एमोक्सिलिन सिरप दिया जाता है, और उसके बाद डॉक्टर ही निर्धारित करते हैं कि ये बच्चा कुपोषित है या अति कुपोषित है। जो अति कुपोषित बच्चा होता है उसके लिए भी विशेष आहार आता है।
1: अच्छा।
0: उसके लिए आता है आहार ऊर्जा युक्त हलवा, जो मीठा होता है, इसको आरोग्य पोषण के नाम से आता है। ये 6 मास 1 वर्ष के बच्चे के लिए होता है। 1 वर्ष से 3 वर्ष के बच्चों के लिए ऊर्जा युक्त हलवा मीठा आता है, जो बाल संजीवनी के नाम से आता है।
1: अच्छा।
0: 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों के लिए भी ऊर्जा युक्त हलवा आता है मीठा, ये सक्षम पोषण के नाम से आता है।
1: अच्छा अच्छा।
0: और फिर ऊर्जा युक्त दलिया आता है नमकीन, ये भी सक्षम पोषण के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर के जांच के पश्चात बच्चा अगर अति कुपोषित होता है तो आंगनबाड़ी उनकी निर्देशानुसार उन्हें पोषण पुनर्वास केंद्र पे संदर्भन करती है।
1: अच्छा।
0: और अगर बच्चा कुपोषित है, ये पोषाहार देने के बाद अगर बच्चा स्वस्थ हो जाता है तो फिर उनकी घर पे ही देखभाल होती है, क्योंकि स्वास्थ्य केंद्र पे जब बच्चा जाता है तो उनको स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कुछ दवाएं दी जाती हैं। और उसके बाद ये जो विशेष पोषाहार जिसके बारे में मैं अभी चर्चा की हूँ, ये देने के बाद बच्चे अगर हरे में आ जाते हैं तब बच्चा स्वस्थ हो गया है। अगर इसके देने के पश्चात भी अगर बच्चा स्वस्थ नहीं होता है तो फिर उसे पोषण पुनर्वास केंद्र पर संदर्भित किया जाता है।
1: अच्छा अच्छा। माने रंग निर्धारित करें?
0: रंग निर्धारित के 3 तरह का होता है, जैसे हरा, पीला और लाल। हरा जो है वो बच्चा स्वस्थ है, जो पीला है वो कुपोषित में आता है, और जो लाल है वो अति कुपोषित वाले बच्चे हैं।
1: अच्छा।
0: इनको ही पोषण पुनर्वास केंद्र पे भेजा जाता है।
1: अच्छा अच्छा अच्छा। एकरे अलावा उनके स्वास्थ्य से जुड़ल और कौन सुविधा?
0: इसके अलावा भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो है वो टीकाकरण करती है। अच्छा। गर्भवती महिलाओं को प्रथम तिमाही में पंजीकृत करती है। अच्छा। पंजीकृत करके अपने पोषण ट्रैकर ऐप में उनको जोड़ती है।
1: अच्छा।
0: जोड़ने के बाद इनको टीडी का टीका लगवाती है, फिर उनका वजन लेती है, इनकी 4 जांच कराती है। ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता पोषण दिवस पर आंगनबाड़ी इन गर्भवती महिलाओं को लेकर के जाती है, वहाँ पे ANM के द्वारा टीकाकरण किया जाता है। MCP कार्ड पे ये उनका वजन और 4 जांच चढ़ाती हैं।
1: अच्छा।
0: उसके बाद ये सारी जांच उनके पोषण ट्रैकर ऐप पे भी चढ़ता है।
1: अच्छा।
0: जिससे कि ये इस ऐप पे चढ़ाने का ये फायदा होता है कि इस ऐप के द्वारा ही पोषाहार वितरण होता है।
1: हाँ हाँ।
0: तो प्रति माह जब इनका वो जांच कराने के बाद इस ऐप पे चढ़ा लेती है तो इस ऐप के माध्यम से ही पोषाहार वितरित करती है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य जांच उपकेंद्र अथवा ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता पोषण दिवस पर ANM के द्वारा कराने के उनके फायदे ये होते हैं कि जैसे महिलाओं को गर्भावस्था में कौन कौन सी परेशानी हो रही है ये उनको जानकारी नहीं होती है। जब ये आंगनबाड़ी उनको वहाँ ले जाती है और ANM के द्वारा बताया जाता है कि आप दवा समय पर लें, वो जब टीडी का टीका लगाएंगी तो माँ और शिशु दोनों स्वस्थ हो गए, उस रोग से बचाव हो गया उनका। उसके बाद वजन लिया जाता है, वजन से ये पता चलता है कि बच्चे का विकास सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर पेशाब की जांच होती है, खून की जांच होती है, खून की जांच से ये पता चलता है कि उनका हीमोग्लोबिन की मात्रा कितना है। अगर उनका हीमोग्लोबिन 11 ग्राम से कम है तो फिर उन्हें विशेष पोषाहार दिया जाता है, उसी पोषाहार को डबल कर दिया जाता है, और आयरन और कैल्शियम की जो गोली दी जाती है उसको भी बढ़ा दी जाती है मात्रा, ताकि जब महिला का प्रसव हो तो कोई परेशानी ना हो। ये जांच कराना इसीलिए जरूरी होता है, जो आंगनबाड़ी कराती है पोषण से भी बचाती है उनको और एनीमिया से भी बचाती है।
1: मानी सरकार की तरफ से इतना इतना तरह का सुविधा दिया जाता, बस बहनी लोगन के भाई जागरूक रहे के है।
0: जी हाँ, ये जागरूक रहता, जागरूक महिलाएं तभी हो सकती हैं जब वो आंगनबाड़ी केंद्र पे जाए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से संपर्क करें। देखिए वो इनको सारी चीजें बताए, जो गृह भ्रमण होता है आंगनबाड़ी का, जो घर घर जाके वो भ्रमण करती है, उसमें गर्भवती और धात्री माताओं को बताती हैं कि आपको दिन भर में 4 बार भोजन करना है, चतुरंगा भोजन लेना है, और भोजन में सभी तरह के पदार्थ हों। पहली तिमाही में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपने केंद्र पे जो गर्भवती

0: महिलाएं होती हैं उनकी गोद भराई का रस्म भी करती हैं।
1: अच्छा।
0: इस गोद भराई के रस्म में एक विशेष प्रकार की टोकरी होती है जिस टोकरी में मौसम के अनुसार फल, हरी पत्तेदार सब्जियां, आयरन कैल्शियम की गोलियां होती हैं, चना होता है, गुड़ होता है, मूंगफली होती है और जो उनके द्वारा पोषाहार दिया जाता है उसका पैकेट होता है।
1: ये जितना उनकी जरूरत रहेला कुछ
0: सभी चीजें होती हैं, सभी चीजें होती हैं और इसमें इनका जो दो तरह का जो पोषाहार दिया जाता है वो भी रहता है। पहला पोषाहार इनका है आटा बेसन सोया की बर्फी जो मीठा होता है और दूसरा होता है दलिया मूंग दाल खिचड़ी का नमकीन जो कि संपूर्ण मातृ आहार इसको कहा जाता है।
1: अच्छा।
0: आयरन कैल्शियम का टेबलेट दिया जाता है जिससे कि महिला को किसी

0: आयरन कैल्शियम का टेबलेट दिया जाता है जिससे कि महिला को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इनको संस्थागत प्रसव के लिए प्रेरित करती है। संस्थागत प्रसव कराने का मतलब होता है कि आप अस्पताल पर ही प्रसव कराएं, जिससे किसी प्रकार की अगर कोई दिक्कत होती है तो वहां पे उसका समाधान हो सके।
1: अच्छा, एकरे अलावा और सरकार के तरफ से आंगनबाड़ी के का सुविधा दिहल गई है कि वो पहुंचावे ग्रामीण महिला लोगों तक?
0: ग्रामीण महिला के लिए और बच्चों के लिए दोनों लोगों के ये सुविधाएं देती हैं। पहला तो ये टीकाकरण करा दी, फिर उसके बाद इनका संस्थागत प्रसव कराती हैं और इनका इनका जो हर माह जांच कराती है, इससे उनके स्वास्थ्य के लिए भी सही रहता है। अब जो बच्चे होते हैं, बच्चे पैदा हो गए, उनको सही रूप से आपको आहार देना है, तो इसके बाद अन्नप्राशन का कार्यक्रम भी ये करती है। जब बच्चा 6 माह का हो जाता है तो जो ये पोषाहार दिया जाता है इसके लिए वो अन्नप्राशन का कार्यक्रम करती है अपने केंद्र पे। माँ को बुलाती है और उनको बताती है कि आपको बच्चे का कैसे लालन पालन करना है।
1: अच्छा, बच्चन के सिखावे पढ़ावे शिक्षा से भी जुड़ल कुछ?
0: जी हाँ, शिक्षा से भी जुड़ा है। जो बच्चे 6 वर्ष के हो जाएंगे तो विद्यालय जाएंगे, तो विद्यालय जाने के बाद बच्चे क्या होता है, अक्सर वहाँ बैठना नहीं चाहते हैं, तो इसके पूर्व आंगनबाड़ी अपने केंद्र पे बच्चों को रंगों के माध्यम से, खेल के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, खिलौने के माध्यम से रंगों का पहचान कराती है, फल और सब्जी का पहचान कराती है, बच्चों को बैठना सिखाती है, ताकि ये बच्चे जब विद्यालय में इनका दाखिला हो तो ये विद्यालय से भागे नहीं। खेल खेल में उनको गिनती सिखाती है और उनको जो रंग होते हैं उनकी पहचान कराती है, जानवरों की पहचान कराती है। ये सारे कार्य जो है आंगनबाड़ी अपने केंद्र पे करती है। इसके अलावा जितने भी राष्ट्रीय कार्यक्रम चलते हैं, सभी कार्यक्रम में आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ती जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा होती हैं, उनके साथ ये काम करती हैं।
1: भाई, सरकार के तरफ से तो इतना सुविधा दिहल जाता, और बहनी लोगन के चाहिए कि जुड़ के उसे ओकर लाभ ले। हाँ,
0: जी
1: अच्छा,
0: हाँ,
1: बहनी लोगन के इतना आप जानकारी दिली आंगनबाड़ी का और का का उनके तरफ से सुविधा मिलत है आंगनबाड़ी के द्वारा। अच्छा, बहनी लोगन से का कहल चाहब आप, चलत चलत ई जानकारी भी बहनी लोगन के दे दे।
0: मैं बहनों से ये निवेदन करूंगी कि वो अपने गांव के आंगनबाड़ी केंद्र पे जाएं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से संपर्क करें, ताकि सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका ये लाभ उठाएं। अभी आंगनबाड़ी केंद्र के द्वारा 2 योजनाएं चलती हैं, कन्या सुमंगला योजना और मातृ वंदना योजना। ये जब आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से बहने मिलेंगी तो सारी सुविधाएं कार्यकर्ता इन्हें उपलब्ध कराएंगी। तो मैं बहनों से कहूंगी कि वो अपने गाँव पे जो उनका केंद्र है वहां जाएं और उनसे संपर्क स्थापित करें।
1: बहुत बढ़िया जानकारी देलिन रमिता तिवारी द्विवेदी जी, आप हमारे कार्यक्रम में एलिन और आंगनबाड़ी के द्वारा बनी लोगन के का सुविधा दिहल जाता ये विषय पर इतना महत्वपूर्ण जानकारी देलिन, एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बड़ा निक का जानकारी का बात सुनौलू है दीदी। आ देखा रमिता तिवारी द्विवेदी जी कितना फरिया के बतौली ना कि आंगनबाड़ी द्वारा कौन कौन सा सुविधा दिहल जात हो, इनसे बतियावत रहलिन शिखा श्रीवास्तव जी। आ देखा इतना सरकार के तरफ से सुविधा दिहल जात हो तो बहनी लोगन अपन घरे से निकले और जागरूक बने और सुविधा का लाभ उठावे।
3: बात कही तो सुनवा देलू लेकिन गीत सुनवावत हो कि नहीं?
2: एकदम दीदी, देखा निके कजरी भी लेके आवल गए तो बहनी लोगन कजरी सुने
3: सुनवा दा।

0: देखा दीदी गीत तो बहनी लोगन सुन ले हलिन
1: भाई इतना नीक का तू गीत सुनवैलू है ना देखा अभी सावन तो लगा था कि परसों से होई लेकिन तोहार मन कजरी सुने का अब्बे से कह देला सा
0: एकदम दीदी देखा बड़ा नीक का कजरी भी आवत हो आजकल तो देखा सुने में बड़ा नीक लगा था और बहनी लोगन के भी बड़ा नीक लगत हुई
1: एकदम सही बात कहत हो काहे ना नीक लगी जब देखा मौसम बदलेला तो समय समय से कुल कितना बढ़िया लगेला भाई हाँ कि ना देखा हम कही ना कि आपन जब मौसम बदले तो इमन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखल बहुत जरूरी
0: एकदम दीदी
1: इसमें देखा थू ना कि भाई कितना मच्छर पनपत हुआ तो जरूरी है कि मन ही अपन जो ना कि ध्यान रखे कि मच्छरदानी लगा के सूते अब पूरी बाहिन का कपड़ा पहरे नहीं तो देखा बेराम पड़ जा ना तो भाई तुरंत देखा जैसे हम भाई अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा तब सब बढ़िया
0: एकदम दीदी
1: लेकिन जैसे हम समय से आई ला ना वैसे समय से भाई अब घड़ी कहते मन के जाए का समय भी होता तो चला चल जाए अब बहन लोगन से कहल जाए नमस्ते, नमस्ते।

महिलाएं सुन रही थीं अपना कार्यक्रम मंगनैया। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 1:45 हुए हैं। लोक संगीत कार्यक्रम में आज सुनिए मोहन सिंह यादव और साथियों के गाए लोकगीत। पहले सुनिए एक कहरवा।

इस विकास गीत के साथ ही आज का लोक संगीत कार्यक्रम समाप्त होता है। कलाकार थे मोहन सिंह यादव और उनके साथी। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में 2 बजे आप सुनेंगे मिड डे न्यूज़, उसके बाद 2:15 पर दोपहर समाचार। ये दोनों ही समाचार बुलेटिन हम दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू। एयर इंडिया ने अमृतसर हवाई अड्डे पर इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल शुरू किया है। इससे पंजाब 27 अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से जुड़ सकेगा। झारखंड में 6 शीर्ष कमांडर सहित 16 माओवादियों का आत्मसमर्पण। सरकार ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध के मामलों में E0 FIR दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की। दक्षिणी जापान में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया, सुनामी की चेतावनी जारी। और छत्तीसगढ़ तथा ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट, दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाले 18 वर्ष से कम आयु के छात्र प्रदर्शनकारियों को रिहा करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। प्रदर्शनों के दौरान पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से संबंधित विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कई अंतरिम निर्देश जारी किए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने प्रदर्शन वाले सभी राज्यों को निर्देश दिया कि वे CCTV फुटेज, ड्रोन रिकॉर्डिंग, कैमरा फुटेज, वायरलेस संचार रिकॉर्ड, PCR लॉग और प्रदर्शनों से संबंधित अन्य डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखें। न्यायालय ने आदेश दिया कि प्रदर्शनकारियों से एकत्र किए गए डिजिटल डेटा को सुरक्षित रखा जाए, लेकिन उसे सार्वजनिक न किया जाए। पीठ ने दिल्ली सरकार को दर्ज FIR की जांच जारी रखने की अनुमति दी है, लेकिन कहा कि कार्यवाही लंबित रहने के दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। पीठ ने दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों से याचिकाओं में लगाए गए आरोपों पर जवाब भी मांगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस के कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार विमर्श विधेयक पर चर्चा शुरू हो गई है। इस समय प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह चर्चा का जवाब दे रहे हैं। आइए सुनते हैं।
1: And for whatever interest. So I think you must compliment Prime Minister Modi and this government. It has finished an unfinished task which you should have accomplished.
0: राज्यसभा की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण आज दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। पहले सदन के बाद कार्यवाही फिर शुरू होने पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इसका उद्देश्य सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में और संशोधन करना है। विधेयक पेश किए जाने के दौरान ही विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभापति हरवंश ने सदन की कार्यवाही आज दिनभर के लिए स्थगित कर दी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन NDA की संसदीय दल की साप्ताहिक बैठक संसद भवन में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य नेता बैठक में शामिल हुए। तृणमूल से अलग हुए गुट नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI के सांसद भी गठबंधन की बैठक में शामिल हुए। पिछली बैठक इसी महीने की 21 तारीख को हुई थी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकने के लिए सभी हितधारकों से समन्वित प्रयास करने का आह्वान किया था। प्रधानमंत्री ने हाल ही में हुए नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने और युवाओं के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। भारतीय जनता पार्टी सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि NDA संसदीय दल की बैठक में सांसदों को भारत के विभिन्न देशों के साथ व्यापार और मुक्त व्यापार समझौतों से संबंधित घटनाक्रमों की जानकारी दी गई।
2: जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं दुनिया से, वो 2013-14 तक भारी हेवी ड्यूटी लगती थी, लेकिन आज ये जान करके खुशी होगी कि लगभग दुनिया के वो सभी विकसित देश भारत के साथ अब फ्री ट्रेड

0: एग्रीमेंट में है। आज जो बिल आ रहा है उस पर सभी लोग सकारात्मक रूप से भाग लें, विपक्ष से भी हम लोग अपेक्षा करते हैं डिस्कशन में भाग लें, उसको पास करें।
1: भाजपा राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने पंजाब में बार बार हो रही कथित पेपर लीक की घटनाओं को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की और राज्य के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की।
2: पंजाब में पिछले 5 सालों में 6 मेजर पेपर लीक्स हुए हैं और चीटिंग स्कैम्स हुए हैं। अभी भी 19 जुलाई को पंजाब के फार्मेसी एग्जाम में बहुत मेजर चीटिंग हुई। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी पूरे जेंजी को ये बोलते हैं कि भाई सड़क से आइए, नेपाल बनाइए भारत को, और जब पीसफुल प्रोटेस्ट युवा पंजाब में करते हैं तो उनके बर्बरता से अरविंद केजरीवाल लाठी चलाते हैं। पंजाब के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनका हर हाल में रेजिग्नेशन होना चाहिए।
1: कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि विपक्ष लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन करने वाले विधेयक पर लोकसभा में होने वाली चर्चा का इंतजार कर रहा है। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने पूरी व्यवस्था की समीक्षा और उसमें सुधार की आवश्यकता पर बल दिया।
3: ये बिल काफी है जो सरकार ने लेके आए हैं, सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट करने से या एक दो चीजें बदलने में क्या हमारे बच्चों के भविष्य बेहतर होने वाला है? बहुत सारे प्रश्न हैं। सरकार की अकाउंटेबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण है, पूरे सिस्टम को आप देखना चाहिए और बदलना चाहिए।
1: सरकार ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध के मामलों में E0 FIR दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की है। गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने बताया कि E0 FIR के तहत 12,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं।
4: गृह राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को साइबर अपराध के मामलों, खासकर साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में E0 FIR दर्ज करने के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है। उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था के अंतर्गत नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल और हेल्पलाइन 1930 के जरिए मामले दर्ज किए जाते हैं। इससे अपने आप में E0 FIR दर्ज हो जाएगी। इसके बाद इसे तुरंत संबंधित इलाके के साइबर अपराध पुलिस स्टेशन को भेज दिया जाएगा। श्री कुमार ने बताया कि शिकायतकर्ता को E0 FIR को नियमित FIR में बदलने के लिए 3 दिनों के अंदर संबंधित पुलिस स्टेशन जाना होगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन IRF और हमारी वेबसाइट www.newsonir.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पंजाब में अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज एयर इंडिया के इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही पंजाब उत्तरी अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के 27 वैश्विक गंतव्यों से जुड़ गया है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापो राममोहन नायडू ने वर्चुअल माध्यम से सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आंकड़ों से पता चलता है कि हर साल लगभग 1.5 लाख यात्री अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए अमृतसर से दिल्ली की यात्रा करते हैं। इसी तरह लगभग 1.5 लाख यात्री विदेश से दिल्ली आते हैं और फिर अमृतसर की यात्रा करते हैं।
5: हब एंड स्पोक केवल एक एविएशन मॉडल नहीं है, यह एक अपॉर्चुनिटी मॉडल है। दिल्ली जैसे बनेगा हब और अमृतसर नॉर्थ इंडिया का इंटरनेशनल गेटवे बनेगा। पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, इन जैसे बड़े कैचमेंट एरिया आपको यहां से जुड़ेंगे। विदेशों में रहने वाले लगभग 3 करोड़ भारतीयों में करीब 1 करोड़ पंजाबी है। एयर कनेक्टिविटी जब बढ़ेगी तो उसका सीधा लाभ अमृतसर की अर्थव्यवस्था को भी पहुंचेगी और हब एंड स्पोक के माध्यम से हमारी एयरलाइंस की रेवेन्यू पर फ्लाइट भी बढ़ेगी।
1: नागर विमानन सचिव समीर कुमार सिन्हा और एयर इंडिया एयरलाइन के अध्यक्ष विपिन कुमार भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि हब विमानन क्षेत्र के लिए सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इससे अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों तक यात्रा करने में आसानी होगी। इस शुरुआत के साथ अमृतसर से प्रतिदिन 2 इजी कनेक्ट उड़ानें शुरू हो गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज अपने कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति भवन में वर्चुअल माध्यम से विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्र के विकास और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के बारे में बात की।
6: इन 4 वर्षों में समावेशी विकास की सोच के साथ साथ देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व और आत्मगौरव की भावना को नई ऊर्जा मिली है। एक खुशी की बात है कि पिछले वर्ष ऐसे अनेक कार्य किए गए हैं जिनमें भारतीयता की भावना का विस्तार हुआ और हमने औपनिवेशिक मानसिकता के अवशोष को खत्म करने की और ठोस कदम उठाए हैं। विकास और जनसेवा की ये यात्रा निरंतर आगे बढ़े।

0: रहेगी तथा हम सब नए संकल्प और उत्साह के साथ अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर रहेंगे।
1: राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन के बच्चों के लिए बचपन बाल परिसर का भी उद्घाटन किया। इस पहल में किलकारी क्षेत्र और समर्थ आंगनवाड़ी सहपालन शामिल हैं। इस अवसर पर उन्होंने बाल परिसर में बच्चों से बातचीत भी की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज भारतीय तटरक्षक बल ICG कर्मियों और उनके परिवारों के लिए दो महत्वपूर्ण नीतिगत सुधारों की जानकारी दी। इन नीतिगत सुधारों का उद्देश्य अधिकारियों की भर्ती और सेवा शर्तों में स्त्री पुरुष समानता को बढ़ावा देना है। झारखंड सरकार की नई दिशा नई पहल नक्सल विरोधी अभियान के तहत आज बड़ी सफलता मिली। कोल्हान और लातेहार क्षेत्र में सक्रिय 16 माओवादियों ने रांची में झारखंड पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने वालों में एक रीजनल कमांडर, 3 जोनल कमांडर, 3 सब जोनल कमांडर, 6 एरिया कमांडर और 3 काडर सदस्य शामिल हैं। इनमें 15 लाख रुपए का इनामी रीजनल कमांडर संतोष वासुदेव भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के सांसदों से मुलाकात की और राज्य के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट पर यह जानकारी साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार प्रभावित लोगों की सहायता के लिए असम सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। ओडिशा में मूसलाधार बारिश जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में बने हवा के गहरे दबाव के कारण राज्य में तेज वर्षा हो रही है और बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
2: मौसम विभाग ने अगले महीने की 2 तारीख तक पूरे राज्य में व्यापक बारिश और कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया है। बालेश्वर, भद्रक, मयूरभंज, केंदुझर और संबलपुर जिलों में आज सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रखे गए हैं। बालेश्वर शहर में पिछले 24 घंटे के दौरान लगातार बारिश के कारण सियासी इलाकों में पानी भर गया और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। जलका नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि कांसाबंसा और गमई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से भद्रक जिले में बाढ़ की नई लहर आ गई है। राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को 24 घंटा सतर्क रहने का निर्देश दिया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में आज अत्यधिक बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिणी जापान में आज एक शक्तिशाली भूकंप आया है। जापान की मौसम एजेंसी ने बताया है कि आज दोपहर कुमामोटो प्रांत में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया। एजेंसी ने अरिया के सागर और यासुशिरो सागर के तटों के लिए सुनामी की चेतावनी भी जारी की है। क्योशु रेलवे कंपनी ने कहा कि भूकंप के बाद क्योशु शिंकानसेन सहित सभी रेल सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। भारत के पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉर्टपुट F57 में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वर्ण पदक जीतने पर शर्मिला धनखड़ को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने 18 वर्ष से कम उम्र और बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया। राज्यसभा की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू। एयर इंडिया ने अमृतसर हवाई अड्डे पर इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल शुरू किया है। झारखंड में 6 शीर्ष कमांडर सहित 16 माओवादियों का आत्मसमर्पण। सरकार ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध के मामलों में E0 FIR दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुहाने तराने।
4: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपकी वाणी आकाशवाणी और अब प्रस्तुत है आप सबका प्रिय कार्यक्रम सुहाने तराने, ओल्ड इज गोल्ड। संगीत की सुरमई दुनिया में मैं स्नेहा करती हूँ आप सबका हार्दिक स्वागत। और आज की इस खूबसूरत संगीतमय यात्रा में हम लेकर आए हैं

ऐसे गीत, ऐसी धुनें जो आपके मन को सुकून देंगी और आपके दिन को और भी सुरीला बना देंगी। तो आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के मधुर गीतों के साथ। और आज इस कार्यक्रम में पहला गीत हम ले रहे हैं फिल्म कटी पतंग से। फिल्म कटी पतंग का ये अमर गीत है ये श्याम मस्तानी। ये गीत किशोर कुमार ने गाया है, संगीत दिया है आरडी बर्मन ने और बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने। राजेश खन्ना और आशा पारेख पर फिल्माया गया ये गीत हिंदी सिनेमा के सबसे यादगार रोमांटिक गीतों में गिना जाता है। इसकी धुन इतनी सहज और मधुर है कि सुनते ही मन एक ठहरी हुई सुहानी शाम में पहुंच जाता है। ये शाम मस्तानी की खूबसूरती इसकी सरलता में है, न ज्यादा शोर न दिखावा, बस एक मीठा सा एहसास। किशोर कुमार की आवाज में जो अपनापन है वो इस गीत को सिर्फ सुनने का नहीं महसूस करने का अनुभव बना देता है। तो श्रोताओं, अब पेश है फिल्म कटी पतंग का ये सदाबहार गीत ये शाम मस्तानी। सुनिए और अपने दिन को और भी खूबसूरत बनाइए।

कार्यक्रम सुहाने तराने का संगीतमय सफर जारी है और हम लेकर आए हैं एक ऐसा सदाबहार गीत जो प्रेम, इंतजार और मीठी सी तड़प से भरा है। आजा आई बहार, दिल है बेकरार। ये गीत फिल्म राजकुमार का है और इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है लता मंगेशकर की कोमल आवाज, शंकर जयकिशन की मधुर धुन और शैलेंद्र के दिल को छू लेने वाले बोल। कहते हैं कुछ गीत सिर्फ सुने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। जब इस गीत में ओ मेरे राजकुमार तेरे बिन रहा न जाए आता है तो लगता है जैसे किसी इंतजार की कहानी आंखों के सामने चली आ रही है। तो आइए इस सुनहरी धुन के साथ अपने मन को भी बहार की तरह महका दीजिए और सुनिए ये प्यार, मिठास और यादों से भरा सदाबहार गीत।

और अब इस कार्यक्रम का अगला गीत जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वो रोमांस, मिठास और संगीत की खूबसूरती से भरा हुआ है। फिल्म धर्मात्मा का मशहूर गीत तेरे चेहरे में वो जादू है, ये गीत 1975 में आई फिल्म धर्मात्मा का है। इस गीत को अपनी जादुई आवाज में गाया है किशोर कुमार ने। इसका संगीत कल्याण जी आनंद जी ने तैयार किया है और इसके बोल लिखे हैं इंदीवर ने। ये गीत सुनते ही मन में एक अलग सी मिठास घुल जाती है। इसमें प्रेम की कोमलता है, आकर्षण की गहराई है और किशोर दा की आवाज में वो जादू है जो सीधे दिल तक पहुंचता है। गीत में जिस तरह प्रियतम की खूबसूरती और उसके चेहरे की मोहकता का वर्णन किया गया है वो इसे एक अमर रोमांटिक गीत बनाता है। इस गीत की पिक्चराइजेशन भी बहुत खास मानी जाती है। इसे खूबसूरत और खुली लोकेशनों पर फिल्माया गया जिससे गीत में एक अलग ही भव्यता आ गई। फिरोज खान ने इस गाने को बहुत सादगी और स्टाइल के साथ पेश किया ताकि रोमांस का असर और गहरा हो जाए। कहा जाता है कि किशोर कुमार की गायकी ने इस गीत को ऐसा जादू दिया कि आज भी सुनने वालों के दिल में बस जाता है। तो अब आपकी बारी है श्रोताओं इस गीत में खो जाने के लिए, तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

और अब आप सुनेंगे एक ऐसा सदाबहार गीत जिसने मोहब्बत की मासूमियत, इंतजार और रूठने मनाने की मिठास को बेहद खूबसूरती से आवाज दी। फिल्म जॉनी मेरा नाम का गीत पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले झूठा ही सही। ये गीत फिल्म जॉनी मेरा नाम का है जिसका संगीत कल्याण जी आनंद जी ने दिया था, बोल इंदीवर के थे और इसे स्वर दिया था किशोर कुमार ने। इस गीत की एक खास बात इसकी शरारती, दिलकश और थोड़ी सी बेकरार लय है। देवानंद और हेमा मालिनी पर फिल्माए गए इस गीत में प्रेम की एक ऐसी छवि है जो आज भी सुनने वालों के दिल में उतर जाती है। ये गाना फिल्म का यादगार हिस्सा बना और समय के साथ एक क्लासिक रोमांटिक गीत के रूप में स्थापित हो गया। तो आइए सुनते हैं ये मधुर नगमा और खो जाते हैं पुराने जमाने की उस मोहक दुनिया में जहाँ गानों में इश्क भी था, अदब भी था और दिल की सच्चाई भी।

कार्यक्रम का अगला गाना हम ले रहे हैं फिल्म अजनबी से हम दोनों दो प्रेमी। फिल्म अजनबी 1974 की एक रोमांटिक डुएट है। इसे किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने गाया, संगीत आड़ी बर्मन का है और बोल आनंद बख्शी ने लिखे हैं। ये गाना फिल्म के ट्रैक में ट्रेन सीक्वेंस के साथ जुड़ा हुआ है और इसकी विजुअल में यात्रा रेल का दृश्य महत्वपूर्ण है। तो आइए सुनते हैं सुहाने तराने का ये अंतिम गीत।

ಸಂಪರ್ಕ ಮಗಲಿದೆ.

0: तो अब इसी के साथ कार्यक्रम सुहाने तराने का सफर यहीं समाप्त करते हुए मैं आपकी रेडियो दोस्त स्नेहा लेती हूँ आप सब से इजाजत। नमस्कार।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाने तराने, प्रस्तुति स्नेहा सिंह की थी। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़, डीटीएच, डीआरएम वेव्स, ओटीटी और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अपराह्न के ठीक 3 बजे हैं। आज की हमारी पहली सभा अब संपन्न होती है। शाम 5 बजे अपनी दूसरी सभा के कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 241.5 चार मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR DTH DRM 1233 किलो हर्ट्स और वेव्स OTT पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 5 बजे हैं, आरंभ होती है हमारी सांध्यकालीन सभा। सभा के आरंभ में धरती के गीत कार्यक्रम के अंतर्गत आइए सुनते हैं छत्तीसगढ़ी गीत। कलाकार हैं ध्रुवाराम मकराम और दुखिया भाई।

श्रोताओं, आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र और सुन रहे हैं कार्यक्रम धरती के गीत। इस कार्यक्रम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ी गीत, कलाकार हैं ध्रुवा राम मकराम और दुखिया बाई।

खोपा में झूला थवरे समके जाली हा। इसनो पाउडर लगाए मुंह में लाली ला, खोपा में झूला थवरे।

ध्रुवाराम मकराम और दुखियाबाई के गाए इस गीत के साथ ही आज का धरती के गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है युवा दोस्तों का प्रोग्राम युवावाणी।

0: भर की भागदौड़ और व्यस्त दिनचर्या के बाद अगर शाम में कुछ सुकून भरी बातें, कुछ नई जानकारी और अपनेपन का साथ मिल जाए तो शाम और भी खुशनुमा हो जाती है। और आपकी शाम को और खूबसूरत बनाने के लिए हम हाजिर हैं आपका अपना फेवरेट कार्यक्रम युवाड़ी लेकर।
1: जी हाँ दोस्तों, जहाँ होगी युवाओं से जुड़ी काम की बातें, कुछ गाने और इसी के साथ साथ पूरे कार्यक्रम में हम आपको ढेर सारी जानकारियाँ देंगे। इसी के साथ जान लीजिए आज आपके रेडियो साथी कौन है।
0: तो मैं हूँ मोनिशा
1: और मैं हूँ अभिषेक।
0: तो स्वीकार करिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत अगर बेहतरीन गाने से हो तो क्या ही बात हो। चलिए, आज का पहला गाना आपके नाम।
2: Yeah.

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: कैसे?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
8: सुनो ना।
9: हाँ?
8: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
9: तो रोका किसने है? हाँ?
8: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
9: मुझसे।
8: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
9: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
8: पर उससे मेरा क्या फायदा?
9: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
8: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
9: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो,
6: 0542227658।
8: ओ
7: 0542227658।
8: लो अभी फोन लगाता हूँ।
7: 0542227658।
10: स्वास्थ्य फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम में आप स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निदान पाते हैं बस एक फोन कॉल के जरिए। इस बार दिनांक 2/8/2026 को नेत्र संबंधी विकार और निकट दृष्टि दोष की समस्या पर जानकारी दी जाएगी। फोन कर सकते हैं आप हमें 222-1052 पर। वाराणसी का STD कोड है 0542 और इस बार हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ होंगे नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण कुमार गुप्ता और कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग का समय दिनांक 30/7/2026 गुरुवार को प्रातः 10 बजे से 11 बजे के बीच। तो भूले नहीं, हमें फोन जरूर करें और सुनते रहें कार्यक्रम आरोग्यम के साथ आकाशवाणी वाराणसी।
11: दोस्तों जरा सोचिए, अगर आपके शरीर का सबसे मेहनती अंग बिना शोर किए धीरे धीरे बीमार होता रहे तो क्या आपको पता चलेगा? शायद नहीं।
12: और यही वजह है कि आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे बीमारी की जिसे अक्सर साइलेंट डिजीज यानी मौन रोग भी कहा जाता है, जिसका नाम है हेपेटाइटिस। और हर साल 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है ताकि लोग इस बीमारी के प्रति जागरूक हों और समय रहते इससे बचाव कर सकें।
11: दोस्तों हेपेटाइटिस का

0: अर्थ है लीवर में सूजन। यह वायरस शराब के अत्यधिक सेवन, कुछ दवाओं या अन्य कारणों से भी हो सकता है। हेपेटाइटिस के कई प्रकार हैं, जैसे ए, बी, सी, डी और ई। इनमें विशेष रूप से हेपेटाइटिस बी और सी लंबे समय तक शरीर में रहकर लीवर सिरोसिस और लीवर कैंसर जैसी गंभीर समस्याओं का कारण बन सकते हैं।
1: जी, लेकिन अच्छी बात यह है कि समय रहते जांच और उपचार से इन गंभीर स्थितियों से बचा जा सकता है। अक्सर शुरुआत में हेपेटाइटिस के कई लक्षण दिखाई नहीं देते, लेकिन कुछ लोगों को में थकान, भूख कम लगना, मतली, पेट में दर्द, बुखार और इसी के साथ साथ आँखों में दर्द और शरीर का पीला पड़ना, यानी जिसे पीलिया भी कहते हैं, ऐसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। यदि ऐसे लक्षण आप में भी दिखाई दे रहे हैं तो फटाक से जाएं और डॉक्टर को दिखाएं।
0: दोस्तों, हेपेटाइटिस बी और सी संक्रमित रक्त, असुरक्षित सुई, बिना जांच गया रक्त चढ़ाने जाने पर या असुरक्षित यौन संबंधों के माध्यम से फैल सकते हैं। वहीं हेपेटाइटिस ए और ई दूषित भोजन और पानी से फैलते हैं, यानी थोड़ी सी सावधानी आपको बड़े परेशानी से बचा सकती है।
1: दोस्तों, हेपेटाइटिस से बचाव मुश्किल नहीं है, बस रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ छोटी छोटी लेकिन बेहद असरदार आदतों को अपनाने की ज़रूरत है। सबसे पहले हेपेटाइटिस बी का टीका ज़रूर लगवाएं, क्योंकि ये इस बीमारी से सबसे प्रभावी बचाव तरीका है। हमेशा साफ और सुरक्षित भोजन तथा स्वच्छ पानी का भी सेवन करें।
0: बिल्कुल, यदि इंजेक्शन लगवाना भी हो या टैटू बनवाना हो तो यह सुनिश्चित करें कि नई और पूरी तरह सही सुई का इस्तेमाल हो। कभी भी बिना जांचा गया रक्त ना चढ़वाएं। और यदि आपको हेपेटाइटिस संक्रमण का ज़रा भी संदेश हो तो लापरवाही ना करें, समय पर जांच करवाएं और डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें।
1: बिल्कुल दोस्तों, और थोड़ी सी सावधानी रखने से, समय पर जांच कराने से लीवर को लंबे समय तक स्वस्थ रखा जा सकता है। इसीलिए याद रखिए, हेपेटाइटिस से डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि समय रहते पहचानने, समझने और रोकने की ज़रूरत है।
0: और विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2026 का संदेश भी यही है, लेट्स ब्रेक इट डाउन, यानी आइए हेपेटाइटिस से जुड़ी गलतफहमियों, डर और जागरूकता की कमी की दीवार को मिलकर तोड़े, क्योंकि सही जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।
1: तो दोस्तों, इस विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर खुद से एक वादा ज़रूर करें, अपने लीवर की सुरक्षा करेंगे, नियमित स्वास्थ्य जांच कराएंगे और अपने परिवार तथा समाज को भी हेपेटाइटिस के प्रति जागरूक करेंगे।

0: दोस्तों, जरा अपनी आंखों को एक पल के लिए बंद कीजिए और सोचिए, अगर एक सुबह आपकी नींद खुले और ना चिड़ियों की चहचहाट सुनाई दे, ना पेड़ों की सरसराहट, ना ठंडी हवा का एहसास हो, नदियाँ सूख जाए, जंगल खामोश हो जाए और चारों ओर सिर्फ धुआं और धूल नजर आए, क्या ऐसी दुनिया में जीने की कल्पना भी की जा सकती है?
1: शायद नहीं, क्योंकि प्रकृति सिर्फ हमारे आसपास नहीं है बल्कि हमारे भीतर भी है। हमारी हर सांस, बूंद का पानी, निवाला कहीं ना कहीं प्रकृति से जुड़ा ही तो है, क्यों मोनिशा?
0: बिल्कुल दोस्तों, आज 28 जुलाई है और पूरी दुनिया विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस यानी वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे मना रही है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि अगर प्रकृति सुरक्षित है तो हमारा वर्तमान भी सुरक्षित है और हमारा भविष्य भी।
1: जरा सोचिए, जिस पेड़ की छांव में हम ढूंढते हैं, धूप जब होती है तो हम पेड़ की कहीं ना कहीं छांव ढूंढते, क्यों मनीषा?
0: सुकून ढूंढते हैं। बिल्कुल
1: बिल्कुल, इसी के साथ साथ पेड़ हमें ऑक्सीजन भी देता ही है। जिस नदी का पानी हमारी प्यास बुझाता है, वो हमारी सभ्यता की भी पहचान है। और जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह थोड़ी है, वो जीव जंतुओं का घर भी तो है और हमारी धरती के फेफड़े भी हैं।
0: बिल्कुल तुमने सही कहा। लेकिन दोस्तों, क्या हम प्रकृति के साथ वैसा व्यवहार कर रहे हैं जैसा वो हमारे साथ करता है? लगातार बढ़ता प्रदूषण, तेजी से कटते जंगल, प्लास्टिक का बढ़ता इस्तेमाल, दूषित होती नदियाँ और बदलता मौसम, ये सब हमें एक ही बात का संकेत दे रहे हैं कि अब संभलने का समय आ गया है।
1: आज कभी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ती है तो अचानक से बाढ़ आ जाती है, कहीं सूखा है तो कहीं बिना अनियमित बारिश ही बारिश हुई जा रही है। तो ये सिर्फ मौसम का उतरना चढ़ाव नहीं बल्कि प्रकृति हमें चेतावनी दे रही है।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने। देखो, आज ही सुबह धूप था, अभी बारिश, फिर धूप, तो मौसम कब बदल रहा है इसको हम कुछ कह नहीं सकते।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन अच्छी बात यह है कि बदलाव की शुरुआत किसी बड़ी योजना से नहीं बल्कि हमारी छोटी छोटी आदतों से होती है। जैसे अगर हर व्यक्ति साल में सिर्फ एक पौधा लगाए और उसकी देखभाल करे, अगर हम प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें, पानी और बिजली की बचत करें, अपने आसपास सफाई रखें और दूसरों को भी पर्यावरण के प्रति जागरूक करें, तो यकीनन मानिए दोस्तों, एक छोटा सा कदम बड़ा बदलाव ला सकता है।
1: दोस्तों, तो इसी के साथ आइए हम एक प्रण लेते हैं कि प्रकृति को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें प्रकृति की ज़रूरत है। इस बात को याद रखिए और इसी के साथ साथ हम प्रकृति की रक्षा करेंगे, इसका हम दृढ़ निश्चय करते हैं।

0: वाली हूँ जहाँ पहुंचकर लोग सबसे पहले कहते हैं कि
1: अरे ये कैसे हो सकता है?
0: जरा कल्पना कीजिए, अगर मैं कहूँ कि एक ऐसी झील है जहाँ आपको तैरना नहीं आता, फिर भी आप डूबेंगे नहीं, बल्कि आराम से पानी पर लेटकर अखबार पढ़ सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं, सेल्फी ले सकते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे?
1: सुनने में जादू सा लगता है ना, लेकिन ये जादू नहीं, विज्ञान है। आज की हमारी मंजिल है डेड सी।
0: बिल्कुल, अब नाम सुनते ही दिमाग में थोड़ा डर तो आता ही होगा, डेड सी यानी मृत सागर। लेकिन घबराइए मत, यहाँ ना कोई डरावनी कहानी है और ना ही कोई रहस्य जो लोगों को गायब कर देता है।
1: असल वजह कुछ और है। इस पानी में नमक इतना ज्यादा है कि मछलियों और ज्यादातर जलीय

0: कितना ज़्यादा है कि मछलियों और ज़्यादातर जलीय जीव इसमें जीवित नहीं रह पाते, इसीलिए इसका नाम है डेड सी। और मज़े की बात यह है कि नाम में ही सी यानी समुद्र है, लेकिन असल में यह एक झील है।
1: अरे वाह, ये तो बहुत ही रोचक जानकारी तुमने दी। अब सवाल ये है कि आखिर इसमें ऐसा क्या है कि इंसान डूबता नहीं है?
0: तो जनाब, इसका पूरा खेल है नमक।
1: जहाँ सामान्य समुद्र के पानी में लगभग 3.5% नमक होता है, वहीं डेड सी में करीब 34% नमक पाया जाता है, यानी लगभग 10 गुना ज़्यादा।
0: और यही अतिरिक्त नमक पानी को इतना घना बना देता है कि आपका शरीर अपने आप ऊपर आ जाता है। यहाँ तैरने से ज्यादा मुश्किल काम है पानी में अंदर जाना।
1: यही वजह है कि दुनिया भर से लोग यहाँ सिर्फ एक तस्वीर खिंचवाने आते हैं, पानी पर आराम से लेटकर अखबार पढ़ते हुए।
0: अगर आपने कभी सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीर देखी है कि कोई व्यक्ति पानी के ऊपर बैठ के फोटो खिंचवा रहा है, तो आश्चर्य मत होइएगा।
1: ये तस्वीर बिल्कुल असली है, लेकिन जरा ठहरिए, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ खतरा नहीं है। अगर कोई उल्टा गिर जाए, घबरा जाए या पानी आंखों या मुंह में चला जाए तो परेशानी भी हो सकती है, इसलिए यहाँ भी सुरक्षित नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है।
0: और अब एक ऐसा मजेदार तथ्य है जिसे सुनकर शायद आप भी मुस्कुरा ही देंगे।
1: दुनिया में लोग कीचड़ से बचते हैं, लेकिन डेड सी में लोग पैसे देकर कीचड़ लगवाते हैं। यहाँ का काला खनिज युक्त कीचड़ मैग्नीशियम, पोटेशियम और कई दूसरे मिनरल से भरपूर माना जाता है। यही वजह है कि इससे बने फेस पैक, साबुन और स्किन केयर प्रोडक्ट्स दुनिया भर में मशहूर है।
0: और सुनिए, डेड सी धरती में सबसे निचले प्राकृतिक स्थानों में से एक है। इसकी सतह समुद्र तल से लगभग 430 मीटर नीचे है, यानी वहाँ खड़े होकर आप पृथ्वी से सबसे नीचे बसे प्राकृतिक इलाकों में से एक अनुभव कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, इतिहास के शौकीनों के लिए भी यह जगह किसी खजाने से कम नहीं है। यहीं आसपास की गुफाओं में मिली थी दुनिया की प्रसिद्ध डेड सी स्क्रॉल्स, हजारों साल पुरानी पांडुलिपियां जिन्होंने इतिहास और सभ्यता को समझने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी।
0: लेकिन दोस्तों, इस कहानी का एक दुखद पहलू भी है।
1: जिस डेड सी को देखने हर साल लाखों लोग आते हैं, वहाँ धीरे धीरे वो सिकुड़ रही है। वैज्ञानिकों के अनुसार आसपास की नदियों का पानी दूसरी जगह मोड़े जाने और बढ़ते जल उपयोग की वजह से इसका जल स्तर लगातार कम हो रहा है। कई इलाकों में जमीन धंसने लगी है और बड़े बड़े सिंक होल बन चुके हैं।
0: यानी अगर हमने प्रकृति का सम्मान और संरक्षण नहीं किया, तो आने वाली पीढ़ियों शायद इस अनोखी प्राकृतिक अजूबे को सिर्फ तस्वीर में ही देख पाएगा या किताबों में देख पाएगा, हकीकत में नहीं।
1: बिल्कुल, तो दोस्तों, डेड सी हमें सिर्फ हैरान नहीं करती, ये हमें विज्ञान का कमाल भी दिखाती है और प्रकृति की अहमियत की समझ भी सिखाती है।
0: वैसे तो ये थोड़ी डेड सी की बात, अब आपसे एक सवाल भी कर ही लेते हैं, क्यों मनीषा?
1: बिल्कुल, अगर आपको दुनिया के किसी भी अनोखी जगह पर घूमने का मौका मिले तो वो कौन सा प्लेस होगा? जरा सोचिएगा और अपने जवाब के बारे में भी हमें जरूर बताइएगा। तब तक आनंद लीजिए इस गीत का।

0: दोस्तों तो चलिए अब जरा अपने ज्ञान के पिटारे का ताला खोल लीजिए, क्योंकि अब वक्त है उसमें कुछ नए और काम के शब्दों को जोड़ने का।
1: बिल्कुल, क्योंकि शब्द सिर्फ हमारी भाषा नहीं बढ़ाते बल्कि हमारी सोच और व्यक्तित्व को भी निखारते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के हिंदी के शब्द का। आज का हमारा हिंदी का शब्द है संवेदनशीलता। इसका अर्थ है दूसरों की भावनाओं, सुख दुख और परिस्थितियों को समझना, महसूस करना और उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करना। इसका पर्यायवाची होगा सहृदयता, सहानुभूति, भावुकता और कोमलता। अगर इसका वाक्य प्रयोग करें तो कुछ इस प्रकार कर सकते हैं। एक अच्छे शिक्षक में विद्यार्थियों के प्रति संवेदनशीलता का होना आवश्यक है।
0: और अब बारी है आज के इंग्लिश वर्ड की। तो हमारा आज का शब्द है बॉस्टर्स, जिसकी स्पेलिंग है BOISTERROUS। बॉस्टर्स, इसका अर्थ होता है बहुत शोरगुल करने वाला, ऊर्जावान और मस्ती से भरपूर व्यक्ति। इसकी सिनोनिम्स है नॉइजी, लाउडी और राउडी। सेंटेंस की बात करें तो हम कह सकते हैं द चिल्ड्रन वर बॉस्टर्स ड्यूरिंग द पिकनिक, यानी पिकनिक के दौरान बच्चे खूब शोरगुल और मस्ती कर रहे थे। दोस्तों, बॉस्टर्स होना हमेशा बुरी बात नहीं होती। कभी कभी दोस्तों के साथ खुलकर हंसना, मस्ती करना और ज़िंदगी को पूरे जोश के साथ जीना भी बहुत ज़रूरी है। बस इतना ध्यान रहे कि हमारी मस्ती किसी और के लिए परेशानी ना बन जाए।
1: दोस्तों, और उम्मीद है कि आज के ये दोनों शब्द आपकी शब्दावली में साथ साथ और आपके ज्ञान को बढ़ाए हैं और इसी के साथ साथ आपकी सोच को भी बदलेंगे। इन
0: बिल्कुल
1: शब्दों को सिर्फ याद मत रखिए, आज ही अपने किसी कॉपी में या मोबाइल में भी लिख सकते हैं, क्योंकि आजकल मोबाइल हमारे एकदम पास ही रहता है।
0: और इसको अपने डेली कन्वर्सेशन में भी ज़रूर इस्तेमाल करिए। दोस्तों तो चलिए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि इतिहास में आज क्या कुछ खास रहा। तो चलिए बताते हैं आपको कि आज के इतिहास में कौन सी खास घटना है दर्ज है।
1: बिल्कुल, 1821 में आज ही के दिन पेरू के लगभग 300 वर्ष के स्पेनिश शासन ने आज़ादी की घोषणा की थी। स्वतंत्रता सेनानी होसो दे सैन मार्टिन ने लीमा के में स्वतंत्रता की घोषणा की थी। यही वजह है कि 28 जुलाई को आज भी पेरू अपना स्वतंत्रता दिवस बड़े उत्साह के और गर्व के साथ मनाता है।
0: दोस्तों, आज ही के दिन 1866 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने मैट्रिक सिस्टम को कानूनी मान्यता दी। इस फैसले ने विज्ञान, उद्योग और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में माप तौल की एक समान और विश्वसनीय प्रणाली को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: और 1979 में आज ही के दिन चौधरी चरण सिंह ने भारत के 5वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की थी। वे किसानों के हितों की मजबूती से आवाज उठाने वाले नेताओं में गिने जाते हैं।
0: तो दोस्तों, ये थी 28 जुलाई से जुड़ी इतिहास की कुछ खास घटनाएं। इतिहास हमें सिर्फ बीते कल की कहानी नहीं सुनाता बल्कि वर्तमान को समझने और भविष्य को बेहतर बनाने की प्रेरणा भी देता है। वैसे अभिषेक, क्यों ना हमारे दोस्तों के सब्र का इम्तिहान लेना बंद किया जाए और उनको बताया जाए कल के विनर्स और आज के क्वेश्चन को।
1: ठीक है, बता ही देते हैं। उससे पहले हमने कल उनसे जो प्रश्न पूछे थे उसे दोहरा लेते हैं।
0: बिल्कुल, और उसका सही जवाब भी बताना बहुत ज़रूरी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो कल हमने आपसे पूछा था कि सारनाथ किस राज्य में स्थित है, और इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। और इसका सही

0: जवाब देकर विजेता बने हैं चंदा चंदौली से, दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा और शिवांश वर्मा पेपरलो सरगांव छत्तीसगढ़ से।
1: इसके साथ ही ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा एमपी से है दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई और बाबू दिव्यांश नागपुरे। सुहाना चौक ग्राम जसवाड़ी से हैं सूरज कुमार ढाक से, ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से है प्रेमलाल वर्मा और ममता बाई वर्मा। रिंग रोड नर्मदा नगर से हैं सूरज वर्मा, ऋषभ, कनक और भावना वर्मा। नेपा नगर से है प्रभुदयाल शिवदे, शिवा बसंती बाई और गणेश शिवदे। खंडवा से है श्यामाबाई रायकवर। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब बारी है आज के प्रश्न की, तो आज का प्रश्न बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। हमारा प्रश्न है कि हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होकर भारत का 45वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना है। प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए, हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होकर भारत का 45वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना है।
0: दोस्तों जल्दी से अपने फ़ोन को उठाएं और आंसर लिखकर हमारे यूथ AIR वाराणसी इंस्टाग्राम पर भेजें या हमारे ईमेल ID youth@vnl.gmail.com पर भी भेज सकते हैं।
1: और जब तक आप आंसर भेज रहे हैं तब तक एंजॉय करिए ये गीत।

0: दोस्तों, अब बारी है रोजगार सूचना की। तो चलिए बिना देरी के बताते हैं आपको आज की रोजगार सूचना। दोस्तों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि UPSSC ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर गन्ना पर्यवेक्षक यानी कि केन सुपरवाइजर पदों के लिए भर्ती की अधिसूचना जारी कर दी है।
1: ये भर्ती 1182 पदों के लिए है और इसके उम्मीदवार इसका फॉर्म 27 जुलाई से निकल चुका है और 28 जुलाई यानी आज इसकी लास्ट डेट है। फटाफट जाइए और इस फॉर्म को भरना मत भूलिएगा।
0: बिल्कुल, इसकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष है जबकि अधिकतम आयु की सीमा 1 जुलाई 2026 को 40 वर्ष मान्य होगी।
1: उम्मीदवारों को UPSSC गन्ना पर्यवेक्षक भर्ती 2026 में संबंधित संपूर्ण जानकारी देखने के लिए इसके आधिकारिक वेबसाइट upssc.gov.in पर भी विजिट कर सकते हैं।
0: दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहती हूँ जो शायद इस समय लाखों युवाओं के मन में चल रहा है। पढ़ाई पूरी हो गई है, डिग्री भी मिल गई है, घर वालों ने मिठाई भी बांट दी, लेकिन जैसे ही नौकरी के लिए इंटरव्यू देने पहुंचे, सामने से पहला सवाल आया, आपके पास अनुभव कितना है?
1: अब जरा सोचिए, जिसने अभी अभी पढ़ाई पूरी की है उसके पास अनुभव कहाँ से आएगा। और इसी के साथ साथ नौकरी चाहिए तो अनुभव चाहिए और अनुभव चाहिए तो उससे पहले नौकरी चाहिए।
0: और यही सबसे बड़ी उलझन है, नौकरी चाहिए तो अनुभव तो बिल्कुल ही चाहिए होगा।
1: जी
0: दोस्तों, इसी सवाल का एक महत्वपूर्ण जवाब है राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम योजना यानी नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम यानी कि NAPS।
1: ये सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं बल्कि पढ़ाई और नौकरी के बीच की दूरी को कम करने वाला एक मजबूत पुल भी है।
0: जरा अपने बचपन की तरफ लौटते हैं, याद है जब आपने पहली बार साइकिल चलाना सीखी थी? क्या सिर्फ किताब पढ़कर साइकिल चलाना आ गया था? बिल्कुल नहीं, पहले किसी ने पीछे से पकड़कर संतुलन बनाना सिखाया, फिर धीरे धीरे हाथ छोड़ दिया और देखते ही देखते अब खुद साइकिल चलाना सीख चुके थे।
1: करियर की दुनिया भी कुछ ऐसी ही है। कॉलेज, ITI या संस्था आपको पढ़ाई करवाते हैं लेकिन असली काम करने के लिए उद्योग सिखाता है और यही काम करती है अप्रेंटिसशिप। काम करते करते सीखना, सीखते सीखते काम और कमाते कमाते अपने भविष्य को मजबूत करना।
0: अब जरा एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी के सामने दो उम्मीदवार हैं, दोनों के पास एक जैसी डिग्री है लेकिन एक ने एक इंटर्नशिप कर रखी है और दूसरे के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है।
1: अब आप ही बताइए कंपनी किसे प्राथमिकता देंगे, उस उम्मीदवार को ना जिसने पहले से कार्यस्थल का अनुभव लिया हो, समय की पाबंदी सीखी हो, टीम के साथ काम किया हो और उद्योग में कामकाज की समझ भी हो।
0: बिल्कुल, यही अनुभव आपको भीड़ से अलग पहचान देता है। और सबसे अच्छी बात है कि इंटर्नशिप के दौरान आपको सिर्फ सीखने का अवसर ही नहीं मिलता बल्कि हर महीने स्टाइपेंड भी मिलता है, यानी सीखना भी और कमाना भी।
1: अगर आपने ITI, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग या किसी भी अन्य मान्यता प्राप्त तकनीकी या व्यवसायिक पाठ्यक्रम की पढ़ाई की है तो आपके लिए भी ऐसे अवसर उपलब्ध हो सकते हैं।
0: कई युवा सोचते हैं कि अप्रेंटिसशिप का मतलब छोटी नौकरी करना होगा, लेकिन सच तो ये है कि यही वह दौर है जहां आप बिना बड़े जोखिम के सीखते हैं, अपनी गलतियों से अनुभव हासिल करते हैं और आत्मविश्वास के साथ अपने करियर को मजबूती शुरुआत देते हैं।
1: तो दोस्तों, अगर आप भी पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश में हैं तो सिर्फ अवसर का इंतज़ार ना मत कीजिए, खुद को अवसर के लिए तैयार भी कीजिए। हो सकता है अप्रेंटिसशिप का यही एक कदम आपके करियर की दिशा बदल दे।
0: और अगर आपके घर, परिवार या आसपास

0: कोई ऐसा युवा है जो पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, तो उसे राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना के बारे में ज़रूर बताइए। हो सकता है आपकी दी हुई यह छोटी सी जानकारी उसके जीवन को सबसे बड़ा अवसर बन सकता है।
1: और अब समय का इशारा, हमें घड़ी भी इशारा दे रही है कि कुछ
0: हम आपसे अब विदा लें। लेकिन दोस्तों, जाने से पहले यही कहेंगे कि अपना और अपनों का रखिए ख्याल और जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहिए, और हमें ऐसे ही सुनते रहिए। आज के कार्यक्रम में आपके साथ ही मैं मोनिशा
1: और मैं अभिषेक,
0: तो हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: युवा साथी अभी सुन रहे थे अपना प्रोग्राम युववाणी, आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है।
1: स्वास्थ्य फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम में आप स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निदान पाते हैं बस एक फोन कॉल के जरिए। इस बार दिनांक 2/8/2026 को नेत्र संबंधी विकार और निकट दृष्टि दोष की समस्या पर जानकारी दी जाएगी। फोन कर सकते हैं आप हमें 2221052 पर। वाराणसी का एसटीडी कोड है 0542।
0: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र। स्टूडियो की घड़ी में 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे गोरखपुर केंद्र से प्रसारित भोजपुरी में समाचार।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ है हम वेद प्रकाश पाठक। सर्वोच्च न्यायालय आज नीट मुद्दा पर प्रदर्शन के मामले में गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाले 18 वर्ष से कम उम्र के छात्र प्रदर्शनकारियों के रिहा के लेकर निर्देश दिलस। न्यायालय अधिकारी लोगन के नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हालिया में भयल राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन से जुड़ल इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्षर के सुरक्षित रखलव का निर्देश दिलस। एगो रिपोर्ट।
3: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। प्रदर्शनों के दौरान पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से संबंधित विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कई अंतरिम निर्देश जारी किए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्यवागची और वी मोहना की पीठ ने प्रदर्शन वाले सभी राज्यों को निर्देश दिया कि वे सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन रिकॉर्डिंग कैमरा फुटेज, वायरलेस संचार रिकॉर्ड, पीसीआर लॉग और प्रदर्शनों से संबंधित अन्य डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखें। न्यायालय ने आदेश दिया कि प्रदर्शनकारियों से एकत्र किए गए डिजिटल डेटा को सुरक्षित रखा जाए लेकिन उसे सार्वजनिक न किया जाए। पीठ ने उत्तर प्रदेश सहित 6 राज्यों के मुख्य सचिवों से याचिकाओं में लगाए गए आरोपों पर जवाब भी मांगा। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर दौरा पर पहुंचना है। वहां के बहने गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में गोरखनाथ मंदिर में गुरु पूर्णिमा त्योहार पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा ले।
4: सनातन दर्शन विचार एवं संस्कृति में गुरु शिष्य के रिश्ते को प्रतिष्ठित करने वाला पावन पर्व गुरु पूर्णिमा गोरक्ष पीठ के लिए विशेष होता है। गुरु पूर्णिमा महोत्सव वह अवसर होता है जब गोरक्ष पीठाधीश्वर शिवावतार एवं नाथ पंथ के आदि गुरु महायोगी गोरखनाथ सहित पीठ के अपने पूर्ववर्ती गुरुजन की पूजन स्तुति करते हैं। इसके बाद वह अपने शिष्यों और गोरक्ष पीठ के श्रद्धालुओं को स्नेहाशीष से अभिसंचित करते हैं। गोरक्ष पीठ की इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए वर्तमान पीठाधीश्वर और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल गुरु पूर्णिमा पर्व पर शिष्य और गुरु दोनों भूमिकाओं में दिखाई देंगे। जीएन चौबे, आकाशवाणी समाचार, गोरखपुर।
2: मुख्यमंत्री आज गोरखपुर दौरा के पहल का दिन सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में शामिल भइल हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज वाराणसी में आयोजित महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के दीक्षांत समारोह में शामिल भइलिन। वहां के कई गो पाठ्यक्रम में

0: स्वर्ण पदक देने। ए मौका पर अपने संबोधन में राज्यपाल विद्यार्थियों से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान देवे, नैतिक मूल्यों के जिंदगी में अपनावे, आ समाज के प्रति अपने जिम्मेदारी के निभावे को आह्वान कैलिन। राज्यपाल ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV से बचाव के टीकाकरण अभियान के तहत 14 से 15 वर्ष के उम्र तक के बालिकन के टीकाकरण को प्रमाण पत्र देलिन। शासन भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का तबादला कर दिया हो। एमे गोरखपुर का अपर पुलिस महानिदेशक ADG जोन पद से प्रमोट भइल मुथा अशोक जैन के अग्निशमन आपात सेवा विभाग को पुलिस महानिदेशक बनावल गए बा। वरिष्ठ IPS अधिकारी राम कुमार अब गोरखपुर को नया ADG जोन हुई है। वाराणसी जोन को ADG पीयूष मोदिया प्रयागराज को नया पुलिस कमिश्नर बनावल गए हैं। वहीं वरिष्ठ IPS अधिकारी नवीन अरोरा अब वाराणसी जोन को नया ADG हुई है। केंद्र सरकार 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध के मामले में E0 FIR दर्ज कैले का इंतजाम शुरू कैले हो।
1: केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को साइबर अपराध के मामलों, खासकर साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में E0 FIR दर्ज करने के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल और हेल्पलाइन 1930 के जरिए मामले दर्ज किए जाते हैं। इससे अपने आप में E0 FIR दर्ज हो जाएगी। इसके बाद इसे तुरंत संबंधित इलाके के साइबर अपराध पुलिस स्टेशन को भेज दिया जाएगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: केंद्र सरकार सोशल मीडिया पर चली रहल ओ खबर का खंडन कैले हो, जेमे दावा कैल गेल बा कि सरकार अगला महीना के 25 तारीख के रात से भारत में इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाई। समाचार पूरा भइल, नमस्कार।
2: मीडियम वेव 241.5 चैनल मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रम। आज रात 8 बजे संसद समीक्षा हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात 10 बजे खेल दर्पण कार्यक्रम हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। शाम 6:30 पर कृषि जगत कार्यक्रम में मछलियों की उचित देखभाल कैसे करें, इस विषय पर डॉक्टर वामदेव पांडे और सुधीर कुमार श्रीवास्तव की बातचीत के अलावा सुनिएगा मोहन सिंह यादव और साथियों का गाया लोकगीत। गैर फिल्मी गीत एवं गजलों का प्रोग्राम अंजुमन का प्रसारण होगा रात 9:30 पर। रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत सुनेगा पंडित ऋत्विक सान्याल का ध्रुपद गायन। फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं शाम 6:10 पर, शाम 7 बजे 7:31 पर रसरंग और रात 8:15 पर रसमाधुरी कार्यक्रम के अंतर्गत। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण। आइए अब हम आपको जानकारी दे दें, कल यानी 29 जुलाई सन 2026 को हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। कल रात 8 बजे संसद समीक्षा और रात 10 बजे संसद में प्रश्नकाल की रिकॉर्डिंग का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। प्रातः 6:05 पर खेती की बातें कार्यक्रम में अमरूद का बाग लगाएं विषय पर जानकारी देंगे दिनेश कुमार सिंह। भक्ति संगीत आप सुनते हैं कार्यक्रम आराधना के अंतर्गत प्रातः 6:10 पर। प्रातः 6:35 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में जल जनित रोग कारण और समाधान विषय पर लीजिएगा जानकारी, विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर राजेश जैन। श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ आप सुनते हैं प्रातः 6:40 पर।

गुड मॉर्निंग बनारस। इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा सुबह 7 बजे। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत सुबह 7:31 पर और दिन में 12:45 पर सुनेगा डॉक्टर शुभांकर दे का गायन। आप अपनी पसंद के गाने सुन सकते हैं व्हाट्सएप पर आधारित प्रोग्राम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस में दिन में 11 बजे। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम का प्रसारण होगा दिन में 12 बजे। दिन में 12:30 पर सुगम संगीत कार्यक्रम के कलाकार होंगे युगल किशोर सिंह। गृहलक्ष्मी कार्यक्रम का प्रसारण होगा दिन में 1:15 पर। युवा साथियों का प्रोग्राम युववाणी का प्रसारण होगा रोज की तरह शाम 5:15 पर। शाम 6:30 पर कृषि जगत कार्यक्रम में अनुभव खेती में विषय पर कृष्ण कुमार यादव और सतीश कुमार यादव की बातचीत के अलावा सुनिएगा नंदलाल यादव और साथियों का गाया लोकगीत। इन्हीं के गाए लोकगीत आप सुन सकते हैं सुबह 9:50 पर और दिन में 1:45 पर। शाम 7 बजे अंग्रेजी कार्यक्रम में डॉक्टर सुप्रिया सिंह की वार्ता का प्रसारण होगा। विषय होगा द लिटरेसी लेगेंसी ऑफ मुंशी प्रेमचंद। गैर फिल्मी गीत एवं गजलों का प्रोग्राम अंजुमन का प्रसारण होगा रात 9:30 पर। तो ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शीर्ष और कल के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत, लेकिन इस छोटे से अंतराल के बाद।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए
2: 0542227658।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें
3: 0542227658।
4: कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं हिमेश रेशमिया की आवाज में फिल्म अफसाना का गीत। क्षमा करें, फिल्म है आपकी खातिर। गीतकार हैं समीर और संगीतकार हिमेश रेशमिया।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म अब बस से, आवाज़ कुणाल गांजावाला की है, गीतकार हैं समीर और संगीतकार डब्बू मलिक।

0: श्रोताओं, गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त तो होता है। मीडियम वेव 241.54 यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 6:20 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित संस्कृत में समाचार।
1: आकाशवाणी।

0: राम
1: राम।
0: राम।
1: और
0: भैया
1: ओ नंदू भैया,
0: भैया कुल बढ़िया। भैया अपन बताओ। मैं
1: भैया कुल ठीक है? ये बतावा कि रोपनी उपनी कैला? हम तो धीरे धीरे निबू की गैल हैं अब।
0: ए भैया हो देखा हमहूँ जोन है यही में निबुक गईली।
1: अच्छा
0: भगवान भी झापू करत रहना तनी तनी। आ
1: अच्छा
0: साथे भई देखा पंपी सेट के पानी भी मिल गल बगल से।
1: अच्छा
0: आ वही से भई हमार काम हो गल है।
1: देखा भैया, यह कुल हन हो कि अगर
0: समय से हाँ कर ले।
1: पंपिंग सेट बा और नहर के किनारे अगर खेत बा तो काम बड़ा सुलभ हो जाला हो।
0: भैया देखा हो का कि मान ला अगर ना ये सुविधा हो तब तो पंपी सेट बा कहीं अगले बगले दूरे भी तनी तो पाइप से भी अपन पंच लोग किसान भाई लोग ये काम कर लेते हुआ। बस
1: हाँ
0: यह कि तनी सी लगे के पड़ी।
1: देखा भैया, केहू भैया के अगर हुआ तो उनसे सहयोग लेला, उनसे पूछ ला कि भैया तू अपन रोप लेला तो हमहू को भैया एक आध दिन दे दे पानी ताकि हमरो भाई कुछ खाए चबाए भर रोपा जाओ।
0: बिल्कुल बिल्कुल भैया। देखा सबले बड़ चीज़ ई है कि अपन अगर तंदुरुस्ती है स्वास्थ्य है तो एक के बचाए के संभाल के रखे हजार नियामत है समझ ला तंदुरुस्ती।
1: एकदम सही कला नंदू भैया कि जान है तो जहान है। तो ऐसे स्वास्थ्य पर भैया अपने
0: बहुत
1: कुल
0: ध्यान
1: मनई लोग के ध्यान दे उची, खास करके सब पंचो लोग भैया से हम कहब कि भैया देखा स्वास्थ्य रही तब कोनो काम आगे बढ़ी।
0: भैया हो का कि देखा आपन जोन काम है खेती किसानी एम्मा यह कि अगर शरीर सही से साथ देत हो तो बहुत बढ़िया से तू खेती किसानी कर ले बा। काहे कि जोन जोन चीज़ चाहत हो सक्रियता जितना चाहिए वो जब शरीर साथ दे तब कह पाई बा। काहे कि बिहान ही उठे के होई
1: अरे भाई कहला
0: आ
1: गया कि जीव जांगर रही तब न कोनो काम होई हो।
0: बिल्कुल बिल्कुल भैया। तो एकर ध्यान अपन पंच लोग दिया। अब देखा हो का कि अपन पहले के पुरखा पुरनिया मोट जोट खाए के जोन है जियत रहना और खेती किसानी में खूब बढ़िया से लगल रहना।
1: हाँ
0: लेकिन
1: हो भैया देखा पहले तो गो चना रहा, जैसे जौ जौ या चना मिला के आदमी ओकर रोटी खाए आ देखा बड़ा वो रोटियाँ मीठो लगे हो।

0: भैया
1: भैया भैया बहुत
0: हाँ
1: तो
0: बहुत
1: पहले
0: मिठास रहा है।
1: मोट अनाज अब पहले रहो का भैया कि बहुत खाद जोन है रासायनिक ओकर इस्तेमाल ना हो
0: भाई
1: तो जैविक खाद रहे गोबर का खाद रहे तो ऐसे जोन है बड़ा स्वादिष्ट अनाज रहे।
0: देखा भैया पहले सूखो बहुत न पड़े, दस दस साल सूखा पड़ जाए। हमन के पुरनिया लोग बतावें कि दस दस साल सूखा पड़ जाए भैया, तो उस समय ला कि भैया बारिश भी कम हो खे, तो जवे मोटंजन भैया बुआ, चना छिट जाए, मसूर छिट जाए।
1: ई तो सही कहला भैया कि जो मोटंजा रहे तो ओके कम पानी का जरूरत पड़े है, तनी मनी पानी में ही जोन है हो जाए काम भरे का, आ जोन उत्पादन हो जाए उसे काम चल जाए।
0: हाँ हो बढ़िया से मोट मोट अपन लिट्टी तवा पर भैया बना के आ खूब कायदे से नून मरचा प्याज से भी बड़ा सुख मिले हो खाए में।
1: बिल्कुल भैया। आ देखा जैसे जैसे कुल तरक्की भल, आ बहुत बहुत विज्ञानी प्रगति भल, तो अब खेतियों किसानी में देखल जाए तो बड़ा बड़ा किसिम किसिम का जोन है आ गई ना अनाज, तो अब ओकर बोवाई करे लगना किसान भाई लोग। अब
0: हाँ
1: भाई देखा अब ऐसा ऐसा वैरायटी आ गए बाड़ी कि जोन महीन से महीन धान भी होत बा, आ गेहूं का भी देखल जाए बहुत सा वैरायटी ऐसा आ गई जोन बहुत बढ़िया मुलायम के रूप में हो गल भाई पिसा जात बा। आ सब एक चीज देखल गल हो बिरजू भैया
0: नंदू
1: के
0: भैया
1: केहू कही कि हैजा गेहुआ पिसवावे ले जा, महीन कह दिया पीसी बहुत। तो अब ये महीन से अब धीरे धीरे देखल जाए तो लोग हटत हुआ मोट की ओरी बढ़त हुआ।
0: तो वह न कहते भैया कि पहले जब अनाज पिसाए ना चलनी से चलाए ना आ ओकर भूसी जवन है वह सबसे फायदा करेल भैया। आ जितने समझला कि महीन पिसान पिसाए दला उ समझला कि लीवर बदे बड़ा नुकसान करी। अच्छा जितने मोट पिसान रही ओकर भूसी सहित अगर रोटी बनी लिट्टी बनी
1: भैया पचे में
0: उस
1: सही।
0: हाँ वो समझला कि सुपाच्य रही आ शरीर स्वास्थ्य वर्धक रही भैया तुम्हारा स्वास्थ्य भी सही रही। तो ऐसे हमहन के नंदू भैया ना फिर हमहन के पुरानी पद्धति अपनावल बहुत जरूरी है।
1: अब तो भैया देखल जात है कि विज्ञानी लोग भी जो है विशेषज्ञ लोग भी किसान भाई लोग के बतावत हुआ कि भाई अभी जो मोट अनाज है ओकर खेती करा। आ सरकार के स्तर से भी देखल जाए तो प्रधानमंत्री जी भी अपन कहना कि भैया ये जो मोट अनाज है एकर जो है उत्पादन किसान भाई करें।
0: अब देखा ना वैज्ञानिक भैया लोग बतावल जवन जवन प्रजाति विलुप्त होतले जिसे सेरहा कोदो रागी एकर देखत ना हुआ बीज समला की कृषि अनुसंधान केंद्र से फ्री सरकार मुहैया करावती भाई एकर पैदावार भी बढ़ावल बहुत जरूरी है।
1: अरे बड़ा बढ़िया नाम श्री अन्न के रूप में जो कर प्रचारित करल जात बा। आ पंच लोग एकर देखा हो बिरजू भैया खेती भी अब करत हुआ, अब बढ़िया मुनाफा भी मिलत है भैया एमा।
0: बहुत बहुत देखा संकर प्रजाति भी बहुत आए गल है ना तो ऐसे हमारे किसान भाई चढ़बड़ के हिस्सा लेते हों लोग आ खेती करत हों।
1: भैया देखा हो का ई एक तरह से दोनों तरह से फायदे में है। अगर मोट अनाज का खेती करत बा तो एक तो स्वास्थ्य भी सही रही, आ हम आपन तो रहबा करी जिस सेवन करी, आ साथे अगर बाजार में भी खूब जात बा मोटा अनाज तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदियाँ,
0: देखा
1: आ
0: भैया एक
1: बढ़िया दाम भी मिल जाई।
0: युद्ध स्तर पर अपने टोला पड़ोसा गांव गिराव के ई हमन के एकदम युद्ध स्तर पर लपट के सबके कहे कि भैया मोट अनाज बोवा भी आ सबके खियावा अपने भी खा।
1: खा भी आ सबके जागरूक भी करा कि भैया हो हमन देखा लगौले ही ऐसे ही कुल फायदा भल है, आ बढ़िया दाम भी मिलल है, तो तोहूँ एके लगावा।
0: हाँ भैया
1: ए तरह से भाई करें देखा ऐसे ही प्रचार प्रसार से हर चीज होई। आ एक ठे हो भैया सनेश भी अपने पंचायती में बिरजू भैया
0: हाँ
1: हो,
0: भैया
1: तो
0: बत
1: ओहू
0: कही
1: के पंच
0: तौबा
1: लोग के
0: करी
1: हाँ सुनवा
0: ओके
1: देवा जी।
0: सुनवाए दा से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: नंदू
1: भैया
0: भैया,
1: भैया।
0: सनेस तो हो गल आ हमन तो बात बतकही करी, लेकिन आज के खास जन बतकही बा मछलियों की उचित देखभाल कैसे करें।
1: अच्छा।
0: तो ये विषय पर भैया बताई हैं बामदेव पांडे जी आ उनसे बतियोले हुए सुधीर कुमार श्रीवास्तव भैया, तो
1: हाँ,
0: पंच
1: तो
0: लोग एक सुने।
1: सुने सुने।
2: डॉक्टर बामदेव पांडे, आप पूर्व प्राध्यापक रहल हुए यूपी कॉलेज वाराणसी में। आज हम आपसे ये जानल चाहब कि ये जो मौसम चलत हो बारिश का शुरुआत

0: नंदू भैया
1: भैया
0: सनेस तो हो गल
1: हम्म,
0: आ हमन तो बात बत कही कही, लेकिन आज के खास जन बत कही बा मछलियों की उचित देखभाल कैसे करें,
1: अच्छा
0: तो ये विषय पर भैया बताई हैं बामदेव पांडे जी आ उनसे बतियोले हुआ सुधीर कुमार श्रीवास्तव भैया, तो
1: हाँ,
0: पंच
1: तो
0: लोग के सुने।
1: सुने सुने
2: डॉक्टर बामदेव पांडे, आप पूर्व प्राध्यापक रहल हुआ यूपी कॉलेज वाराणसी में। आज हम आपसे ये जानल चाहब कि जो मौसम चलत हो, बारिश का शुरुआत हो गई हो
0: जी
2: और बारिश अभी पूरी तरह से आयल तो ना हो, लेकिन अब आवे वाले समय में जो ना पूरी तरह से बारिश भी होए लगी, तो ऐसने में जो किसान भाई लोग हमारे मछली पालन कैले हुआ
0: जी
2: तो कौन कौन विशेष देखभाल करे के जरूरत हो, ध्यान रखे कौन के जरूरत हो कि उनके उत्पादन मछली के बढ़िया मिले।
3: जी मछली के उत्पादन बढ़िया खातिर दो चीज पर तो बहुत ध्यान देवे के चाहिए, एक पानी पर और दूसरा उनकी आहार पर। पानी का स्रोत अगर प्रदूषित बा या वो रास्ता से और भी कोनो जली जंतु आ रहल बा, ओपर नियंत्रण करे के रहे।
2: माने बाहर का पानी उमन न जाए बारिश को।
3: हाँ, बाहर का पानी जाए तो भी पानी का जहां से घुसाव बा, जहां से एंट्री बा, वहां पर जाल लगावे के पड़ी।
2: मन छन के जाए।
3: हाँ, पानी छन के जाए, घोंघा केकड़ा डोढ़ा सांप और भी बहुत तरह के जलीय जंतु हमन जवन वो तालाब में ना जा पाए, ना ही तो मछली खातिर वो प्रतिस्पर्धा करिहन पौष्टिकता खातिर भोजन खातिर और तमाम तरह का वो रोग भी फैलावेलन मछली में। तो वहां नियंत्रण रहे के चाहिए पानी का, यही से और भी ध्यान रखे के चाहिए कि तालाब में पानी कहीं से सीवेज से कहीं से कोनो तरह के प्रदूषित पानियों में ना जाए।
2: अच्छा,
3: बारिश के जाए छन के जाए तब तब वो बहुत अच्छा है, या नहीं तो कहीं नदी से पंप से पानी ले आए, चाहे आपन पंपिंग सेट हो के उसे पानी शुद्ध पानी साफ पानी में भरल करे।
2: माने मेड़बंदी भी होकर बढ़िया से होवे के चाहिए चारों तरफ से।
3: हाँ, बिल्कुल बढ़िया से होवे के चाहिए। हाँ, नहीं तो कहीं से सीपेज से भी बगल में कोनो उद्योग का पानी जा रहल बा कोनो नाली से, वो भी अगर सीपेज से आ रहल बा तो तमाम तरह का वो भी बीमारी पैदा कर दी या मछली का वृद्धि के प्रभावित कर दी। जी,
2: तो का जाली वगैरह भी लगावे के चाहिए किनारे किनारे, जैसे मेंढक वगैरह भी न जा पावे।
3: हाँ, ओकर भी प्रयास करे के चाहिए। और आसपास ये तरह का अगर खेत बारी है तो हमेशा तालाब पर मेड़ पर सुबह शाम चल लेवे के चाहिए किसान के, देख लेवे के चाहिए। नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि चूहा कोनो कारणवश में बिल बना दे है, ओमे डोढ़ा सांप आके रहा था या और भी कोनो प्रजातियों में रह रहा है, तो के लाठी से या बांस के कोनो डंडा से वो बिल के बंद कर देवे के चाहिए, ठूस ठूस के मिट्टी ढेला ओमे डाल के, ताकि वो तालाब में ना प्रवेश करे, नहीं तो बहुत नुकसान कर दे था वो सब।
2: अच्छा अच्छा
3: जी,
2: तो और का तालाब में देखभाल करे के चाहिए।
3: एक अतिरिक्त तो भोजन है, भोजन जवन डालल जा रहा है भोजन ताजा रहे, बहुत पुराना ना रहे, कई महीना का ओकर उत्पादन पहले का ना रहे, नहीं तो अगर पुराना भोजन है तो ओमे फफूंद भी लग जाता है। अब वो भोजन देहला से मछली रोग ग्रसित हो जाता है, तो ये भी ध्यान रखे के चाहिए बहुत पुराना भोजन ना रहे, या अपने जवन निर्मित कर सका था किसान ओके डालल करे, या उतना क्षमतावान ना है तो हर महीने गोबर डाल दिहल करे, चार पांच टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खाली गोबर भी डालत रहता है अगर किसान, मछली संचय का दर ठीक ठाक है तो 3 टन तक उत्पादन वही से लिहल जा सकता है। वो गोबर से ही मछली का वो प्लवक छोटा छोटा पौधा छोटा छोटा जंतु पैदा हो जाए, जो ना कि मछली खा के बढ़त रही। हाँ, प्लैंकटन बनत रही, गोबर का आवश्यकता वही बधे है।
2: अच्छा,
3: ओकर प्लैंकटन बनत रही, प्राकृतिक आहार मछली के मिलत रही, मछली बढ़त रही।
2: अच्छा,
3: बाहरी आहार का आवश्यकता तो तब पड़ा था जब बहुत ज्यादा ओमें स्टॉकिंग है, बहुत ज्यादा संचय कर दे ले है किसान, तब ओमें भोजन का कमी पड़े लगा था, तब वो पूरा आहार का नौबत आवत है।
2: अच्छा
3: जी,
2: तो ये कैसे जाने कि हमारे तालाब में जितना ओकर क्षेत्रफल बा ओकरे अनुपात में ही मछली है, उसे ज्यादा ना है।
3: हाँ, प्रायः इधर के किसान ये गलती कर देलन, वो समझेलन कि जितना ज्यादा मछली डालब उतना ही ज्यादा उत्पादन मिली, लेकिन एक सीमा के बाद ये विचार गलत साबित हो जाता है। बहुत किसान लोग छोटा छोटा मछली का बच्चा जो ना के जीरा कहल जाता है, आधा सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर यही आकार का बच्चा मिल जाता, वो लोग सस्ता मिल जाता, ज्यादा कई लाख वो बच्चा का संख्या हो जाता, वो ले जाके वो में डाल देते, ई

0: निर्णय सही ना होता।
1: अच्छा।
0: ध्यान ये रखे कि मछली का बच्चा कुछ बड़ा हो चुकल रहे, जौना के अंगुलिका कहल जला, 4 इंची आकार का अगर मछली का बच्चा मिलत है अंगुलिका, ओके 5,000 संख्या में अगर डाले प्रति हेक्टेयर तो वो बहुत बढ़िया मानल जाता है।
1: प्रति हेक्टेयर 5,000
0: 5,000
1: अच्छा, तो जीवित रहिए ना,
0: 5 टन उत्पादन मिल जाये। इतना बड़ा बड़ा साइज का अगर डाली मछली तो मैं अधिकांश जीवित पड़ल रहे हैं।
1: अच्छा अच्छा।
0: हाँ, अगर आधा इंच के बाद 1 इंच के बाद वो में से काफी मर जाये हैं, लेकिन 4 इंच आकार का हो गया तो अपन जीवन जापन समझ चुकल है, प्रकृति का माहौल समझ चुकल है। हाँ, उपलब्ध भोजन जवन भी हा वहाँ तालाब में वो खा के बढ़त रह चुकेला, ओकरा के वो कौनो दूसर जंतु शिकार बनाए एकर चांस बहुत घट जाता है। हाँ, तो यही से अगर 5,000 डाले तो 5 टन उत्पादन ऐसे ही मिल जाए। अगर ज्यादा उत्पादन का इच्छा है तो 10,000 अंगुलिका डाल दे।
1: अच्छा।
0: लेकिन जब 10,000 डाल दे तब अब खान पान देख रेख का स्तर बढ़ावे के पड़ी।
1: अच्छा, कैसे? हाँ,
0: अब देख रेख का स्तर बढ़ावे मतलब वैसना में कुछ रोग का भी संभावना बढ़ सकता है, तो किसान के चूना पोटेशियम परमैंगनेट ये सब दवा भी साइड में रखे के चाहिए अपने तालाब पर, अगर इतना ज्यादा संचय कर दे ले है तो। अब पूरक आहार भी ठीक ठाक देवे के पड़े, किसान अपने तालाब पर भी जवन करना होता राइस ब्रान
1: जी
0: या सरसों का खली बराबर अनुपात में मिला के, एक एक का अनुपात में मिला के बोरी में अगर देत रहे तो यहू से बहुत बढ़िया वृद्धि मिल सकता है।
1: अच्छा,
0: अगर
1: अच्छा।
0: उतना क्षमतावान ना है कि वो पैकेट का खाना खरीद ले, बोरी का खाना खरीद ले जो तमाम कंपनियां बना रहल है, तो ऐसे भी वो ठीक ठाक उत्पादन प्राप्त कर सकता है।
1: डॉक्टर साहब, एक तालाब में एक प्रजाति के मछली पाले के चाहिए कि उमन कुछ जो है दूसर प्रजाति भी साथ ही रख सकन?
0: दूसर प्रजाति भी रख सकता है। अब तो 6 प्रजाति के एक ही तालाब में एक ही समय में डाल के और उत्पादन अधिक से अधिक लिहल जा सकता है। हाँ, अब जैसे अपनी देश के 3 मछली हैं जो ना के इंडियन मेजर कार्प कहल जाता है, रोहू कतला नैनी मछली जवन है, ये 3 के तो एक ही साथ डालल ही जा सकता है।
1: अच्छा।
0: इनके अलावा विदेशी कार्प मछली भी कुछ हैं, सिल्वर कार्प है, ग्रास कार्प है, कॉमन कार्प है, एक ही भी डालल जा सके।
1: कुछ प्रतिबंधित ना है कुछ मछली?
0: ना है, एमन प्रतिबंधित ना है।
1: अच्छा।
0: एकर पालन भारत सरकार से भी अनुमान्य है, एकर किसान लोग पालन कर सकेला।
1: अच्छा अच्छा।
0: हाँ, ऊपर जैसे ऊपर का खाना खाए वाली सतह पर रहे वाली मछली भाकुर है, ओकरी साथे सिल्वर कार्प आसानी से रह सकेले, कोनो प्रतिस्पर्धा ना। बीच खातिर ये रोहू है, ग्रास कार्प है, दोनों एक साथ रह सकेले। सबसे नीचे तली पर कामन कार्प है, नैनी मछली ये रह सकेला। तो वही भोजन के ये तीनों स्तर का मछली खाए के आराम से बिना कोनो प्रतिस्पर्धा का वही में रह सकते है, बढ़िया उत्पादन एकर मिल जाता, बढ़िया बाजार मूल्य भी है, ग्राहक ये मछलिन के बहुत पसंद भी करेलन, तो एकर पालन कर जा सकत है। जी,
1: तो डॉक्टर साहब, अगर कोनो संक्रमण हो जाता हो मन तो कैसे पहचान पाऊ क्योंकि मछली हमारे स्वस्थ है कि कुछ संक्रमित हो गई?
0: अब संक्रमण हो गई है तो मछली कोनो ठोस सतह से आकर के अपन शरीर के रगड़े को कोशिश करा था।
1: अच्छा अच्छा।
0: कुछ बाह्य परजीवी ओके लग गई है, ओकरी त्वचा पर लग गई है, मुंह पर लग गई है, होठ पर लग गई है, आंख पर लग गई है, पंख पर लग गई है, तो ओके रगड़ के छोड़ावे के कोशिश करा था। जैसे हमन में होला कहीं कोनो बाहरी आक्रमण हो गई है तो ओके रगड़ के छोड़ावे के प्रयास करा था आदमी, वैसे ही मछली भी करे ले बेचैन हो जाए मछली।
1: अच्छा।
0: एक तो ऑक्सीजन का कमी से वो बेचैन होले तो ओमे तो मुंह खोल खोल के वो हवा पिए के कोशिश करा था।
1: अच्छा। तो पानी चलाए
0: तो दूसरा चीज है, पानी चलाए देहला से बदल देहला से, पानी में लाठी पीट देहला से या एरेटर डाल देहला से,
1: जी जी
0: हाँ, या छिद्र वाला पाइप का रास्ता से पानी फोर्स में ले जाए तो ऊपर से फव्वारा बन के आई, उसे भी ऑक्सीजन
1: ऑक्सीजन घुलत रहे
0: और रोग से जवन ऊपर आ जाता है रगड़े की कोशिश कर रहा था किनारे, तब ये समझ ले कि चाहे कि तालाब में कुछ गड़बड़ी हो गई है।
1: अच्छा।
0: मछली का संख्या बहुत ज्यादा हो गई है या पानी कहीं से प्रदूषित आ गई है या खाना आहार का थ्रू

0: आ गई है कोनो अमन परजीवी, तब ऐसा मछली के अब पहले तो वो मछली के तत्काल निकाल करके ओकर इलाज कर दे, नमक का घोल बना के वही में कुछ मिनट रख करके फिर बाल्टी में रख दे, ठीक जब मछली हो जाए तभी ओके तालाब में डाले या
1: तो
0: और
1: का
0: कौन
1: ऐसे
0: उपयोग में
1: छना
0: कर
1: के
0: ले,
1: निकाल लेवे के चाहिए मछली ओकरे बाद प्रक्रिया
0: तत्काल
1: करके।
0: तत्काल निकाल लेवे के चाहेंगे ओके, तो
1: अच्छा, तालाब में कोनो दवाई डाले के व्यवस्था ना हो कि?
0: दवा डाली का भी व्यवस्था है। हाँ, अब जवन उपलब्ध हो के अगर चूना उपलब्ध बा तो चूना ये 250 किलो 300 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से घोल बना के
1: बुझल
0: बिना
1: चूना
0: बिना बूझल चूना,
1: बिना बुझल।
0: बिना बूझल चूना ओके लाके लोहा के बर्तन में प्लास्टिक के बाल्टी में नहीं ना, तो बाल्टी उच्छेद हो जाए पिघल जाए गर्मी से, तो लोहा का कोनो बर्तन में बाल्टी में टीन में पहले वो के बुझा ले
1: अच्छा,
0: पानी डाल के, फिर ओकर बड़ा बर्तन में घोल बना के जग से छिड़क दे
1: अच्छा
0: ताकि वो तालाब में मिल
1: मिल जाए
0: जाए
1: कायदे
0: चूना।
1: से।
0: हाँ, तो एक तो चूना सस्ता भी है, उपलब्ध हो जाता बाजार में। अब तो जैसे जैसे मछली पालन बढ़त जाता वैसे वैसे दवा का भी अब बिक्री बढ़ल जाता, किसान लोग के अब उपलब्ध हो जाता, तो ये लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट जो ना के कहल जाता, इहो 5 किलो तक प्रति हेक्टेयर के हिसाब से रोग अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया, बहुत ज्यादा मछली मरे लगनी, सतह पर आवे लगनी, किनारे लग जाते हैं,
1: जी,
0: तब तो 5 किलो तक पोटेशियम परमैंगनेट को घोल बना के तालाब में छिट दे ओके मिला दे।
1: चारों तरफ से
0: हाँ, चारों तरफ से ई काम कर दे, या जैसे जौन मछली मल जाओ कि तत्काल निकाल
1: निकाल
0: के
1: दे।
0: जमीन में गाड़ दे।
1: अच्छा,
0: हाँ
1: फेंका के भी ना है यार वहाँ।
0: हाँ इधर उधर फेंके कभी ना है ना, तो कि कोनो पक्षी खाई, कोनो और जानवर खाई, कुत्ता खाई ओके भी वो असर करी,
1: और लालच में पड़ के ओके बाजार में बेचे के भी जरूरत ना,
0: बेचे का
1: किसान
0: भी ना
1: भाई लोग
0: जरूरत
1: के।
0: है। हाँ, सख्ती से ओके बेचे का ना जरूरत है। हाँ, ये सब ध्यान रखे के चाहिए।
1: जी।
0: हाँ, भरसक तो प्रयास करे के चाहिए कि रोग होइबे न करे। हाँ, तो यही
1: सतर्कता
0: से
1: रखिए तो रोग ना
0: सतर्कता,
1: होए।
0: अगर ज्यादा डेंसिटी बा, ज्यादा मछली है तालाब में, तो ओमें हर महीने कभी कभी तो हर 15 दिन पर 30 30 किलो 35 35 किलो प्रति हेक्टेयर का दर से चूना का छिड़काव करत रहे के
1: करत
0: चाहिए।
1: रहे। जी।
0: ये चूना बहुत काम करत है। हाँ, ये खाली रोग से ही रक्षा ना करी, पानी के भी साफ रखी, जोन पानी का गदलापन है, जोन पार्टिकल पानी में हर सूर्य के प्रकाश के रोक रहल है ओके भी ओसे बाइंड करके नीचे तली पर डाल
1: बैठा
0: देता है।
1: जी,
0: हाँ,
1: पानी साफ रहे। अच्छा
0: ऑक्सीजन का भी मात्रा बढ़ावे में चूना का रोल है। इतने
1: अच्छा
0: ना ही मछली का हड्डी खातिर कैल्शियम का भी पूर्ति चूना से हो जाए करेला। अब
1: अब
0: बहुत से रोगाणु के बैक्टीरिया के फफूद के तो तालाब में पैदे ना हो गए थे चूना।
1: अच्छा इतना
0: जी,
1: काम करी।
0: बहुत काम करा था चूना। हाँ
1: तो भैया डॉक्टर बामदेव पांडे, आप पंचायती में ही ना और इतनी अच्छी जानकारी देना हमारे किसान भैया लोगन के कि अपने मछलियन का उचित देखभाल कैसे करें, तो ये जानकारी दे, आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बिरजू भैया,
3: हाँ नंदू भैया,
2: देखा हो कितना फरिया की बत कही रहल है कि जोन अपन किसान भाई लोग जे मछरी का पालन करत बा तो उ कौने तरीके से बढ़िया से उन्हन का देखभाल करे कि ज़्यादा से ज़्यादा जोन है मछरी तैयार हों, मोट हों, आप बढ़िया उत्पादन जोन है अपने किसान भाई लोगन के मिलत। ये बामदेव डॉक्टर बामदेव पांडे से सुधीर कुमार श्रीवास्तव भैया का बत कही रहल है। आ एमा एक चीज़ ई हो भैया ना कि कौनो भी काम करे तो ओकरे बदे जागरूकता बहुत जरूरी है।
3: एकदम अधिका भैया, कितना बढ़िया से कहला कि अगर मछली पालन करत हुआ तो हम तो कहला कि जौन सचेत किसान भैया हुआ, अगर मछली पालन करत हुआ अपन मेहनत तो में लगावत हुआ, तो हम कहब कि भैया देखा मछली खाली तालाब में डाल दहले कहीं मोल ना
2: ना ही
3: होगा,
2: बड़ कोई ना भैया,
3: आ ओकर देखभाल कर बड़ा
2: बहुत
3: जरूरी है,
2: जरूरी है, बहुत जरूरी
3: आ
2: है।
3: खास कर देखा बतौलो हाँ डॉक्टर भैया कि अगर मछली पलले हुआ तो अपने जौन भीटा बा तालाब को पोखरा के जौन भीटा बा मेड़ जेके
2: हाँ
3: कहल जाला,
2: भैया,
3: तो ओके देख ला ध्यान से कि चूहा उहा ओके भाई बिल उल बनौले हो खन के, तो उमे कोनो जानवर जैसे कीड़ा में डोढ़ा ओढ़ा होला तो बहुत भैया पोखरवा में लपक के मछरी उछरी खाला।
2: ये भैया वो तो कुल अंदर चलबो करे ना सो, इमें पौने ना
3: हाँ
2: बढ़िया
3: हाँ
2: से।
3: तो वो बिल उल के मुद्दा खास करके मुद्दा अपन देखभाल करा तब भैया।
2: वो भैया साथे जोन है जाली वाली भी चलावत फिरावत रहे, चुन्ना का देखा बात कही ना, बहुत

0: बड़ी मार के चीज रहे भैया, चूना से जोन है एक तो तालाब साफ हो जाई आ जोन गंदगी रही कुल कटपट के जोन बताओ ना हा कि नीचे चल जाई तो साफ रही तो ऑक्सीजन मिली।
1: हाँ जोन हिढ़ायल पानी बा अगर उनमें चूना डाल दहला तो एकदम साफ होके तलहटी में बैठ जी गंदगी, आ मछली भाई श्वास बढ़िया से ली हैं, ऑक्सीजन उनके मिली।
0: भैया आपने देखा मनईन के भी देखल जाता ऑक्सीजन बहुत जरूरी है शरीर के, अगर चले के है बढ़िया से स्वस्थ रहे के है तो ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। वह हाल मछलिनों का है, अगर उन्हों के स्वस्थ रहे के है बढ़िया मोटाए के है खूब तो ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। तो ये कुल
1: ये
0: ध्यान
1: नंदू भैया देखा बत कही करे में तो हम भुलाएल हैं जे आप पांच लोग जो हथ हो भैया देखा मनसायन सनाज ना करे हैं लोग का।
0: नहीं नहीं मनसायन होई बिरजू भैया आ एकरे बदे लोगन मोहन सिंह यादव और उनके साथी लोगन का
1: हाँ
0: ई
1: हाँ
0: गौनई जोन है सुनिए पंच लोग
1: हम पाछे सुन।

0: दुबिया
1: अरे
0: गवनई
1: बढ़िया
0: तो हो गई,
1: बढ़िया, बहुत बढ़िया गवनई रहला।
0: मोहन सिंह यादव और साथी का बढ़िया भैया देखा गवने ले, पंच लोग सुनना।
1: अब जो उन्होंने बिरजू भैया अपने पंच लोगन के काल के कार्यक्रम के बारे में बतावल जाए तो देखा, काल बिहाने 6:05 पर हुई खेती का बात।
0: अच्छा।
1: हाँ, आ एम्मा जो है अमरूद का बगीचा कौने तरीके से लगावल जाए ए विषय पे जानकारी दी है दिनेश कुमार सिंह।
0: अच्छा, तो देखा भैया अपने कृषि जगत में साँझ का 6:30 पर बतकही भैया अनुभव खेती में, प्रगतिशील किसान अपन हुआ कृष्ण कुमार यादव भैया,
1: हाँ
0: आ इनसे बतियोले हो सतीश कुमार यादव, तो
1: भैया भैया तो सुनो पंच
0: पंच लोग
1: लोग।
0: सुनिए
1: हाँ, पंच
0: आ
1: लोग एक
0: देखा
1: प्रगतिशील
0: भैया।
1: किसान का पूरा अनुभव सुनिए।
0: हाँ,
1: आ देखा बोलत बतियावत हो बिरजू
0: समय भी
1: भैया।
0: हो गई ले,
1: हाँ, चले का बेला होगल तो
0: तब
1: चलत है जा पंचो।
0: पंचो राम
1: राम राम।
0: राम।

किसान भाई अभी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम कृषि जगत मीडियम वेव 241.5 चार मीटर पर। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं जसपाल और साथियों की आवाज में फिल्म गीत गाता चल का ये गीत। गीत और संगीत रविंद्र जैन का।

कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए, सुनिए हेमलता और जसपाल सिंह की आवाज में। फिल्म है तुलसी, गीत और संगीत रविंद्र जैन का।

कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, फिल्म उपहार से। आवाज़ मुकेश और साथियों की है, गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: स्वास्थ्य फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम में आप स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निदान पाते हैं बस एक फोन कॉल के जरिए। इस बार दिनांक 2/8/2026 को नेत्र संबंधी विकार और निकट दृष्टि दोष की समस्या पर जानकारी दी जाएगी। फोन कर सकते हैं आप हमें 2221052 पर। वाराणसी का एसटीडी कोड है 0542 और इस बार हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ होंगे नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण कुमार गुप्ता और कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग का समय दिनांक 30/7/2026 गुरुवार को प्रातः 10 बजे से 11 बजे के बीच। तो भूले नहीं, हमें फोन जरूर करें और सुनते रहें कार्यक्रम आरोग्यम के साथ आकाशवाणी वाराणसी।
0: मीडियम वेव 241.54 मीटर पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। कार्यालय DCRB कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा प्राप्त सूचना अनुसार माधुरी उर्फ सोनी पत्नी राजकुमार निषाद ये 25 फरवरी 2026 से लापता हैं। माधुरी मलैया टोला थाना रामनगर वाराणसी की निवासिनी हैं। माधुरी के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार से हैं। आयु 28 वर्ष, लंबाई 5 फीट, एकहरा बदन है, रंग गोरा है। ये हिंदी और भोजपुरी भाषा बोल लेती हैं। माधुरी के बारे में यदि आपको किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है तो कृपया अपने नज़दीकी थाने या फिर कार्यालय DCRB कमिश्नरेट वाराणसी को सूचित करें। खोए हुए व्यक्ति के संबंध में एक और सूचना है। यह सूचना भी कार्यालय DCRB कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा प्राप्त हुई है। पूजा राजभर पुत्री पप्पू राजभर निवासिनी नगर पंचायत गंगापुर थाना रोहनिया वाराणसी। पूजा राजभर के बारे में जानकारी की बात इस प्रकार से हैं। आयु 21 वर्ष, लंबाई 156 सेंटीमीटर, चेहरा गोल है, रंग सांवला है। ये हिंदी और भोजपुरी भाषा बोल लेती हैं। यदि आपको पूजा राजभर के बारे में किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है कृपया अपने नज़दीकी थाने पर या फिर DCRB कमिश्नरेट वाराणसी को सूचित करें। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कुछ ही पलों में अगला प्रसारण हमारे लखनऊ केंद्र से होगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है, जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक पर हुई चर्चा। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा, युवा कल्याण की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। सर्वोच्च न्यायालय ने 18 वर्ष से कम उम्र और बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को तुरंत रिहा करने का दिया निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को किया संबोधित। कहा, अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए सरकार उठा रही है प्रभावी कदम। और कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए विभिन्न जनपदों में तैयारियां तेज। मेरठ में भारी वाहनों के लिए आज मध्यरात्रि से लागू होगा डायवर्जन। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हो गई। सदन में बिल पर चर्चा के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह नया विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी पाए गए अपराधियों की संपत्ति की जब्ती जैसे कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं। डॉ सिंह ने कहा कि यह संशोधन विधेयक कानून को और सख्त बनाने और तेजी से न्याय सुनिश्चित करने के लिए लाया जा रहा है, ताकि इन सभी परीक्षाओं की विश्वसनीयता बढ़ सके।
1: स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्स, अब उसमें भी हमने एक समय सीमा तय कर दी है, 2 महीने के भीतर सारी जांच मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा उसमें ये 3 महीने, यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा है। और सरकार की प्रतिबद्धता का आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर साहब की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया कि वक्त जाया ना हो तो ये जो स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्स है इनको स्थापित करने का भी क्रम साथ ही साथ प्रारंभ किया जाए।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाले 18 वर्ष से कम आयु के छात्र प्रदर्शनकारियों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। पेश है एक रिपोर्ट।
2: नीट परीक्षा पेपर लीक को लेकर हुए प्रदर्शनों के दौरान पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से संबंधित विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आज सर्वोच्च न्यायालय ने कई अंतरिम निर्देश जारी किए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची और वी मोहना की पीठ ने प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोटों के

0: आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। पीठ ने प्रदर्शन वाले सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वे सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन रिकॉर्डिंग, कैमरा फुटेज, वायरलेस संचार रिकॉर्ड, पीसीआर लॉग और प्रदर्शनों से संबंधित अन्य डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखें, लेकिन उसे सार्वजनिक न किया जाए। न्यायालय ने उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, केरल और मध्य प्रदेश के मुख्य सचिवों से याचिकाओं में लगाए गए आरोपों पर जवाब भी मांगा है। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट की नव निर्वाचित कार्यकारिणी के परिचय समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि त्वरित और सुगम न्याय के प्रहरी के रूप में अधिवक्ताओं की अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। श्री योगी ने कहा कि अधिवक्ताओं को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के साथ ही 10 जिलों में इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने अधिवक्ता कल्याण निधि को बढ़ाने के साथ ही 500 करोड़ रूपये के कॉपर्स फंड की व्यवस्था की है।
2: अधिवक्ता कल्याण निधि की स्थापना के कार्य को आगे बढ़ाते हुए पहले किसी विद्वान अधिवक्ता के दिवंगत होने पर मात्र 1.5 लाख मिलते थे। हमने कहा भी 1.5 लाख बहुत कम राशि है, इस राशि को हमने 5 लाख रुपया किया। हम लोगों ने इसके जो कॉर्पस फंड है इसको हमने 500 करोड़ रुपए का ही कॉर्पस फंड आपका बना दिया है। राज्य सरकार कोई भी रहे इसके ब्याज से ही सारा काम चलेगा। अब तक हम 4000 ऐसे अधिवक्ताओं के परिवारजनों को 200 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि उपलब्ध करवा चुके हैं।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का 48वां दीक्षांत समारोह आज संपन्न हुआ। दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालयों के 63,183 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गईं। विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। अपने संबोधन में राज्यपाल ने विद्यार्थियों से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान देने, नैतिक मूल्यों को जीवन में अपनाने और समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करने का आह्वान किया। उत्तर प्रदेश शासन ने आज 15 आईपीएस अफसरों का तबादला कर दिया है। तबादला सूची के अनुसार तरुण गाबा को लखनऊ का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। अशोक मोथा डीजी फायर सर्विस बनाए गए हैं। आईपीएस मधुर अशोक जैन को पुलिस महानिदेशक मुख्यालय से पुलिस महानिदेशक अग्निशमन और आपात सेवा बनाया गया है। अमरेन्द्र कुमार सिंगर को पुलिस आयुक्त लखनऊ से पुलिस महानिरीक्षक अभिसूचना मुख्यालय भेजा गया है, जबकि राम कुमार को लखनऊ रेंज से गोरखपुर जोन का अपर पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। नवीन अरोरा को तकनीकी सेवाओं से वाराणसी जोन और पीयूष मोडिया को वाराणसी जोन से प्रयागराज पुलिस आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में पवित्र सावन माह के दौरान होने वाली कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराने के लिए व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक के लिए आने वाली महिला कांवड़ियों की सुरक्षा और सुविधा को प्राथमिकता देते हुए वाराणसी नगर निगम महिला श्रद्धालुओं के लिए अलग आवास, शौचालय और फीडिंग रूम की व्यवस्था करेगा। अमरोहा में कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए हाईवे पर 30 जुलाई से 28 अगस्त तक वाहनों की गति सीमित कर दी जाएगी। यात्रा के दौरान कांवड़ियों के लिए हाईवे की एक साइड आरक्षित रहेगी। हापुड़ में भी कांवड़ यात्रा को लेकर 30 जुलाई से कांवड़ मार्गों पर रूट डायवर्जन लागू कर दिया जाएगा। मेरठ में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर भारी वाहनों के लिए यातायात परिवर्तन आज मध्य रात्रि से लागू होगा। अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ जोन भानु भास्कर ने बताया कि हल्के और मध्यम श्रेणी के वाहनों के लिए मार्ग परिवर्तन 4 अगस्त की मध्य रात्रि से लागू होगा और 12 अगस्त तक प्रभावी रहेगा। मेरठ के जिलाधिकारी डॉ वीके सिंह ने बताया कि सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय से कांवड़ यात्रा की तैयारियां पूरी कर रहे हैं।
3: मेरठ की लगभग 222 किलोमीटर से अधिक कामर मार्ग है, जिसमें की 8 प्रमुख मार्ग है और सभी मार्गों का वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण कर लिया गया है। नगर निगम के द्वारा भी बिजली के खम्भों का इंसुलेशन का काम किया जाता है। ये सारे काम प्रगति पे हैं। इसके अलावा कांवड़ पटरी मार्ग जो राइट से अलावा अपर गंगा केनाल बोलते हैं, उनकी भी मेजर रिपेयरिंग हो चुकी है। जिला पंचायत के माध्यम से हम लोग पूरे

0: मार्ग में पथ प्रकाश की व्यवस्था अच्छे से हो, पिछले विगत वर्ष में यदि कोई कमी रह गई उसको भी ठीक दुरुस्त कराते हुए वो व्यवस्था हम लोग करा रहे हैं।
1: उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत प्रदेश के सभी जनपदों को कुल 2 करोड़ तिरंगे तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस महाअभियान में मिशन से जुड़े 50,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं तिरंगों का निर्माण करेंगी। इससे ग्रामीण महिलाओं को अतिरिक्त आजीविका और आय का अवसर प्राप्त होगा। वहीं प्रदेश के प्रत्येक घर तक राष्ट्रीय ध्वज पहुंचाने के राष्ट्रीय अभियान को भी गति मिलेगी। अयोध्या, बिजनौर, संभल, सुल्तानपुर, गौतमबुद्ध नगर और सहारनपुर समेत आसपास के जनपदों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण बाराबंकी और अयोध्या में घाघरा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। मौसम विभाग ने प्रदेश में आगामी 3 दिनों के दौरान भारी वर्षा का अनुमान जताया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक पर हुई चर्चा। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, युवा कल्याण की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। सर्वोच्च न्यायालय ने 18 वर्ष से कम उम्र और बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को तुरंत रिहा करने का दिया निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को किया संबोधित। कहा, अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए सरकार उठा रही है प्रभावी कदम। और कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए विभिन्न जनपदों में तैयारियां तेज। मेरठ में भारी वाहनों के लिए आज मध्य रात्रि से लागू होगा डायवर्जन। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।
1: मीडियम वेव 241.5 चार मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंग।
2: स्वास्थ्य फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम में आप स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निदान पाते हैं बस एक फोन कॉल के जरिए। इस बार दिनांक 2/8/2026 को नेत्र संबंधी विकार और निकट दृष्टि दोष की समस्या पर जानकारी दी जाएगी। फोन कर सकते हैं आप हमें 2221052 पर। वाराणसी का एसटीडी कोड है 0542 और इस बार हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ होंगे नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण कुमार गुप्ता, और कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग का समय दिनांक 30/7/2026 गुरुवार को प्रातः 10 बजे से 11 बजे के बीच। तो भूले नहीं, हमें फोन जरूर करें और सुनते रहें कार्यक्रम आरोग्यम के साथ आकाशवाणी वाराणसी।
1: कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं आशा भोसले, किशोर कुमार और साथियों की आवाज में फिल्म सितमगढ़ का गीत। इस गीत को लिखा है मजरू ने और धुन तैयार की है राहुल देवबर्मन ने।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म दो दिलों की दास्तां से, आवाज लता मंगेशकर और सुदेश वाडकर की है। इस गीत को लिखा है अनजान ने और संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: स्वास्थ्य फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम में आप स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निदान पाते हैं बस एक फोन कॉल के जरिए। इस बार दिनांक 2/8/2026 को नेत्र संबंधी विकार और निकट दृष्टि दोष की समस्या पर जानकारी दी जाएगी। फोन कर सकते हैं आप हमें 2221052 पर। वाराणसी का एसटीडी कोड है 0542 और इस बार हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ होंगे नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण कुमार गुप्ता और कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग का समय दिनांक 30/7/2026 गुरुवार को प्रातः 10 बजे से 11 बजे के बीच। तो भूले नहीं हमें फोन जरूर करें और सुनते रहें कार्यक्रम आरोग्यम के साथ आकाशवाणी वाराणसी।
1: श्रोताओं इसमें आप हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र के साथ और सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम रस रंग के अंतर्गत। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म दुल्हन वही जो पिया मन भाई से, आवाज हेमलता की है, गीत और संगीत रविंद्र जैन का।

कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म गुमराह से। आवाज़ आशा भोसले और महेंद्र कपूर की है। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी और संगीतकार हैं रवि।

कार्यक्रम रसरंग का अगला और आखिरी गीत आइए सुनते हैं। फिल्म फिर वही रात से आवाज़ किशोर कुमार और लता मंगेशकर की है, गीतकार हैं मजरूह और संगीतकार आर डी बर्मन।

का कार्यक्रम रसरंग अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

शर्मा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के दीपक रंजन। लोकसभा में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध समाप्त होने के बाद लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हुई। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल ये विधेयक सदन में पेश किया था। राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक के खिलाफ कड़े प्रावधान वाले इस विधेयक को सदन में पेश करते हुए कहा कि ये विधेयक सरकार की छात्रों के कल्याण के प्रति गहरी प्रतिबद्धता दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इसे भारतीय संसद के इतिहास में मील का पत्थर कहा जा सकता है। कांग्रेस नीत पूर्ववर्ती सरकारों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि परीक्षाओं में गड़बड़ियों और प्रश्नपत्र लीक आदि की घटनाएं पहले भी होती रही हैं और विभिन्न राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारों के दौरान भी ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। श्री सिंह ने 2009 में रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा, 2011 में अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा, इसी साल पश्चिम बंगाल संयुक्त प्रवेश परीक्षा, 2010 में उत्तर प्रदेश में बीएड प्रवेश परीक्षा में गड़बड़ी और 2012 में एम्स नई दिल्ली की प्रवेश परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक होने का उल्लेख करते हुए कहा कि ये सूची लंबी है। उन्होंने कहा कि सरकार को लगा कि इस संबंध में एक व्यापक कानून की आवश्यकता है। श्री सिंह ने कहा कि देश में उच्च शिक्षा में परीक्षाओं का प्रबंधन करने के लिए एनटीए जैसी एजेंसी की सिफारिश 1992 और 2010 में भी की गई थी, लेकिन पता नहीं इस पर विचार क्यों नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए का गठन 2017 में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने ही किया था। श्री सिंह ने कांग्रेस सदस्यों की ओर इंगित करते हुए कहा कि आपका अधूरा काम मोदी सरकार ने पूरा किया। श्री सिंह ने कहा कि प्रश्नपत्र लीक के खिलाफ सरकार 2024 में ही विधेयक लाई थी, जिसे जून 24 में लागू भी कर दिया गया। उन्होंने कहा कि लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में आज के संशोधन विधेयक के माध्यम से कड़े प्रावधान शामिल किए जा रहे हैं। उन्होंने इस तरह के मामलों की जल्द सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन का भी जिक्र किया, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले की थी। श्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये फास्ट ट्रैक अदालतें घटना की रिपोर्ट दर्ज होने के 5 महीने के भीतर आखिरी निर्णय देंगी, जो इस संशोधन विधेयक का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। उन्होंने कहा कि सदस्य सरकार की प्रतिबद्धता का इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इस विधेयक के साथ ही कानून मंत्री ने यह प्रस्ताव भी रखा है कि विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें गठित करने की प्रक्रिया साथ ही शुरू की जाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें पहले ही गठित की जा चुकी हैं और आने वाले दिनों में बाकी जगहों पर भी इनकी स्थापना होगी। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने लोकसभा में परीक्षा प्रश्नपत्र निरोधक कानून को मोदी सरकार की विफलता का स्मारक करार दिया। उन्होंने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह को सदन में इसका जवाब देना चाहिए कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया था। श्री गोगोई ने दावा किया कि 2024 में लाया गया मूल कानून पेपर लीक रोकने में नाकाम रहा था और नया प्रस्तावित कानून भी अपने उद्देश्य में सफल नहीं होगा। कांग्रेस सांसद ने कहा कि 2024 में जब इसी तरह का विधेयक लाया गया था, तब सरकार ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए दावा

किया था कि पेपर लीक नहीं होगा, लेकिन उसी वर्ष नीट यूजी पेपर लीक मामले में 45 लोगों को आरोपी बनाया गया। इनमें से अधिकतर को जमानत मिल चुकी है। उनका कहना था कि मामले के कथित मास्टरमाइंड को भी जमानत मिल गई। श्री गोगोई ने आरोप लगाया कि जब 2024 में पेपर लीक का मामला सामने आया था, तब तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इससे इनकार किया था और इस बार भी उनका रवैया वैसा ही रहा। कांग्रेस सांसद ने संसद परिसर में भाजपा के कुछ सदस्यों द्वारा श्री प्रधान का स्वागत किए जाने का हवाला देते हुए कहा कि संसद में पूर्व मंत्री का ऐसा स्वागत किया गया मानो वो पाकिस्तान से जंग लड़कर आए हों। श्री गोगोई ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 लोगों को हटाए जाने की बात कही गई, जबकि संस्था में स्वीकृत पदों की संख्या 34 है। उन्होंने सरकार से इस संबंध में स्पष्टीकरण देने की मांग की। उन्होंने ये भी सवाल किया कि जब एनटीए के महानिदेशक को बदल दिया गया तो चेयरमैन को क्यों बरकरार रखा गया। उन्होंने कहा कि भाजपा से संबंधित एक वैचारिक संगठन के लिए शिक्षा विभाग महत्वपूर्ण है और विश्वविद्यालयों में नियुक्तियां इसी सोच के तहत की जा रही हैं। श्री गोगोई ने संशोधन विधेयक के प्रावधानों का जिक्र करते हुए कहा कि केवल जुर्माने की राशि बढ़ाने से शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं होगा। उन्होंने जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि युवाओं को अपने भविष्य की चिंता है और इसी कारण वे सड़कों पर उतरे। कांग्रेस सांसद ने कहा कि गृह मंत्री को सदन में आकर इसका जवाब देना चाहिए कि दिल्ली में छात्रों पर पैलेट गन चलाने, लाठियां भांजने और आंसू गैस के गोले दागने का आदेश किसने दिया था। भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि इस संशोधन विधेयक को लाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संवेदनशीलता और उनकी सरकार की जिम्मेदारी का प्रमाण है। सुश्री स्वराज ने प्रश्नपत्र लीक की घटनाओं पर दुख जताते हुए कहा कि जब किसी प्रतियोगी परीक्षा में अनियमितता होती है तो उसका असर केवल अभ्यर्थी पर ही नहीं बल्कि उसके माता पिता पर भी पड़ता है। उन्होंने कहा कि स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि पेपर लीक एक घोर अपराध है, इसलिए इस सदन को आश्वासन देना चाहूंगी कि मोदी जी के लिए पेपर लीक को घोर पाप कहना केवल एक बयान नहीं उनकी सरकार की नीयत है, इसलिए ये संशोधन विधेयक लाया गया है। भाजपा सांसद ने कहा कि वर्तमान में परीक्षा माफिया संगठित होकर अंतर्राज्यीय आपराधिक नेटवर्क बन गया है, ऐसे में ये विधेयक क्षेत्राधिकार की उलझन को सुलझाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ ही और विपक्ष के लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रश्न पत्र लीक की समस्या केवल 2014 के बाद पैदा हुई है। सुश्री स्वराज ने कहा कि मीडिया की रिपोर्ट को सच माने तो विपक्षी दल शासित राज्यों और 2014 से पहले कांग्रेस नीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के दौरान 22 बार पेपर लीक होने के कारण परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी थीं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि जो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी नहीं रोक पाए वो पेपर लीक भला कैसे रोक पाएंगे। श्री यादव ने जंतर मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन का हवाला देते हुए कहा कि सरकार झुकती है, सिर्फ झुकाने वाला चाहिए। उन्होंने कहा कि पूर्व शिक्षा मंत्री जब लोकसभा में लौटे तो सदन के बाहर उनका स्वागत किया गया, इससे हमें कोई शिकायत नहीं है। माननीय सदस्यों को कितनी राहत मिली होगी, एक प्रधान जी को हटाकर अपने भाजपा ने प्रधानमंत्री बचा लिया। सपा नेता ने कहा कि नई पीढ़ी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने भाजपा को झुकने के लिए विवश कर दिया। उन्होंने कहा कि जब सरकार घबरा जाती है और डर जाती है तब मांगों को स्वीकार कर लेती है। श्री यादव ने कहा कि ये ऐसा पहला आंदोलन था जिसमें बच्चों के साथ उनके माता पिता भी जुड़ गए थे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए में कर्मचारियों को आउटसोर्स पर रखने का उल्लेख करते हुए कहा कि डर लगता है कि कहीं पूरी सरकार को आउटसोर्स न कर दिया जाए। श्री यादव ने कहा कि सरकार ने शिक्षा और शैक्षणिक संस्थाओं को एक रंग में रंगने का प्रयास किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार प्राथमिक विद्यालयों को बंद कर रही है ताकि पिछड़े, दलित और गरीबों के बच्चे न पढ़ पाए। उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 26,386 प्राथमिक विद्यालय बंद किए गए हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें अपने सलाहकार बदल लेने चाहिए और यदि सरकार जेन जेड पर भरोसा वापस जीतना चाहती है तो प्रधानमंत्री को कैमरे का एंगल नहीं बल्कि दिल का एंगल भी बदलना पड़ेगा। उन्होंने लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा में भाग लेते हुए यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को इसका जवाब देना चाहिए कि किसके आदेश पर छात्रों के खिलाफ पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य ने कहा कि ये देश सांसदों की जागीर नहीं बल्कि जनता की अमानत है और सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जनता के सवालों का जवाब दे। प्रियंका गांधी ने दावा किया कि आज युवाओं को लगने लगा है कि मेहनत से ज्यादा बेईमानी मायने रखती है।
उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को लेकर कहा कि इसमें गंभीर खामियां

हैं, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं और परिवार कर्ज लेकर पढ़ाई करा रहे हैं। विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि वो इस विधेयक का समर्थन करते हैं और कड़ा कानून जरूरी है, लेकिन अगर व्यवस्थागत विफलताओं से परीक्षाओं में गड़बड़ी होती रही तो ये पर्याप्त उपाय नहीं है। श्री बनर्जी ने 2024 के लोक परीक्षा कानून में लाए गए संशोधनों के संदर्भ में कहा कि सजा बढ़ाने से सरकार की 12 वर्ष की अक्षमता खत्म नहीं हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ये सरकार नए भारत की बात करती है। आज का युवा पूछता है कि अगर ये नया भारत है तो प्रश्न पत्र लीक क्यों हो रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस नेता ने दावा किया कि मोदी सरकार के पिछले 12 साल के कार्यकाल में प्रश्न पत्र लीक के एक भी मामले में कोई दोष सिद्धि नहीं हुई है। द्रविड़ मुनेत्र कशगम के सांसद दयानिधि मारन ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि नीट परीक्षा की शुरुआत से लेकर अब तक उनके राज्य तमिलनाडु समेत पूरे देश में अनेक छात्र आत्महत्या कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये इस बात को दर्शाता है कि नीट परीक्षा से क्या हालात हो गए हैं। मारन ने कहा कि सरकार मुख्य मुद्दे का समाधान नहीं कर रही है, मुद्दा कानून का नहीं बल्कि नीट का है, जिसकी आवश्यकता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस ने नीट लाकर गलती की तो आप इसे थोपकर दूसरी गलती कर रहे हैं। नीट हमारे बच्चों पर मत थोपिए, इसे रोकिए। उन्होंने कहा कि द्रमुक ने तमिलनाडु में नीट का शुरू से विरोध किया है और लगातार इस बात को कहती रही है कि नीट नहीं चाहिए। समीक्षा लिखे जाने तक चर्चा जारी थी। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखिका हैं पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। नीट प्रश्नपत्र लीक के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण राज्यसभा की बैठक आज एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के कारण उच्च सदन में आज भी शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इसके अलावा उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की स्थायी संसदीय समिति की 2 रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गई। आवश्यक दस्तावेज पटल पर रखवाने के बाद सभापति ने शून्यकाल शुरू किया। उन्होंने असम से यूपीपीएल के रवंगवरा नारजारी को अपना मुद्दा उठाने के लिए कहा। श्री नारजारी ने बोडो भाषा में बोलना शुरू किया। इसी दौरान विपक्षी सांसद अपनी सीटों से खड़े हो गए। उन्होंने पिछले सप्ताह राष्ट्रीय राजधानी में नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस द्वारा कथित बल प्रयोग का मुद्दा उठाया। हंगामे के कारण नारजारी की बात सुनी नहीं जा सकी। विपक्षी सांसदों, खासकर वाम दलों के सदस्यों ने मांग की कि छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह सदन में बयान दें। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने जहां इस मांग का विरोध किया, वहीं विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग के समर्थन में नारे लगाने शुरू कर दिए। कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्यों ने मांग की कि अमित शाह गृहमंत्री हैं और उन्हें सदन में आकर प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। कुछ विपक्षी सदस्य श्री शाह के बयान की मांग करते हुए अपने स्थानों से उठकर आगे आ गए। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते थे, लेकिन शोर शराबे के कारण वे ऐसा नहीं कर सके। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदस्यों से शून्यकाल में सूचीबद्ध मुद्दे उठाने को कहा, लेकिन हंगामा जारी रहने पर उन्होंने करीब 11:07 पर ही सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक दोबारा शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतनराम मांझी से सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश करने के लिए कहा। हंगामे के बीच ही श्री मांझी ने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक एमएसएमई क्षेत्र के विकास की गति को देने के उद्देश्य से लाया गया है। इस विधेयक के तहत 2006 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव है। श्री मांझी ने कहा कि मूल विधेयक 2006 में बना था और इसमें समय तथा बदलती परिस्थितियों के अनुरूप सुधार करने की जरूरत है। उनके अनुसार इस विधेयक का उद्देश्य उद्योग जगत के बदलते हुए परिदृश्य के अनुसार इस क्षेत्र की इकाइयों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को बढ़ाना है। विधेयक में प्रस्ताव किया गया है कि एमएसएमई के निशुल्क और स्वैच्छिक पंजीकरण के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म अधिसूचित किया जाएगा। श्री मांझी द्वारा विधेयक पेश करने के बाद उपसभापति हरिवंश ने एक और विधेयक सदन में पेश करने के लिए कहा, लेकिन विपक्षी सदस्यों के हंगामे को देखते हुए उन्होंने उनसे कहा कि आप सदन नहीं चलने देना चाहते। उपसभापति ने सदस्यों से शांत रहने और कार्यवाही चलने देने की अपील की,

0: लेकिन सदन में व्यवस्था बनते न देख उन्होंने बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। उच्च सदन की बैठक अब कल सुबह 11 बजे होगी। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: मीडियम वेव 241.5 चार मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसमाधुरी।
2: स्वास्थ्य फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम में आप स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निदान पाते हैं बस एक फोन कॉल के जरिए। इस बार दिनांक 2/8/2026 को नेत्र संबंधी विकार और निकट दृष्टि दोष की समस्या पर जानकारी दी जाएगी। फोन कर सकते हैं आप हमें 222-1052 पर। वाराणसी का एसटीडी कोड है 0542 और इस बार हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ होंगे नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण कुमार गुप्ता और कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग का समय दिनांक 30/7/2026 गुरुवार को प्रातः 10 बजे से 11 बजे के बीच। तो भूले नहीं हमें फोन जरूर करें और सुनते रहें कार्यक्रम आरोग्यम के साथ आकाशवाणी वाराणसी।
1: रसमाधुरी कार्यक्रम की शुरुआत आइए करते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में गाए फिल्म आक्रमण से। गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, फिल्म आज और कल से, आवाज मोहम्मद रफी की है, गीतकार हैं साहिर लुधियानवी और संगीतकार हैं रवि।

लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज़ में आई सुनती हैं फिल्म वारिस का गीत। गीतकार हैं वर्मा मलिक और संगीतकार उत्तम जगदीश।

लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज़, संतोष आनंद का गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत को लीजिए सुनिए फिल्म प्यासा सावन में।

कार्यक्रम का अगला और आखिरी गीत आइए सुनते हैं अनुराधा पौडवाल और सोनू निगम की आवाज में फिल्म मुकाबला से। गीतकार हैं महेंद्र देलवी और संगीतकार हैं दिलीप सेन समीर सेन।

कार्यक्रम का अगला और आखिरी गीत आइए सुनते हैं अनुराधा पौडवाल और सोनू निगम की आवाज में फिल्म मुकाबला से। गीतकार हैं महेंद्र देलवी और संगीतकार हैं दिलीप सेन समीर सेन।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसमाधुरी अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 241.54 पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार।
1: परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, याद रखें समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2024 पर लोकसभा में चर्चा जारी। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया। महाराष्ट्र, बिहार और असम में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया गया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित विधानसभा चुनावों को अवैध कब्जे को छिपाने की कवायद बताया। जून में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीने के उच्चतम स्तर 7.3% पर पहुंचा। ओडिशा में मूसलाधार बारिश के कारण प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का कहर। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 दिनों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और खेलों में निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2024 पर लोकसभा में चर्चा हो रही है। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी पाए गए अपराधियों की संपत्ति की जब्ती के कठोर दंड शामिल हैं। मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश में दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है। अपराधों की जांच पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर पूरी करनी होगी। अभियोग पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त हो जाने चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने के संकल्प की पुष्टि करता है। कांग्रेस और यूपीए शासनकाल में हुई कई परीक्षा लीक की घटनाओं का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि इन मामलों से निपटने के लिए कोई व्यापक कानून नहीं था।
3: यू मस्ट कॉम्प्लीमेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड दिस गवर्नमेंट।
4: कांग्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रेय देना चाहिए क्योंकि हमारी सरकार ने उस अधूरे कार्य को पूरा किया है जिसे पहले ही पूरा किया जाना चाहिए था। वर्ष 2024 में ये विधेयक विद्यार्थियों को ये विश्वास दिलाने के उद्देश्य से लाया गया था कि उनका भविष्य सुरक्षित है। 2024 के अधिनियम के क्रियान्वयन से प्राप्त अनुभवों के आधार पर अब ये संशोधन लाया जा रहा है ताकि कानून को और अधिक सख्त बनाया जा सके तथा शीघ्र न्याय सुनिश्चित किया जा सके।
3: टू एंश्योर स्पीडी जस्टिस।
2: कांग्रेस के गौरव गोगोई ने सरकार पर शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं होने और वास्तविक सुधार नहीं करने का आरोप लगाया।
5: इस संशोधन वाले बिल का विवरण पढ़ के साफ साफ पता चल जाता है कि ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहिए। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
2: समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विभिन्न परीक्षाओं के पेपर लीक पर चिंता व्यक्त की। तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी निष्पक्ष परीक्षा का हकदार है। तेलुगुदेशम पार्टी टीडीपी के लावू श्रीकृष्ण देवरायलू ने कहा कि सरकार ने पेपर लीक मामले को स्वीकार कर लिया है और आवश्यक बदलाव करने को तैयार।

0: शिवसेना के डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने कहा कि ये ऐतिहासिक विधेयक देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य आकांक्षाओं और प्रयासों को सम्मान देगा।
1: मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पूरी सरकार ताकत के साथ खड़ी है। पेपर लीक की घटनाओं के तुरंत बाद हमारी सरकार ने रिकॉर्ड समय में ऐसे कड़े कानून बनाए जिससे आने वाले समय में पेपर लीक जैसी घटनाएं ना हो। हमारा लक्ष्य सिर्फ अपराधियों को पकड़ना नहीं है बल्कि बच्चों का कीमती साल बचाना भी है।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित हुई।
2: पिछले छह दिनों से बार बार सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद आज लोकसभा में भोजनावकाश के बाद कामकाज सुचारू रूप से चला। पहली बार कार्यवाही स्थगित होने के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की बैठक शुरू हुई तो सदन में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हुई। इससे पहले जब सुबह 11 बजे दोनों सदनों की बैठक शुरू हुई तो विपक्ष के सदस्यों ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। जब राज्यसभा की बैठक पुनः शुरू हुई तो एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। वहीं विपक्षी सदस्यों का विरोध जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। इस बीच महाराष्ट्र, बिहार और असम में नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने के आदेश दिए गए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के गृह विभाग को निर्देश दिया है कि राज्य भर में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लिए जाएं। एफआईआर वापस लेने की प्रक्रिया संबंधित अदालतों की अनुमति से शुरू की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC द्वारा आयोजित मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। कई घायलों की हालत गंभीर है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। हाल के दिनों में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथाकथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का प्रयास बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही।
3: हमने पाक अधिकृत कश्मीर में सो कॉल्ड इलेक्शंस के बारे में खबरें देखी है। इस मसले पर भारत का पक्ष साफ और निरंतर रहा है। जम्मू कश्मीर लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका पूरा भूभाग भारत का अभिन्न और अविच्छेद्य अंग है। वहां चल रहे लीपापोती वाले इलेक्शन, पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर का अपने अवैध कब्जा और वहां के लोगों का मानव अधिकार का हनन कुछ छिपाने का प्रयास है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि ओडिशा बंदरगाह पर MV AGN रागनार जहाज पर हुए हमले में लापता हुए भारतीयों की तलाश जारी है।
3: ओडिशा बंदरगाह के पास में जो हुई थी उसमें 4 भारतीय नागरिक उस पे सवार थे। 2 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और 2 अभी भी लापता हैं। छानबीन चल रही है उनके लिए और वहाँ के जो स्थानीय अधिकारी हैं उनसे हम लोग संपर्क में हैं। साथ ही साथ 2 भारतीय जो लापता हैं उनके परिवारजनों के साथ में भी हम लोग संपर्क साधा है।
0: इस वर्ष जून महीने में भारत में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीनों के उच्चतम स्तर 7.3% पर पहुंच गया। आज जारी आंकड़ों के अनुसार जून महीने में विनिर्माण क्षेत्र में 7.8 जबकि बिजली और गैस आपूर्ति क्षेत्र में 10.6% की वृद्धि हुई। जलापूर्ति, सीवरेज और अपशिष्ट प्रबंधन में 6.1 और खनन तथा उत्खनन क्षेत्र में अपेक्षाकृत धीमी गति से 1% की वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार ने इस वर्ष 1 अगस्त से 30 नवंबर तक देश भर के चीनी व्यापारियों पर भंडारण सीमा लागू करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकना तथा उचित मूल्य पर चीनी की लगातार उपलब्धता सुनिश्चित करना है। सभी व्यापारियों को अपने पास उपलब्ध चीनी के भंडार की घोषणा करनी होगी और खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर प्रत्येक सप्ताह स्टॉक को अपडेट करना होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यकाल के आज

0: चार वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने 5 स्मृति पुस्तकों का विमोचन किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस उच्च संवैधानिक पद को महज सम्मान नहीं बल्कि एक गहन जिम्मेदारी बताया।
1: राज्यों की यात्राओं के दौरान युवाओं से मिलती हूँ तो मैं उन्हें प्रेरित करती हूँ कि वे नैतिक मूल्यों से जुड़े रहें और देश एवं समाज की उन्नति के लिए कार्य करें। महिलाओं से मेरा आग्रह होता है कि वे स्वावलंबी बने और आत्मविश्वास के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़े। जनजातीय समुदाय के लोगों से संवाद करते समय अनुरोध करती हूँ कि वे अपने सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करें।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ओडिशा में लगातार मानसूनी बारिश के कारण राज्य की प्रमुख नदियों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: उड़ीसा में लगातार हो रही मानसून की बारिश की वजह से प्रमुख नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे बाढ़ का संकट और गहराता जा रहा है। मौसम विभाग ने पश्चिमी उड़ीसा के सुंदरगढ़, संबलपुर, बरगढ़ और झारसुगुड़ा जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि 13 अन्य जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रेड अलर्ट वाले जिलों में बचाव और आपातकालीन तैयारियां के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF की टीमें तैनात की गई है। राज्य सरकार ने भरोसा दिलाया है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार,
0: भुवनेश्वर। केरल के 10 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
3: केरल में भारी वर्षा की आशंका को देखते हुए मौसम विभाग ने राज्य के 10 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इससे पहले केवल 6 जिलों में येलो अलर्ट लागू था, लेकिन शाम तक विभाग ने 4 और जिलों को अलर्ट की सूची में शामिल कर दिया है। विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है। ऐसे में लोगों से सतर्क रहने तथा जारी परामर्श का पालन करने की सलाह दी गई है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम्पलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: इस बीच मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लिए इस महीने की 31 तारीख तक मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। दिल्ली सरकार ने आज महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से 2500 रुपया प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। योजना का पोर्टल अगले महीने की 1 तारीख से पंजीकरण के लिए खोला जाएगा। भारत की पहली सीधी वाणिज्यिक कंटेनर मालवाहक रेलगाड़ी नेपाल पहुंच गई है। इससे रेल आधारित सीमा पार माल ढुलाई में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। कैनोला की खेप ले जा रही 40 वैगनों की इस रेलगाड़ी ने संशोधित भारत नेपाल रेल पारगमन प्रोटोकॉल के तहत अपनी यात्रा पूरी की। और अब खेल खबरें। निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीत लिया है। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में धावक विशाल टीके और तैराक श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। श्रीहरि नटराज ने 100 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में 13वें स्थान पर रहते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। सेमीफाइनल देर रात खेला जाएगा। वहीं धावक विशाल टीके ने पुरुषों की 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में पदक की उम्मीद बनाए रखी है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आज श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी। रविंद्र जडेजा की टीम में वापसी हुई है। श्रृंखला का पहला मुकाबला 15 से 19 अगस्त जबकि दूसरा 23 से 27 अगस्त के बीच खेला जाएगा। IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने एम्स नई दिल्ली और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज के सहयोग से स्ट्रोक के बाद होने वाले वाचाघात एफेसिया के लिए मेलोडिक इंटोनेशन थेरेपी का पहला हिंदी संस्करण विकसित किया है। ये एक संगीत आधारित उपचार है जो स्ट्रोक के बाद ठीक हुए लोगों को दोबारा बोलने की स्थिति में लाने में मदद करता है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में चर्चा जारी। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया। महाराष्ट्र, बिहार और असम में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया गया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए।

डीएमके के दयानिधि मारन ने बहस में हिस्सा लेते हुए दावा किया कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट मरकजी मौजू है जो यकसा नहीं है और तलबा मुखालिफ है। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी वाड्रा ने हुकूमत पर तलबा के मफादात के तहफ्फुज में नाकाम रहने और निजाम तालीम को कमजोर करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो तलबा से किए गए वादों को पूरा करे। मोहतरमा गांधी ने मजीद कहा कि नौजवान निजाम तालीम में अपना एतमाद बहाल करने के लिए मुजाहरे कर रहे हैं और जवाबदेही तय करना चाहते थे। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट बांसी स्वराज, टीडीपी के लाबू श्री कृष्णा, शिवसेना के डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और दिगर अराकी ने पार्लियामेंट में बहस में हिस्सा लिया। राज्यसभा की कार्रवाई नीट मामले पर तलबा के मुजाहरों के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई पर अपोजिशन के हंगामे के बाद दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। पहली मरतबा मुलतवी होने के बाद राज्यसभा

राज्यसभा से इशू कर दी। हंगामा आरई जारी रहने पर राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने ऐवान की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि नीट पेपर लीक के खिलाफ आलिया मुल्की एहतियात के दौरान तलबा और पुलिस अहलकारों के जख्मी होने के इल्जाम की मुकम्मल मुनसिफाना और गैर जानबदाराना तहकीकात जरूरी है। अदालत ने यह भी हिदायत दी कि एहतियात के दौरान गिरफ्तार किए गए ऐसे तलबा जिनका कोई सबका मुजरिमाना रिकॉर्ड नहीं है उन्हें रिहा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्काम को हिदायत दी कि एहतियात मुतालिक तमाम इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल शवाहिद

शवाहिद महफूज रखे हैं। अदालत आलिया ने यह भी हुक्म दिया कि एहतजाज करने वाले तलबा से मुतालिक इकट्ठा किया गया तमाम डिजिटल डेटा महफूज रखा जाए, ताहम इसे अवामी सतह पर जारी ना किया जाए। बेंच ने दिल्ली हुकूमत को 10 एफआईआर की तहकीकात जारी रखने की इजाज़त दी, लेकिन ये भी वाजे किया कि अदालती कार्रवाई मुकम्मल होने तक एहतजाज करने वाले तलबा के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई ना की जाए। इसके अलावा बेंच ने दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, केरला, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी से भी दरखास्तों में आयद किए गए इल्जाम पर जवाब तलब किया। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने दाखिल उमूर के रियासती महकमे को हिदायत दी है कि वो नीट पेपर लीक मामले पर रियासत भर में हाल ही में मुजाहरा करने वाले तलबा के खिलाफ सभी दर्ज मामले वापस ले लें। एफआईआर वापस लेने का अमल मुतालिक अदालतों से इजाजत मिलने के बाद शुरू होगा। मुंबई, पुणे, नागपुर और छत्रपति संभाजीनगर जैसे अहम शहरों में एहतजाज हुए थे। ये कदम मरकज की उस गारंटी से मुताबकत रखता है कि मुजाहरों में शामिल तलबा के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। बिहार और आसाम की रियासती हुकूमतों ने उन लोगों के खिलाफ मामला और दिगर कानूनी कार्रवाई वापस लेने का फैसला किया है जो मुबैना तौर पर नीट यूजी इम्तहान में बेजाबतगियों के सिलसिले में एहतजाज में शामिल हुए थे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज अपनी सदारत के 4 साल मुकम्मल होने के मौके पर राष्ट्रपति भवन में किताबों के इजरा की खसूसी तकरीब की सदारत की। इस मौके पर नायब सदर सीपी राधाकृष्णन ने 5 यादगारी किताबों का इजरा किया। अपने खिताब में सदर जमहूरिया ने कहा कि सदर का आईनी अहदा महज एक एजाज नहीं बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति भवन तक पहुंचना उनके ज़ाती कामों से बढ़कर है। हुकूमत ने यकुम अगस्त से 30 नवंबर तक मुल्क भर में चीनी के ताजरों के लिए जखीरा करने की हद मुकर्रर करने का फैसला किया है। सार्फिन की उमूर खुराक और सरकारी निजाम तक

0: स्वास्थ्य फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम में आप स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निदान पाते हैं बस एक फोन कॉल के जरिए। इस बार दिनांक 2/8/2026 को नेत्र संबंधी विकार और निकट दृष्टि दोष की समस्या पर जानकारी दी जाएगी। फोन कर सकते हैं आप हमें 222-1052 पर। वाराणसी का एसटीडी कोड है 0542 और इस बार हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ होंगे नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण कुमार गुप्ता और कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग का समय दिनांक 30/7/2026 गुरुवार को प्रातः 10 बजे से 11 बजे के बीच। तो भूले नहीं हमें फोन जरूर करें और सुनते रहें कार्यक्रम आरोग्यम के साथ आकाशवाणी वाराणसी।
1: श्रोताओं इस समय आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र और सुन रहे हैं गैर फिल्मी गीत एवं गजलों का प्रोग्राम अंजुमन। पेश है कार्यक्रम में अगली गजल, कलाकार हैं अनूप चलोटा।

0: तलत अज़ीज़ की गाई इस गज़ल के साथ ही गैर फिल्मी गीत एवं गज़लों का प्रोग्राम अंजुमन अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है।
1: स्वास्थ्य फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम में आप स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निदान पाते हैं बस एक फोन कॉल के जरिए। इस बार दिनांक 2/8/2026 को नेत्र संबंधी विकार और निकट दृष्टि दोष की समस्या पर जानकारी दी जाएगी। फोन कर सकते हैं आप हमें 2221052 पर। वाराणसी का एसटीडी कोड है 0542 और इस बार हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ होंगे नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण कुमार गुप्ता और कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग का समय दिनांक 30/7/2026 गुरुवार को प्रातः 10 बजे से 11 बजे के बीच। तो भूले नहीं हमें फोन जरूर करें और सुनते रहें कार्यक्रम आरोग्यम के साथ आकाशवाणी वाराणसी।

0: बापू ने कहा था,
1: सत्य ईश्वर के समान है और सच्चाई का मार्ग सदैव सबके लिए कल्याणकारी है।
0: आइए सत्याग्रह को बनाएं राष्ट्र निर्माण और विकास का मजबूत आधार।

0: बजने दे जरा।
1: जी हाँ श्रोताओ, आपके मन का रेडियो आकाशवाणी वाराणसी अब आपके और भी नजदीक, आपके मोबाइल सेट पर। जी हाँ, आकाशवाणी वाराणसी अब न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। तो जहाँ भी हो आप, अब हर पल आपके साथ आकाशवाणी वाराणसी न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने पसंदीदा रेडियो चैनल आकाशवाणी वाराणसी के साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी, और हर पल हर घड़ी बजने दें अपने मन का रेडियो आकाशवाणी वाराणसी।
2: मीडियम वेव 241.5 चार मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कुछ ही पलों में खेल दर्पण कार्यक्रम हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी पौड़ी से प्रस्तुत है जनपद पौड़ी गढ़वाल में आयोजित विभिन्न खेल गतिविधियों पर आधारित विशेष कार्यक्रम खेल दर्पण। मानव जीवन में खेलों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। खेल केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि ये शारीरिक और मानसिक विकास के मुख्य आधार हैं। खेलों से अनुशासन, टीम वर्क और नेतृत्व करने की क्षमता जैसे जीवन कौशल विकसित होते हैं। यह तनाव कम करके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं और जीवन को संतुलित रखते हैं। जनपद पौड़ी गढ़वाल में आयोजित होने वाले प्रमुख खेलों में से एक खेल है खेल महाकुंभ। युवाओं को इलेक्ट्रॉनिक संस्कृति से प्ले ग्राउंड संस्कृति की ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष खेल महाकुंभ का आयोजन युवा कल्याण विभाग द्वारा शिक्षा विभाग और खेल विभाग के सहयोग से किया जा रहा है। पूर्व वर्षों के इतर इस वर्ष खेल महाकुंभ कुछ बदलावों के साथ आयोजित किया गया। खेल महाकुंभ के बारे में हमने बात की खेल महाकुंभ के नोडल अधिकारी श्री भगवान गुसाई से।
1: वित्तीय वर्ष 25-26 में खेल महाकुंभ का जो स्वरूप, उसमें शासन स्तर से बदलाव किए गए। जो वित्तीय वर्ष 2024-25 में खेल महाकुंभ का स्वरूप था, सर्वप्रथम न्याय पंचायत स्तरीय प्रतियोगिता, उसके पश्चात विकास खंड स्तरीय प्रतियोगिता, फिर उसके बाद जिला स्तरीय प्रतियोगिता और अंत में राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं आयोजित होती थी। जिसके स्वरूप में बदलाव करते हुए सर्वप्रथम जो न्याय पंचायत की प्रतियोगिताएं होती थी उसको स्थानीय जन प्रतिनिधि खेलकूद प्रतियोगिता के नाम से जाना गया। उसके पश्चात विधायक चैंपियनशिप ट्रॉफी, फिर सांसद चैंपियनशिप ट्रॉफी और अंत में मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी स्थानीय जन प्रतिनिधि खेलकूद प्रतियोगिता के दो कैटेगरी में आयोजित की गई, अंडर 14 बालक बालिका और अंडर 19 बालक बालिका, जिसमें चार प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, कबड्डी, एथलेटिक्स, खो खो और मुर्गा झपट। इसमें जिन भी प्रतिभागियों ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया उनको नगद पुरस्कार के रूप में 300, 200 और 150, साथ ही मेडल और प्रमाण पत्र वितरित किए गए। अगले स्तर पे जो प्रतियोगिताएं हुई, विधायक चैंपियनशिप ट्रॉफी, जिसमें विधानसभा स्तर पर प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को 500, 400, 300 की धनराशि डीबीटी के माध्यम से और साथ ही मेडल और प्रमाण पत्र वितरित किए गए। राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी में हमारी जो गढ़वाल संसदीय क्षेत्र की टीमों ने प्रतिभाग किया, उन्होंने कुल 93 मेडल प्राप्त किए, जिसमें 21 स्वर्ण, 32 रजत और 40 कांस्य पदक शामिल रहे।
0: खेल महाकुंभ के अंतर्गत न्याय पंचायत स्तर पर होने वाली स्थानीय जन प्रतिनिधि खेलकूद प्रतियोगिता के तहत न्याय पंचायत घंडियाल में हो रही खेलकूद प्रतियोगिता के नोडल श्री हनुमंत कुकृति से हमने बात की।
2: इस समय मैं हूं सीकू के ऐतिहासिक मैदान में और यहां पे न्याय पंचायत स्तरीय खेल महाकुंभ का आगाज हुआ है। बात करने के लिए हमारे साथ हैं नोडल अधिकारी न्याय पंचायत घंडियाल श्री हनुमंत कुकृति जी हमारे साथ हैं। तो सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी खेल विधाएं आज यहां पे न्याय पंचायत इस तरह खेलकूद प्रतियोगिता में आयोजित की जा रही हैं।
3: यहाँ पे बहुत सारी प्रतियोगिताएं प्रारंभ हुई, इसमें एथलेटिक्स हो गया, खो खो हो गया, मुर्गा झपट हो गए, जो हमारे पारंपरिक खेल है उसको विधा को भी काफी आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। और जो ये खेल है वाकई में ना कहीं जो हमारे ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले हैं, उन ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले जिनको न तो कोई सहयोग मिल पाता है, गरीब बच्चे रहते हैं, तो ये खेल महाकुंभ वाकई ना कहीं संजीवनी का काम करेगा उन छात्रों के लिए, उन परिवारों के लिए या उस छात्र को जिसको सुविधा नहीं मिल पा रही है। खेल महाकुंभ अपने आप में जैसे कि इसकी सार्थकता सिद्ध हो रही है कि वाकई में महाकुंभ है, क्योंकि ये केवल विद्यालय तक ही सीमित नहीं है, ये हमारे जितने भी ग्रामीण प्रवेश हैं, चाहे वो पढ़ने वाले हैं या विद्यालय में आते हैं, उन सब के लिए

0: वाकई में खुला एक मंच है और इस प्रकार की प्रतियोगिताएं कहीं ना कहीं समाज के लिए और उस जो छात्र हैं और जो जिसने विद्यालय छोड़ दिया हो या त्याग कर दिया हो उनके लिए कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए ये बहुत बड़ा मंच महाकुंभ है। शारीरिक रूप से स्वस्थ होना जीवन का एक अमूल्य मूल मंत्र है, तो उसको देखते हुए वाकई ना ये जो हमारे खेल विधाएं होती हैं ये शारीरिक और मानसिक और संवेगात्मक रूप से कहीं ना कहीं सबलता और प्रबलता प्रदान करती हैं।
1: जनपद पौड़ी गढ़वाल की सभी न्याय पंचायत स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं के उपरांत जनपद पौड़ी की 6 विधानसभा स्तर पर विधायक चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन किया गया। इसके बाद रांची स्टेडियम पौड़ी में सांसद चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन दिनांक 15 जनवरी 2026 से 30 जनवरी 2026 के मध्य किया गया। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रचना बुटोला ने किया। इस अवसर पर प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रहे प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा,
2: हमारे युवा कल्याण के सभी सम्मानित अधिकारीगण, सभी मेरे शिक्षा विभाग के सभी सम्मानित शिक्षकगण, अधिकारीगण, कर्मचारीगण और यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे जनपद से आए हुए, विभिन्न जनपदों से आए हुए बच्चों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। साथ ही आप सभी को आपके लिए अग्रिम शुभकामनाएं भी देती हूँ। देखिए बच्चों, मैं आपसे यही कहूँगी कि आप सब लोग यहाँ पर बहुत दूर से आए हुए हैं और अपने अपने लक्ष्य को पूरा करें। पहले जमाने में कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब, लेकिन आज जमाना बदल गया है और सभी लोगों के पेरेंट्सों की भी सोच बदल गई है। तो आज के जमाने में आप अपने बच्चे से सभी लोग यही कहते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे और भी प्रताप। इसलिए मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हूं और हम सब देख रहे हैं कि आज हमारा देश खेल के क्षेत्र में ऊंचाइयां छू रहा है और आप सभी बच्चों को अनुशासन के साथ खेलना है। इसी के साथ मैं आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूं। धन्यवाद।
1: सांसद चैंपियनशिप ट्रॉफी के आयोजन समारोह में उपस्थित जिला युवा कल्याण अधिकारी श्री रविन्द्र कुमार सिंह ने कहा,
3: सांसद चैंपियनशिप प्रतियोगिता जो कि पौड़ी जनपद में आयोजित की जा रही है, इसमें 11 विधानसभा के प्रतिभागी भाग लेंगे, इसके अलावा कोटद्वार और अन्य जो 5 विधानसभा है जिनमें नरेंद्र नगर, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, केदारनाथ व रामनगर, इन सभी विधानसभा के जो विजयी प्रतिभागी है उनके द्वारा यहाँ प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। ये प्रतियोगिता आज दिनांक 15 जनवरी से 30 जनवरी के मध्य आयोजित की जाएगी। जो सांसद स्तरीय जो चैंपियनशिप जो ट्रॉफी है उसमें अपना बढ़ कर भाग ले और अपना सर्वोच्च और अपने इस संसदीय क्षेत्र का नाम जरूर रोशन करें।
1: विगत वर्ष से विलुप्त होते पारंपरिक खेल मुर्गा झपट और पिट्ठू को खेल महाकुंभ में शामिल कर उन्हें पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। पारंपरिक खेल मुर्गा झपट के संबंध में हमने बात की जनपद पौड़ी गढ़वाल में पारंपरिक खेल एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री सतीश कंडारी जी से।
4: श्रोताओं, इस समय हम हैं रांची स्टेडियम पौड़ी में और यहाँ पे खेल महाकुंभ के अंतर्गत सांसद चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन किया जा रहा है। इस खेल स्पर्धा में कुछ पारंपरिक खेल भी इस बार आयोजित किए जा रहे हैं और ये एक चर्चा का विषय बने हुए हैं रांची स्टेडियम पौड़ी में। इस समय हमारे साथ बात करने के लिए हैं पारंपरिक खेलों के बारे में श्री सतीश कंडारी जी।
5: पारंपरिक खेल के अंतर्गत जो मुर्गा झपट प्रतियोगिता है वह पिछले साल से उन शुरू की गई थी और इस बार भी उन्होंने कहीं ना कहीं जिन बच्चों ने पिछले बार प्रतिभाग न किया हो और अलग अलग जो भार वर्ग रखे हुए तो उनमें इस साल फिर उनके द्वारा मौका दिया गया। और निश्चित तौर पे अगर मैं आपको बताऊं कि पारंपरिक खेल के अंतर्गत मुर्गा झपट में हमारे पौड़ी जनपद से जो 5 भार वर्ग हैं, चाहे वो मैं अंडर 14 की बात करूं, चाहे मैं अंडर 19 की बात करूं, दोनों में ही चाहे बालक हो चाहे बालिका हो, दोनों ने ही विशेष उत्साह दिखाया और उनके द्वारा प्रतिभा किया गया। तो और अगर मैं सर थोड़ा सा जो ये पारंपरिक खेल है और उसमें अगर मैं विशेष तौर पे मुर्गा झपट की बात करूं, जो हमारा जो एरिना होता है इसका जो सर्कल बनाया जाता है वह 2 मीटर का रेडियस का एक वृत्त बना हुआ होता है जिसमें कि आपके और उसके साथ साथ एक एक मीटर चारों ओर से एक वर्गाकार टाइप का पूरा एक बॉक्स बना दिया जाता है और उसमें हमारे 5 वर्ग जो, क्योंकि मैं खेल महाकुंभ की बात कर रहा हूं तो यह 5 भार वर्ग में रखा गया है, चाहे वो बालक हो चाहे बालिका हो, अंडर

0: 14 या अंडर 19 में बात करता हूं। और अगर मैं नियम की बात करूं तो इसमें आपने देखा होगा सर कि जैसे पहले भी हो चुका है, तो इसमें अगर मैं अंडर 14 में बालक की बात करता हूं या किसी भी वर्ग की बात करता हूं, तो दो बालकों के बीच में सेम भार वर्ग में यह प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। और दोनों में अगर थोड़ा सा मैं नियम देखूं, तो नियम में अगर आप बात करूं तो जिस प्रकार से मुर्गा एक नाम दिया गया है पारंपरिक मुर्गा झपट, तो उसी प्रकार एक बालक के द्वारा एक हाथ से पांव को पकड़ा जाता है, आगे पंजे को पकड़ा जाता है, और दूसरा हाथ, अब वो स्ट्रॉन्ग हाथ कुछ भी हो सकता है उसका, चाहे वो लेफ्ट हैंड हो चाहे राइट हैंड हो, तो अपनी क्षमता के अनुसार दूसरे हाथ से वो शोल्डर को पकड़ता है। और इस प्रकार से हमारे रेफरी के द्वारा प्रतियोगिता शुरू की जाती है, बाउट शुरू की जाती है, और एक मिनट बाउट का समय दिया जाता है इसमें। तो इसमें जैसे ही शुरू किया जाता है तो दोनों जो प्रतिभागी होते हैं वो प्रतिभाग करते हैं, लड़ते हैं, और तो बच्चों के द्वारा शोल्डर से पुश किया जाता है। और अगर उसमें आप देखेंगे सर, अगर बच्चे का चाहे मैं शोल्डर से हाथ अगर नीचे खिसक जाए या पांव छूट जाए जिस हाथ से उसने पांव पकड़ा है, तो एक पॉइंट दिया जाता है और वहीं पे बाउट रोक दी जाती है। फिर रेफरी दोनों को फिर तुरंत ही, क्योंकि समय की बाध्यता है इसलिए तुरंत उनको फिर सेंटर लाइन पे खड़े करके फिर दोनों को फिर बाउट स्टार्ट की जाती है। और इस प्रकार से एक पॉइंट दिया जाता है। और अगर मैं अधिकतम पॉइंटों की बात करता हूं तो अधिकतम 3 पॉइंट दिए जाते हैं। उसकी कंडीशन ये है कि जैसे ही रेफरी के द्वारा शुरू की जाती है और बच्चे जब शोल्डर से पुश करते हैं और पुश करते करते अगर कोई भी प्रतिभागी अगर अपने ओपोनेंट प्लेयर को जो आपका सर्कल बनाया है उस सर्कल से बाहर फेंक देता है, बाहर कर देता है, तो उसको रेफरी के द्वारा 3 पॉइंट दिए जाते हैं। और इसमें एक साइड हमारा ब्लू कॉर्नर होता है, जो हम प्लेयरों को जर्सी भी दे सकते हैं, जो बिप्स देते हैं हम उनको, तो एक साइड ब्लू कॉर्नर होता है और एक साइड रेड कॉर्नर होता है। तो ये हमारे पॉइंट का वो चलता है। तो 3 हमारे राउंड्स होते हैं एक एक मिनट के, और उनमें फिर स्कोर दिया देखा जाता है कि सम्मानित रेफरी के द्वारा किसका स्कोर ज्यादा हुआ है। फिर वो दोनों को सेंटर में, जैसे ही बाउट खत्म हो जाती है, दोनों को सेंटर में खड़ा करके जिस प्रकार से आपने देखा होगा बॉक्सिंग में दोनों के एक एक करके अंक बोले जाते हैं, तो उसी प्रकार हमारे मुर्गा झपट में भी रेफरी बीच में रहता है, एक साइड दोनों साइड खिलाड़ी रहते हैं उसके, और फिर नंबर बोले जाते हैं, जिसके अधिकतम अंक होते हैं वह विनर होता है। तो इस प्रकार से ये हमारा मुर्गा झपट खेल चलता है।
1: तो आपने नियम कायदे विस्तृत रूप से हमें हमें समझाए और इनके बारे में विस्तृत रूप से हमें बताया। अच्छा, जैसे कि पारंपरिक खेलों का फिर से इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, एक तरह से मैं कहूँ कि विलुप्त के कगार पे हमारे पारंपरिक खेल थे, तो खासकर मुर्गा झपट की अगर मैं बात करूँ तो प्रतिभागियों में किस प्रकार उत्साह आप देख रहे हैं?
0: सर, अगर मैं प्रतिभागियों में उत्साह की अगर मैं बात करूं, क्योंकि बच्चों का जो आज का जो टाइम है, आज के समय को, परिस्थिति को हम देखते हैं, तो इसमें बच्चे कहीं ना कहीं मोबाइल या अन्य जो हमारे गैजेट्स हैं उनके प्रति, उनके कारण बहुत ज़्यादा रुझाव बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं पारंपरिक खेलों के कारण, क्योंकि इन पारंपरिक खेलों को बच्चे नहीं, उनके माँ बाप या मैं एक सोसाइटी के जो हमारे पुराने जितने भी हमारे बुजुर्ग लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, उनके द्वारा इन खेलों को जाना जाता था। तो कहीं ना कहीं वो भी अपने बच्चों को इन खेलों के प्रति उनमें उत्साह आए, क्योंकि जो और अन्य हमारे खेल हैं उन खेलों में थोड़ा सा माँ बाप या परिवार या समाज में, मैं बोलूं, सबको नियम कायदे की जानकारी नहीं होती, लेकिन मुर्गा झपट हो गए इस प्रकार के खेल में थोड़ा माँ बाप भी जानते हैं या समाज में कोई अन्य व्यक्ति भी जानता है कि किस प्रकार से इसको रूल या किस प्रकार से खेला जाता है, तो बच्चों को जा से। और दूसरा, अगर मैं दूसरा जो हमारे माँ बाप हैं, गार्जियन हैं, जो सोसाइटी के लोग हैं, उनको ये भी पता है कि मुर्गा झपट में कहीं ना कहीं जो हमारे शारीरिक पुष्टि होती है, जिसको अंग्रेजी में फिजिकल फिटनेस कहते हैं, तो अगर मैं उनके कुछ कंपोनेंट्स तत्वों की बात करूं, क्योंकि हर खेल में आप देखते हैं कहीं ना कहीं फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स देखे जाते हैं। जैसे आप उदाहरण के तौर पे आपने देखा होगा जो 100 मीटर दौड़ होती है, तो उसमें स्पीड को देखा जाता है। तो अगर मैं अपने पारंपरिक खेल में मुर्गा झपट में बात करूं, तो आपने देखा होगा जब बच्चों के द्वारा पांव या शोल्डर पे आपका बैलेंस हाथों से पकड़ा जा रहा है, तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे संतुलन का जो क्षमता है उनके अंदर, उसको विकसित किया जा रहा है। दूसरा, अगर आप देखेंगे जब आप वो बाउट कर रहे हैं, तो बाउट करते समय उनकी जो कोऑर्डिनेटिव एक एबिलिटी होती है, कोऑर्डिनेशन, जिसमें कि 2-3 कंपोनेंट्स को एक साथ करना पड़ता है। जैसे आपने देखा हो कि बच्चे को एकदम से फुर्ती से शरीर को थोड़ा सा, क्योंकि बाउट एक दूसरे से हो रही, तो फुर्ती से शरीर को कभी लेफ्ट या राइट या डोज करना पड़ता है। दूसरा, आप देखेंगे एकदम से तेजी से स्ट्रेंथ का प्रयोग करते हुए शोल्डर से पुश भी करना होता है।

0: तो कहीं ना कहीं आप देखते होंगे इन शारीरिक पुष्टियों के जो हमारे तत्व हैं, इनके द्वारा भी बच्चों में उनको भी विकसित किया जा रहा है।
1: जनपद पौड़ी गढ़वाल में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं का भी खेल के प्रति रुझान बढ़ रहा है। अगर मैं महिला क्रिकेट की बात करूं तो इस साल जनपद के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में महिला क्रिकेट टूर्नामेंटों का आयोजन किया गया। जनपद में महिलाओं की बढ़ रही क्रिकेट के प्रति दिलचस्पी के बारे में हमने बात की अंडर 19 नेशनल क्रिकेट टीम में चयनित कुमारी सलोनी से।
2: मेरा नाम सलोनी बिष्ट है, मैं पौड़ी डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरे गांव का नाम मरगांव है जो कि खिरसू ब्लॉक में आता है। मेरे क्रिकेट की स्टार्टिंग गांव से हुई है। गांव में नरेंद्र भैया थे, उन्होंने मेरे को पूरा क्रिकेट खेलना सिखाया है। उस टाइम पे मैं अकेले लड़की थी जो मतलब भैया लोगों के साथ खेलती थी, क्योंकि उस टाइम पे लड़कियों के लिए कोई टूर्नामेंट नहीं होते थे जिससे कि उन्हें क्रिकेट में इंटरेस्ट आए और क्रिकेट का नॉलेज हो। तो भैया लोगों के साथ ही मैंने सब कुछ सीखा है। इसमें मेरे पेरेंट्स का भी बहुत सपोर्ट रहा है, खास करके मेरी मम्मी जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। एक दिन स्कूल्स गेम में क्रिकेट के ट्रायल्स आए जिसमें पहले डिस्ट्रिक्ट के लिए सिलेक्शन हुआ, फिर स्टेट के लिए, फिर नेशनल के लिए। गांव की लड़की के लिए नेशनल खेलना बहुत बड़ी बात है, खास करके तब जब उनके पास सुविधाएं ना हो, खेलने के लिए ग्राउंड ना हो। मैंने स्कूल्स गेम में क्रिकेट में 2 बार नेशनल खेला है। फिर उसके बाद गांव में भी काफ़ी टूर्नामेंट होने लगे लड़कियों के। अभी पाबो में हुआ था सडनली, तो वहाँ 50,000 का टूर्नामेंट था पहले, जिसमें हम फाइनल में रनर अप रहे। तो जैसे वो टूर्नामेंट लड़कियों के लिए काफ़ी अच्छा रहा है जिससे कि उन्हें क्रिकेट का नॉलेज हो, और उससे काफ़ी लड़कियाँ प्रैक्टिस करने लगी हैं गाँव में, जिससे कि उनका सिलेक्शन हो सकता है आगे, कि और ज़्यादा लड़कियां गांव से निकल सकती हैं क्रिकेट में। तो ऐसे टूर्नामेंट हर बार होने चाहिए जिससे कि लड़कियों को खेल के प्रति थोड़ी रुचि आए और वो खेलें, उन्हें पता चले कि कौन से खेल कैसे खेले जाते हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ कि लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, और गांव में बहुत सारे जो करा सकते हैं लड़कियों के टूर्नामेंट, जो बॉयज के कराते हैं वो गर्ल्स के भी कराए ताकि गर्ल्स भी खेल पाए।
1: शहरी क्षेत्रों के साथ साथ जनपद पौड़ी गढ़वाल के ग्रामीण क्षेत्रों में भी विभिन्न महिला क्रिकेट टूर्नामेंटों का आयोजन किया जा रहा है। इस बारे में हमने बात की क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजक श्री राजपाल सिंह रावत जी से।
3: नमस्कार। आज के समय में जहां महिलाएं भी इस खेल के प्रति जागरूक हुई हैं, और देखा होगा कि पौड़ी जिले के कई ग्रामीण क्षेत्रों में क्रिकेट की प्रतियोगिता होती है और उसमें महिलाएं प्रतिभाग करती हैं। ग्रामीण क्षेत्र में हालांकि संसाधनों की काफी कमी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो जोश और जुनून है इस खेल के प्रति महिलाओं को आकर्षित करता है। जहां हमने देखा कि पौड़ी जिले के चौबटाखाल विधानसभा के 3 या 4 ब्लॉकों में महिलाओं के लिए क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन होता है। जैसे कि इस वर्ष जनवरी माह में चौबटाखाल में, उसके बाद एक्वेशर विकास खंड के धरासू में, उसके बाद विकास खंड पोखड़ा के गवाड़ी में, और जून के माह में अभी अभी हाल में विकास खंड पोखड़ा के बीनागार द्वारा महिलाओं के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया था। उसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। संसाधनों की कमी के कारण इसे महिलाएं जूझ रही हैं, लेकिन फिर भी जो जोश और जुनून उनका इस खेल के प्रति है, मैं तो चाहूंगा कि टेनिस बॉल यानी कि डे नाइट गेम से हर जगह महिलाओं के लिए इस खेल को रखा गया है। प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। कई खिलाड़ी हमने ऐसे देखे हैं जो कि प्रॉपर बॉलिंग करते हैं, उनका जो एक्शन होता है वो प्रॉपर होता है, और बल्लेबाजी भी कहीं महिलाएं बहुत अच्छी करती हैं। जरूरत है एक प्लेटफॉर्म की कि पहाड़ी क्षेत्र में जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र है उसमें क्रिकेट के प्रति जो लगाव है महिलाओं का, संसाधनों के माध्यम से अगर अच्छे टूर्नामेंट होते हैं, अच्छी प्रतियोगिताएं होती है, और महिलाओं का और क्रिकेट के प्रति लगाव, ये निश्चित रूप से एक आने वाले समय में एक अच्छा आयाम स्थापित कर सकता है। जहां महिलाएं हमारे कृषि क्षेत्र में यानी कि एक गृहिणी के रूप में रह जाती थी, आज वे मैदान पे आती हैं, अपना खेल के प्रति अपना जौहर दिखाती हैं। जहां हाथ में दराती कुदाल को छोड़कर जब महिलाएं मैदान पर

0: आती है और अपने गेंद और बल्ले से अपना जौहर दिखाती है, तो देखने को मिलता है कि हमारे इस पहाड़ी अंचल में भी प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है।
1: जीवन में खेलों का महत्व और खेल विभाग द्वारा आयोजित की जाने वाली माननीय मुख्यमंत्री खिलाड़ी उन्नयन योजना और माननीय मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के बारे में हमने बात की सहायक क्रीड़ा समन्वयक विकास खंड कोट श्री ज्योत सिंह राणा से।
2: खेलों के संबंध में जब भी हम बात करते हैं तो हमेशा खेलों का शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य एवं तनाव मुक्त जीवन के साथ गहरा संबंध रहा है। शारीरिक स्वास्थ्य के संबंध में हमारे छात्र छात्राएं और हमारे युवा आसानी से समझ जाते हैं, लेकिन जब हम मानसिक स्वास्थ्य और तनाव मुक्त जीवन की बात करते हैं तो यहाँ पे उनको थोड़ा सा ये समझने की जरूरत है कि जो तनाव है हमारे शरीर में, वो हमारे शरीर में जो अंतरस्रावी ग्रंथियां होती है उन्हीं में से एक ग्रंथि है एड्रेनल नाम की, जो कि कोर्टिसोल नामक एक स्ट्रेस हार्मोन्स होता है उसको रिलीज करती है, उससे हमारे जीवन में तनाव बढ़ता है। तो खेलों के माध्यम से क्या होता है, जब हम खेल गतिविधियों में इन्वॉल्व रहते हैं तो हमारा जो कोर्टिसोल नामक ये जो स्ट्रेस हार्मोन्स है वो डिस्ट्रॉयड होके, या आप यूं कहिए कि उसका स्तर कम होके, हमारे शरीर में जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं वो जैसे कि डोपामाइन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, एंड्रोफिन हो गया, इन हार्मोन्सों का स्तर हम खेलों के माध्यम से अच्छा कर सकते हैं, जिससे कि हमें शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी हमारा अच्छा रहता है। तो सरकार के द्वारा समय समय पर माननीय मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, मुख्यमंत्री प्रोत्साहन कार्यक्रम, विभिन्न प्रकार के खेल कार्यक्रमों का आयोजन प्रतिवर्ष करवाया जाता है, जिससे कि समाज में निश्चित रूप से एक जो खेलों का स्तर है वो बेहतर होता जा रहा है। इसी के अंतर्गत जो माननीय मुख्यमंत्री खिलाड़ी उन्नयन योजना की अगर मैं बात करूं तो ये 8 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए ये जो 6 आयु श्रेणियां जो विभाजित की जाती है उसमें प्रत्येक, जो अगर ग्रामीण खेलों की बात करूं तो नए पंचायत स्तर पर प्रत्येक आयु वर्ग में जैसे 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13 और 13 से 14 जो ये 6 आयु वर्गों में इसको विभाजित किया गया है। इसके अंतर्गत प्रत्येक नए पंचायत से 2 बालक 2 बालिकाओं का चयन विकास खंड स्तर के लिए किया जाता है, और अगर मैं नगर पंचायत स्तर की बात करूं तो नगर पंचायत स्तर पर 3 बालक और 3 बालिकाओं का चयन विकास खंड स्तर के लिए किया जाता है, और जो हमारे नगर निगम स्तर के जो क्षेत्र हैं तो नगर निगम से 6 बालक और 6 बालिकाओं का प्रत्येक आयु वर्ग में चयन कर विकास खंड स्तर पर किया जाता है। विकास खंड स्तर पर जैसे कि आप आज विकास खंड कोर्ट के प्रांगण से देख सकते हैं कि हमारी 7 न्याय पंचायत और हमारे नगर पंचायत पौड़ी, नगर निगम श्रीनगर आदि के बच्चे भी यहाँ पर विकास खंड स्तर हेतु यहाँ उपस्थित हुए हैं। यहाँ जो प्रतिभागी प्रतिभा करेंगे उसके पश्चात प्रत्येक आयु वर्ग से 6 बालक और 6 बालिकाओं का चयन जनपद स्तर के लिए किया जाएगा, और जब जनपद स्तर पर इन बालक बालिकाओं का जो चयन होगा तो प्रत्येक जनपद के प्रत्येक आयु वर्ग के 25 बालक और 25 बालिकाओं को जो हमारी सरकार के द्वारा जो प्रोत्साहन राशि दी जाती है 1500 रुपये प्रतिमाह जो छात्रवृत्ति है वो प्रदान की जाएगी, जो निश्चित तौर पर हमारे छात्र छात्राओं के लिए भविष्य में राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रदेश और देश का नाम रोशन करने के लिए उसे उन लोगों को अवश्यंभावी रूप से प्रोत्साहित करेगी। साथ ही साथ मैं आपका ध्यान इस ओर पर आकर्षित करना चाहूंगा कि जो माननीय मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना है इसके अंतर्गत एक फिटनेस टेस्ट का आयोजन किया जाता है, जिसके अंतर्गत प्रतिभागियों की संपूर्ण शारीरिक क्षमता का एक सटीक मापन 6 इवेंटों के द्वारा किया जाता है। ये जो हमारे 6 इवेंट होते हैं उसमें स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, मेडिसिन बॉल थ्रो, फॉरवर्ड बैंड रीच, 30 मीटर फ्लाइंग रेस, 6x10 मीटर।

0: शटल रन और 600 मीटर रनिंग, ये जो प्रत्येक इवेंट होते हैं ये 10-10 नंबर का इनका जो क्राइटेरिया है और ये टोटल 60 नंबर का फिटनेस बैटरी टेस्ट है और ये 60 नंबर मार्क्स के आधार पर ही हम प्रतिभावान प्रतिभागियों का चयन कर पाते हैं और उसके बाद इनको छात्रवृत्ति हेतु इनके चयन करने में हमें आसानी रहती है। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार जो हम खेलों के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का जो आयोजन हमारे ग्रामीण एवं शहरी बालक बालिकाओं के लिए जो किया जा रहा है, निश्चित रूप से इनके जो भावी जो परिणाम होंगे निश्चित तौर पर हमारे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के और शहरी क्षेत्र के बच्चे, एक तो उनका शारीरिक स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य जो बढ़ेगा वो तो बढ़ेगा ही, लेकिन साथ ही साथ उनका आने वाला जो भविष्य होगा वो सुखमय होगा और वो एक करियर के रूप में भी इसको अपना सकेंगे। और मुझे आशा ही नहीं अभी तो पूर्ण विश्वास भी है कि सरकार के द्वारा जो ये कार्यक्रम हमारे छात्र छात्राओं के लिए जो समय समय पर निरंतर आयोजित किए जा रहे हैं वो भविष्य में भी इसी प्रकार से आयोजित किए जाएंगे।
1: जनपद पौड़ी गढ़वाल का फुटबॉल के क्षेत्र में अपना एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। हाल ही में मंडल मुख्यालय पौड़ी में आयोजित जय कंडोलिया महोत्सव के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता के बारे में हमने बात की स्थानीय फुटबॉल कोच श्री रविंद्र रावत जी से।
2: श्रोताओं, इस समय हम हैं पौड़ी के ऐतिहासिक कंडोलिया खेल मैदान में और अभी यहां पर जय कंडोलिया महोत्सव के तहत एक राष्ट्रीय स्तर की जो फुटबॉल प्रतियोगिता थी उसका फाइनल हुआ है। खचाखच भरे इस स्टेडियम में फुटबॉल मैच देखने का अलग ही मजा है और इस टूर्नामेंट पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं श्री रवि रावत, जो कि जय कंडोलिया महोत्सव के अंतर्गत इस फुटबॉल प्रतियोगिता में संयोजक के रूप में रहे हैं। तो रावत जी, स्वागत है आपका इस बातचीत में। रावत जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इस राष्ट्रीय स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट में कितनी टीमों ने प्रतिभाग किया?
3: इसमें 11 तो जो राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता हुई इसमें 11 तो जो थी वो इंडिया से टीमें थी और एक टीम नेपाल से थी, तो 12।
2: मैं अभी देख पा रहा था कि फुटबॉल मैच देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग यहां पे उपस्थित हैं और खचाखच ये स्टेडियम भरा हुआ है। पौड़ी और फुटबॉल का एक अनोखा ही रिश्ता है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप?
3: जी, पौड़ी में तो फुटबॉल का इतिहास ही बड़ा अच्छा रहा है और जहां बात आती है राष्ट्रीय स्तर फुटबॉल प्रतियोगिता की तो उसमें तो लोग सारे दर्शक पहुंचते हैं फुटबॉल प्रतियोगिता देखने के लिए।
2: यहां पे एक कोच के रूप में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और मैं देखता हूं कि जो लड़के हैं उनके साथ साथ अब स्थानीय जो बालिकाएं हैं वो भी फुटबॉल की प्रैक्टिस कर रही हैं, तो बालिकाओं का रुझान फुटबॉल की तरफ बढ़ रहा है।
3: जी, लड़कियां पहले भी बहुत सारी लड़कियां आई थी हमारे पास और उनमें से बहुत सारी लड़कियां जो है वो कोचिंग डिप्लोमा उन्होंने किया है, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन करके वो उत्तराखंड एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब कर रही हैं और अभी भी बहुत सारी बच्चे जो है छोटे बच्चियां हमारे पास आती हैं और लड़कियों का तो बहुत अच्छा फ्यूचर है फुटबॉल में, अगर वो आए और मेहनत करें तो बहुत ही अच्छा फ्यूचर है।
1: जनपद पौड़ी गढ़वाल में खिलाड़ियों का भविष्य स्वर्णिम है, ग्रामीण प्रतिभाओं को उचित मंच मिल रहा है और हम कह सकते हैं कि आने वाला समय खिलाड़ियों के लिए स्वर्णिम साबित होगा। ये था खेल दर्पण पर आकाशवाणी पौड़ी का डिस्पैच। संकलन, वाचन, आलेख अशोक सिंह, कार्यक्रम प्रस्तुति अशोक कुमार की।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेल दर्पण, ये कार्यक्रम आकाशवाणी पौड़ी की प्रस्तुति थी।
5: मीडियम वेव 241.5 चार मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है पंडित ऋत्विक सान्याल का ध्रुपद गायन, राग है मालकौंस। आपके साथ पखावज पर हैं अंकित पारीख।

शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पंडित ऋत्विक सान्याल का ध्रुपद गायन। राग था मालकौंस। आपके साथ पखावज पर थे अंकित पारीख। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है।

0: बापू ने कहा था,
1: सत्य ईश्वर के समान है और सच्चाई का मार्ग सदैव सबके लिए कल्याणकारी है।
0: आइए सत्याग्रह को बनाएं राष्ट्र निर्माण और विकास का मजबूत आधार।

हम सभी का एक ही नारा, साफ सुथरा हो देश हमारा, सफाई अपनाएं, बीमारी भगाएं, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। हम सब ने ये ठाना है, भारत को स्वच्छ बनाना है। स्वच्छता का दीप जलाएंगे, चारों ओर उजियारा फैलाएंगे। सभी रोगों की एक दवाई, घर में रखो साफ सफाई।

मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स। मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR DTH DRM 1233 किलोहर्ट्स और वेब्स OTT पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। चुटकी घड़ी में 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में चर्चा हो रही है। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी पाए गए अपराधियों की संपत्ति की जब्ती के कठोर दंड शामिल हैं। मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में प्रत्येक

राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश में दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है। अपराधों की जांच पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर पूरी करनी होगी। अभियोग पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त करने होंगे। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण के लिए, उनकी रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने के संकल्प की पुष्टि करता है। कांग्रेस और यूपीए शासनकाल में हुई कई परीक्षा लीक की घटनाओं का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि इन मामलों से निपटने के लिए कोई व्यापक कानून नहीं था। कांग्रेस के गौरव गोगोई ने सरकार पर शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं होने और वास्तविक सुधार नहीं करने का आरोप लगाया। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। महाराष्ट्र, बिहार और असम में नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के गृह विभाग को निर्देश दिया कि राज्य भर में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लिए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आवास पर सचिव स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने वित्त और अर्थव्यवस्था, वाणिज्य तथा उद्योग और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से संबंधित मंत्रालयों और विभागों की भावी कार्यसूची की समीक्षा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को गति देना था। बैठक के दौरान श्री मोदी ने मंत्रालयों और विभागों के बीच एकजुटता की भावना के साथ काम करने का आग्रह किया। इस वर्ष जून माह में भारत में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीनों में उच्चतम 7.3% पर पहुंच गया। आज जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार जून महीने की विनिर्माण क्षेत्र में 7.8 जबकि बिजली और गैस आपूर्ति क्षेत्र में 10.6% की वृद्धि दर्ज हुई। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC द्वारा आयोजित मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। कई घायलों की हालत गंभीर है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। हाल के दिनों में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथा कथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का छलावा बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही। ओडिशा में लगातार मानसूनी बारिश के कारण राज्य की प्रमुख नदियों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं केरलम के 10 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। चीन में निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम बस्कर और हिमांशु ढिल्लो ने कांस्य पदक जीत लिया है। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।